0: with Caitlin.
1: Kia ora, namaste, sat sri akaal, assalamu alaikum, aapka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat Friday
2: is the good day.
1: Well, yes, aap exactly kya kar rahe hain? Kya plannings ho rahi hai weekend ki? Next weekend, the long weekend, yaar. क्या बात है, माता रानी क्या आने वाली है वैसे. यस, मेरा एक नया गाना भी लॉन्च होने वाला है 10 तारीख को, 10 जुलाई नेक्स्ट फ्राइडे, माता रानी के लिए लॉन्ग वीकेंड पे मजा आएगा यार, काफी एक्साइटिंग है. आई डोंट नो इफ यू गाइस आर फॉलोइंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, तो वहां पे मैं बहुत सारे वीडियोस में अपडेट डाल रहा हूँ रिगार्डिंग वीडियोस, और ये हमारे हम पे भी आ रहा है, तो हम को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो वहां पे भी ये चीज आ रही है. पर यस, मेरा नाम केतन है और मैं हूँ अभी से लेके 3 बजे तक बहुत सारी बातें करने हैं, बहुत सारे अपडेट्स देने हैं, न्यूज खबर ये सारी चीजें हैं, प्लस इवेंट्स जो यहाँ पे हो रहे हैं वो सब भी आपको बताना है. तो आप कहीं मत जाइएगा, जस्ट ट्यून इन रहिए और सुनते रहिए मेरा शो, लंच बॉक्स शो इट इज. और आप हमें सुन रहे हैं हम 104.2 एफएम के जरिए, जहां पे हम चलाते हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े गीत. गीत से याद आया, एक एक्साइटिंग वाला गाना जो है उससे शुरुआत करते हैं. चोर का जड़ेगा हाय गोरों से, नहीं जोरों से लगा. मेरा बस एक दिक्कत है, मैं गाने खाता हूँ, गाने तो गा लेता हूँ लेकिन मेरे को लिरिक्स याद नहीं रहते हैं. मेरे को लिरिक्स का बहुत बड़ा इशू है, पता नहीं क्यों. बट यस, ये जो लिरिक्स है इसमें बहुत ही दमदार और काफी पावरफुल लिरिक्स लिखे गए हैं जोर का झटका, दलेर मेहंदी और रिचा की आवाज में. एंजॉय करिए ये गाना.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स और बात करेंगे होम सिक रेमेडीज की। अभी मैसेजेस तो आए नहीं है बट यस, आप मुझे 5599 में भेज सकते हैं कोई ऐसी चीज जो आप मिस करते हैं बीइंग फ्रॉम यू नो डिफरेंट सिटी या फिर डिफरेंट आपका ऑब्वियसली जहां से भी हैं आप, चाहे वो विद इन न्यूजीलैंड हो या फिर सम अदर कंट्रीज, तो डेफिनेटली आप मुझे भेज सकते हैं। वैसे कभी कभी घर की याद इतनी गहरी होती है कि दिल जो है बहुत ही उदास हो जाता है। अगर आप भी होमसिक महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए ये एक बिल्कुल यू नो फितरी एहसास है। अपने घर वालों से बात करें, वीडियो कॉल करें, अपना पसंदीदा खाना बनाएं या सुने और अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, रेगुलर जो आप स्पेंडिंग करते हैं, जो भी आप रेगुलर चीज़ें करते हैं उसमें छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढना शुरू करिए। आई नो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी दूर से आते हैं यहाँ पे और इतना आसान भी नहीं होता है उनका वापस घर जाना या फिर फिजिकली प्रेजेंस होना। नए दोस्त बनाए यहाँ पे और अपने आसपास के माहौल को अपना बनाने की कोशिश करें। यहाँ के जो कितने इवेंट्स होते हैं, कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जाना शुरू करिए, वहाँ पे अपना हिस्सा करिए एंड प्लस ऑफ कोर्स वहाँ पे आप अपने लोगों को भी बहुत पाएंगे एंड वक्त के साथ नई जगह भी घर जैसी लगने लगेगी आप सभी को। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराइए और याद रखिए कि हर सफ़र एक नया घर की तरह भी ले जा सकता है। जी हाँ, सो यस, आप बने रहिए बिकॉज ऐसी और भी दिलचस्प बातों के लिए आप हम सुनते रहिए हम 104.2 FM बिकॉज यहाँ पे हम बातें भी बहुत दिल से करते हैं। जी हाँ, लंच बॉक्स इट इज एंड केतन कुमार। वैसे यस, ऑफिस शाउट आउट के लिए भी आप मुझे मैसेज भेज दीजिए, व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस आर ईटिंग राइट नाउ और किसके साथ खा रहे हैं, whether you are working from home or working from office या फिर working from garden या फिर somewhere else, आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे। I would love to hear 5599 पे आप मुझे message भेजिए।
1: Lunchbox with Ketan,
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम keep calm because Punjabi swag is on.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंचबॉक्स। वैसे यस, होम सिक रेमेडीज के बाद ये भी हम बात कर लेते हैं कि ऑफिस शाउट आउट में एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं। कुछ मैसेजेस आए हैं मुझे, किसी का बर्थडे भी है, आई एम नॉट श्योर इफ हमने वो अनाउंस किया है, नहीं किया है, बट यस आई सी इफ आई कैन डू इट ओवर हियर। बर्थडे है आज अमीरा का, हैप्पी बर्थडे अमीरा, एंड वो 6 साल की हो चुकी हैं 27 जून को, तो ऑफ कोर्स अभी 5-6 दिन और ऊपर निकल चुके हैं, तो यस 6 साल और 5-6 दिन ऊपर। शी इज वो कार में थी अभी उस टाइम जब मैसेज आया था, ऑफ कोर्स होपफुली अनाउंसर्स ने कर दिया, बिकॉज होपफुली जब ट्रांजिशन होता है बिटवीन वन शो टू डिफरेंट शो तो हो सकता है उन्होंने उस टाइम बोला या नहीं बोला, बट मैनी कंग्रेचुलेशन एंड हैप्पी बर्थडे अमीरा फ्रॉम अस टू यू, एंड यस एवरी वन लव्स यू लॉट, एंड wow, and she said like she will be very very excited if she sees. So yes, Amira, happy birthday to you again. That's so cute, right? Well, बच्चे जो होते हैं काफ़ी स्वीट होते हैं, एंड आज तो पता नहीं क्यों डिफिकल्ट हुई है, यू नो जब मैं यान को रेडी कर रहा था, इट वॉज़ लाइक रेडी करने में थोड़ा सा वो इरीटेड हो रहा था फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। हाँ, बट देन स्लोली स्लोली जब मैंने उसका टाइम स्पेंड किया, ये सब किया, तो ऑब्वियसली यू नो थोड़ा ही बिकेम एक्चुअली नॉर्मल। यस, बट यस ऑफिस शाउट आउट के लिए ये रहे मैसेजेस, कुछ पढ़ लेता हूँ फटाफट से। वेल टुडे आई एम द ऑफिस हीरो बिकॉज आई बॉट होममेड पकोड़ास दैट माय मम फ्राइड दिस मॉर्निंग, दे डिसअपीयर्ड बिफोर आई इवन गॉट वन। ओह वाओ, विशाल ने बोला है, हैंडरसन से उन्होंने मैसेज किया मुझे। उसके साथ ही बुला केतन, आई टोल्ड माई सेल्फ आई वुड सेव मनी एंड ब्रिंग लंच फ्रॉम होम दिस वीक, डे वन सक्सेसफुल होममेड चिकन करी कुक्ड बाय माई हस्बैंड। अरे वाह, नाइस, क्या बात है, एंड इट वॉज एक्चुअली रियली गुड। यहाँ पे वैसे आप मुझे मैसेज करके बताइए दैट हु कुक्स बेटर इन योर हाउस, इज इट यू एज अ वाइफ और यू एज अ हस्बैंड, मतलब आपके हस्बैंड या फिर वाइफ कौन सबसे ज़्यादा बढ़िया खाना बनाता है। देखते हैं आज कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करता है, इधर इट इज़ अ गुड शेफ या मैन शेफ या फिर वुमेन, लेट्स फाइंड आउट कौन सबसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है। ऑफकोर्स इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी वोट्स वी गोना रिसीव नाउ, सो यस 5599 इज द नंबर, और आप मुझे वोटिंग के हिसाब से बता दीजिए आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन, अगर आप वाइफ हैं तो बताइए मुझे, इज इट यू योर सेल्फ एज अ वाइफ और यू और या फिर आपके हस्बैंड अच्छा खाना बनाते हैं, एंड सेम गोज टू हस्बैंड एज वेल, अगर आप खुद खाना अच्छा बनाते तो हस्बैंड लिख के भेज दीजिए, या फिर अगर आपकी वाइफ बनाती है तो वाइफ, मेरे केस में तो आप सभी को पता है कौन खाना सबसे अच्छा बनाता है, वो है वाइफ। जी हाँ, मेरे घर में तो ऑफकोर्स खुशबू बनाती, तो

0: ऑलरेडी वाइफ को एक पॉइंट मिल चुका है यहाँ पे. सो यस 5599 इज द नंबर जहाँ पे आप भी मुझे भेजिए.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

बेशमरंग शिल्पा राव और कैलिसा मोंटेरियो ने इसमें दी है, लेकिन म्यूजिक जो है वो है शायद मेरे ख्याल से विशाल शेखर का है, विशाल ददलानी और शेखर का गाना है। वैसे शेखर का एक वॉइस नोट भी आया था दैट ही इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद मोर पीपल, काफ़ी लोगों के साथ कोलैबोरेट भी किया है, तो उन्होंने एक रील भी डाली थी, तो अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो वहाँ से आपको पता पड़ जाएगा। जो भी आपके पास कंपोजिशन है या फिर कुछ भी है, यू कैन जस्ट फ्लिक हिम, उनका एक रील है वो आप चेकआउट कर लीजिए शेखर का, इफ़ यू आर म्यूज़िक लवर। उसके ज़रिए आप यू नो उन्हें रीच आउट कर सकते हैं, अगर उनको पसंद आता है तो दे वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू, या फिर जो आपका काम है उस पर काम करके दे विल प्रोड्यूस समथिंग विच इज़ सो ग्रेट। यार क्या बात है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, नॉट जस्ट बीन डिपेंडेंट ऑन द कॉम्पिटिशन बट यस, क्योंकि कॉम्पिटिशन आजकल बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया है, स्क्रिप्टेड टाइप। लोग कहते हैं कि कब हंसना है, कब नहीं हंसना है, किसकी तारीफ करनी है, किसकी नहीं करनी है, किसको निकालना है, ये सारा हर एक चीज़ प्रिडिक्टेड लगने लग गया है। सो यस, और बीच में तो ये भी आ रहा था कि जो ये रियलिटी शोज़ होते हैं सिंगिंग के हो गए, वो बेसिकली रिकॉर्ड की जाती है या फिर रिकॉर्डेड को फिर से फिल्टर किया जाता है, यानी कि उसमें काफ़ी ऑटो ट्यून वो सारी चीज़ें की जाती है ताकि एक भी गलती ना करे और एक लेवल जो है कोई भी कॉम्पिटिशन का वो बहुत ही बड़ा दिखे। बट यस, आप बने रहिए। अभी की जो लेटेस्ट आज की जो हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात अगर मैं करूँ, तो 3 जुलाई 1963 को न्यूजीलैंड की हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा यू नो दुख भरा दिन था। आज के दिन नेशनल एयरवेज कॉरपोरेशन का DC-3 स्काईलाइनर ऑकलैंड से तोरंगा जा रही थी जब काई माई रेंज के पास खराब मौसम, तेज़ हवाओं और नेविगेशन की मुश्किल की वजह से प्लान पहाड़ से टकरा गया। वैसे इस हादसे में प्लेन में मौजूद सभी 23 लोगों की जान चली गई और ये आज भी न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा डोमेस्टिक एयर डिजास्टर माना जाता है। इस ट्रेजेडी के बाद इन्वेस्टिगेशंस हुई और एविएशन सेफ्टी में कई बड़े बदलाव लिए गए जिससे बेहतर नेविगेशन इक्विपमेंट और इमरजेंसी लोकेटर विकॉन्स की सिफारिश से। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि हर ट्रेजेडी से क्या सीखना चाहिए और फ्यूचर को ज़्यादा सेफ बनाना चाहिए। जी हाँ,

0: What a song यार, what a song, बहुत ही प्यारा गाना है, आज से पास खुदा, ये वाली जो लाइन है, ये मुझे बहुत, one of my favorite part, but yes, let me remind you, आप AI से related podcast जो है, काफी search करते होंगे, definitely आप सीख रहे होंगे, but ये एक ऐसा podcast है, जो हमने record किया, Sandy and Rusman ने, काफी relate करेगा, because इसमें काफी ऐसे जवाब है, जो सचमुच यू नो काफ़ी रिलेटेबल होंगे आपके लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स ये खुद ऑकलैंड में रहते हैं और ऑकलैंड के बेस पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होने वाली है आपके लिए, बहुत ही अच्छा मौका है इस पॉडकास्ट को फ्री में सुनने का। आप हमें बस ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए, ताकि ऑडियो लिंक जो है वो आपके पास पहुंच जाए। आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी लोगों का कंसर्न होगा कि यार AI आ गया, आप तो जॉब जाने वाली, ये सब जाने वाली है। वेल, मुझे जॉब का तो पता नहीं, बट आपका डर डेफिनेटली जाना चाहिए आपके जहन से, बिकॉज AI विल नॉट गोइंग टू टेक योर जॉब, इट विल बी द पर्सन हु विल बी यूजिंग द AI, और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, नॉट इन अ सेंस ऑफ टेकिंग जॉब समवन्स जॉब, बट अपग्रेडिंग योरसेल्फ। और ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी यू नो हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि क्या प्लेटफॉर्म्स बाहर आ चुके हैं, एंड उसके साथ ही जॉब सिक्योरिटीज़, आपकी सेफ्टी भी ऑब्वियसली मैटर करती है, आपके जो फोटो सोशल मीडिया पे हैं, प्राइवेसी कंसर्न्स, आजकल ना डीफेक और ये सारी चीज़ें होती जा रही, बहुत ही गंदा यूज़ हुआ होते जा रहा है। सो यस, काफ़ी उस बारे में भी बात हुई है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलने वाली है इसके थ्रू, एंड साथ में स्किल्स, आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं और फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये सारी बातें आप सुनिए। दर्शित पांड्या जो यहाँ आए थे, सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर हैं ये, प्लेटफॉर्म एट सर्को एंड AIWS कम्युनिटी बिल्डर में, आप इनका पॉडकास्ट सुनिए 5599 पे, ड्राइव लिख के भेज दीजिए ताकि लिंक आप तक पहुंच जाए। साथ में यस, BF लिखिए 5599 पे, आप पॉडकास्ट या फिर कैचअप सुन सकते हैं बाय विजयन पूजा, जो काफ़ी उनके जो बिट्स एंड कन्वर्जेशन है वो वाली यू नो गुफ्तगू सुन सकते हैं आप, BF लिख के 5599 भेज देंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए, 5599 से नंबर जहां पे आप मुझे टेक्स्ट भेज दीजिए।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।

0: ई भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Are you ready for some extra money? If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. Look out for information from Entrust in your letterbox or email inbox. Check your payment details are correct and let us know of any changes as soon as possible. If we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in late September. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
2: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले माइटिटन मेगा बॉटनी में। फ्री किड्स एक्टिविटीज, क्लासिक सॉसेज सिजल, लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिवअवेज, प्लस 4 टाइम्स एयर पॉइंट्स टो वाइड। टीज एंड सीज एंड एक्सक्लूशंस अप्लाई दिस सैटरडे एट माइटिटन मेगा बॉटनी।
3: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
4: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Tūtaki, all together Auckland.
5: Playing Bollywood's biggest hits.
6: Hum. Chutney shots.
5: Lunchbox with Ketan.
7: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
5: इसके पीछे।
6: Hum.
8: वेल यस, चटनी शॉट्स के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करेंगे अभी की लेटेस्ट कुछ खबरों का। मेक श्योर आप बने रहिए, बिकॉज यहाँ पे स्पोर्ट्स की जो खबरें होती हैं वो आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन यस, अभी के लिए हाल फिलहाल ये रही कुछ खबर। सबसे पहली खबर जो है वो है मैन अरेस्टेड ओवर 9 मिनट अनप्रोवोक्ड ऑकलैंड बस असॉल्ट। जी हाँ, 9 मिनट तक बिना किसी वजह के एक पैसेंजर पर असॉल्ट करने का आरोप है उस आदमी पे जिस पर ऑकलैंड बस में वो सवार कर रहे थे। उन्होंने उसे अरेस्ट भी कर लिया है। वैसे पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। नॉर्थलैंड में एक अनयूजुअल एक्सीडेंट देखने को मिला है। एक ट्रक से पोर्टेबल केबिन गिरकर सीधे एक कार पर आ गिरी और इस इंसिडेंट में एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ है जिसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। इंटरनेशनल न्यूज़ में वेनेजुएला से एक मिरेकल्स रेस्क्यू की खबर। पावरफुल अर्थक्वेक के 8 दिन बाद रेस्क्यू टीम्स ने एक आदमी को कोलैप्स बेसमेंट से जिंदा बाहर निकाल लिया है। इस इनक्रेडिबल रेस्क्यू ऑपरेशन की दुनिया भर में काफ़ी तारीफ हो रही है। स्पोर्ट अपडेट में कीवी फॉर्मूला 1 ड्राइवर लियाम लॉसन ने कहा है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस उनके लिए खुद को प्रूव करने का एक बहुत ही बड़ा मौका है। फैंस को उनसे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। और आखिरी खबर टेक्नोलॉजी से एक गुड न्यूज़ है। गूगल मैप्स ने अब माओरी प्लेस नेम्स को सही प्रोनंसिएशन के साथ बोलना सीख लिया है। इस अपडेट का जो मेन पर्पज़ है वो है न्यूजीलैंड की लैंग्वेज और कल्चर को और रिस्पेक्ट और रिकग्निशन देना।

वेलकम बैक। चलिए अभी एक सवाल का टाइम आ चुका है जहां पे मैं आपसे पूछूंगा कुछ ऐसा सवाल। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ क्योंकि एक दो सवाल तो है मेरे जहन में, बट क्या पूछूं। वेल गेस, एक सवाल, हाँ ये मेरे को लगता है ये शायद सही होगा। लेट्स टॉक अबाउट, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे इस आर में हमने होमसिक रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपकी यादों को अगर हमने ताज़ा की है तो थोड़ी और उसमें और ताजगी लाते हैं। मुझे आप बताइए कि क्या आपने अपना स्कूल कभी बंक किया है? अगर हाँ तो बताइए मुझे 5599 पे कि क्या वजह थी, लाइक व्हाट इज द मोस्ट फनीएस्ट रीजन यू हैव गिवन, यू नो यू हैव गेव टू योर टीचर और एनीवन, जो ऑफ कोर्स आपको बताएंगे कि क्या रीजन की वजह से आपने वो बंक किया था। तो यस, 5599 नंबर जहां पे आप मुझे भेज दीजिए अभी। लेट्स सी कितने इंटरेस्टिंग मैसेजेस आते हैं, बट आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइस। मैंने भी मारा है बचपन में बंक बहुत बार तो नहीं, लेकिन सीन ये हुआ था कि एक बार मेरा हाथ में मेरा लग गई थी, तो मैंने उस टाइम तो जेन्युइनली मैंने एक्सक्यूज़ मारा, लेकिन उसकी ऐसी गंदी आदत लगी कि मुझे उसी का एक्सक्यूज़ देते देते बहुत बार मैंने बंक मारनी शुरू कर दी थी। 11th की बात है, 11th क्लास में था मैं तब। हाँ बट ये साहब भी मुझे भेज दीजिए 5599 पे और बताइए मुझे कि व्हाट इज द मोस्ट फनीएस्ट रीजन यू हैव गिवन टू योर टीचर और योर यू नो पेरेंट्स फॉर द बंकिंग।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Wow.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: आवाज गूंजेगी।
1: लंच के मंच पे
2: वेलकम बैक, क्या हाल, नमस्ते, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और यस, थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था आप सभी से मैंने, एक उस बारे में कि आपने अगर बंक मारा है तो क्या सबसे फनी रीजन, या फिर आज ऑब्वियसली सोचोगे तो ऑब्वियसली इट माइट बी फनी, बट आपने क्या ऐसा रीजन मारा होगा जो आपने बंक के लिए आपको काफी बढ़िया योगदान दिया था। तो यस, आप मुझे 5599 पे मैसेज भेजिए और बताइए व्हाट इज द मोस्ट फनीएस्ट एक्सक्यूज यू हैव गिवन टू योर टीचर और योर पेरेंट्स फॉर द बंकिंग। मैंने अपना रीजन तो बता दिया था, यस कुछ मैसेजेस मिले हैं मुझे बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर फ्यू मोर। तो यस, जल्दी से मुझे 5599 पे आप भेज दीजिए ताकि लेट्स सी यार किसका सबसे ज्यादा फनी वाला होता है मैसेज। बट आप बने रहिए बिकॉज एसआर में काफी कुछ आपसे बात करनी है, बॉलीवुड की खबरों से लेके लेटेस्ट खबर जो देश दुनिया में चल रही है उसके बारे में, स्पेशली न्यूजीलैंड, और फिर उसके बाद और भी चीजों के साथ आपसे बातें होगी। तो यस, आप बने रहिए, सुनते रहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दी मेरा मुफ्त का, नंदनी श्रीकार और मुआजम रिजवान की आवाज में ये गाना एंजॉय करिए।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल यस, अभी जो गाना सुना है वो सोनू निगम का बहुत ही प्यारा गाना था। मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था आप सभी से, व्हाट इज द मोस्ट फनीएस्ट एक्सक्यूज यू हैव गिवन टू योर टीचर और योर पेरेंट्स फॉर द बंकिंग। कुछ मैसेजेस मिले हैं, एक बहुत ही हिलेरियस रहा है, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस है। लाइक लिटरली मुझे थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगा, खुद समझने की भाई क्या क्या मतलब दो लाइनें एक साथ लिख दी, देन आई रियलाइज कि अच्छा इसका ये तात्पर्य है। बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहला वाला मैसेज पढ़ रहे थे रवि भाई का, जो हमेशा टाइम पे मैसेज भेज देते हैं। आई टोल्ड माई टीचर आई हैड अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, देन बम्प्ड इनटू हर एट सिल्विया पार्क एन आवर लेटर। ओ हो, अच्छा तो मतलब आप यहीं पर पढ़े हो। ओ नाइस रवि भाई, गुड यार। वेल आपकी सिचुएशन कैसी रही होगी जब आप सिल्विया पार्क पे ही उनसे टकरा गए, तो I need to know now. आधी अधूरी स्टोरी मत छोड़ना। वैसे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं रवि भाई, बता सकते हैं मुझे कि आप यू नो 0800-004-866 पे, इफ़ यू आर ओके यू कैन शेयर इट ओवर हियर। आई एम प्रीटी श्योर होपफुली आपकी टीचर अभी नहीं सुन रही हो। प्रिया कहती है, आई सेड आई मिस द बस इवन दो आई लिव्ड अ 5 मिनट वॉक फ्रॉम स्कूल, समहाउ दे बिलीव्ड मी। हो सकता है आपकी जो यू नो एक्टिंग जो थी वो बहुत ही टॉप नॉच रही होगी, दैट दे हैड नो ऑप्शन लेफ्ट। और ये रहा हिलेरियस मैसेज, एक ने कहा है मैंने रीजन दिया है, मैं गिर गया था और लग गई थी। फिर टीचर ने पूछा कि कहाँ गिर गए थे और कहाँ लग गई थी, तो मैंने बोला बेड पे गिर गया था और नींद लग गई थी। ये भगवान, गजब टैलेंटेड लोग हैं यार, मतलब क्या मैसेज भेजते हैं यार। मैं फिर से पढ़ता जस्ट इनके, अगर मेरी हंसी की वजह से अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इनका मैसेज आया, इन्होंने रीजन दिया है कि उन्होंने क्या रीजन दिया था बचपन में, मैं गिर गया था और लग गई थी, फिर टीचर ने पूछा कहाँ गिर गए थे और कहाँ लग गई थी। तो बोलते हैं मैं बेड पे गिर गया था और नींद लग गई। अरे भाई गजब टैलेंटेड लोग हैं यार, मतलब

0: Okay. Well, yes, thank you so much for all the messages aapne bheje jo. But yes, it was such a hilarious reply. Aap sabhi ke bahut hi maza aaya. Aap bane rahiye because bahut jald aapke liye one of the favorite song because inhone Bandhu 2.0 bhi bola hai play karne ke liye. For sure, we already have that in top hit of the hour ki list mein. So aap kahin mat jaiye aur sunte rahiye hame aaj ke is lunchbox show mein.
1: Lunchbox with Ketan.
2: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
5: क्या? कौन है?
6: Hunua और Waitakere.
5: अच्छा Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: Weekdays 6 to 10 a.m.
7: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
8: Stock up on your snacks with New World North Island's 3-day sale. Get Coca-Cola, Sprite or LNP 18-pack cans $14.99 each. Or McCain Super Fries 900 grams $2.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले माइटी 10 मेगा बॉटनी में. फ्री किड्स एक्टिविटीज, क्लासिक सॉसेज सिजल, लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिवअवेज, प्लस 4 टाइम्स एयर पॉइंट्स स्टोर वाइड. टीज़ एंड सीज़ एंड एक्सक्लूशंस अप्लाई दिस सैटरडे एट माइटी 10 मेगा.

0: Lunchtime Rant Line.
1: लंचटाइम रेंटलाइन के सेगमेंट में आपका बहुत स्वागत है। आप मुझे वैसे मैसेज भेज सकते हैं अगर आपने मिस आउट किया है तो कि एनी रेंट हैज बीन हैपेंड टुडे, आप मुझे भेज सकते हैं 5599 पे। कुछ मैसेजेस मिले हैं केतन भाई, टुडेज रेंट इज व्हाई डज योर फोन बैटरी लास्ट ऑल डे ऑन वीकेंड्स बट ऑन अ वर्क डे इट्स डाउन टू 20% बिफोर लंच। ये तो सोचने वाली बात है कि मे बी हो सकता है वीकेंड में वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम विद अदर पीपल, दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी आर नॉट इन टू मच इनटू फोन, बट वर्क डे के दिन, वीक डेज के दिन तो वी आर टू मच इनटू फोन। वैसे आज मैंने मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी और उसको मैंने ये चीज़ बताई थी बिकॉज वो जस्ट अभी फीजी से आया और वो बोल रहा था कि यार इतना टाइम जल्दी से निकल गया पता नहीं पड़ा। तो मैंने दोस्त को बोला कि यार तेरे को पता है एक चीज़ बताओ, मैंने ये एक्चुअली जेन्युइनली बताना तो मैंने कहीं ना तो सुनी है और ना ही मतलब किसी पॉडकास्ट में कही है, लिटरली मेरी ज़बान से निकला है। मैंने बोला कि यार जो समय है ना वो अपनी खुशी से जेलस फील करता है। तो बोलता है क्यों भाई ऐसा क्यों? मैंने कहा देख जब पता पड़ता है समय को कि भाई बंदा बहुत खुश हो रहा है, बंदा बहुत एंजॉय कर रहा है, वो फट से टाइम ख़त्म कर देता है ना, मेक सेंस। पर ऑफकोर्स होपफुली आपको समझ में आया हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली उस जैसा कि उसने बताया कि उसका टाइम जो है बहुत ही तेजी से निकल गया था व्हेन ही वाज हैविंग अ गुड टाइम ओवर देयर। दूसरा मैसेज है ये इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, टुडेज रेंट इज केतन, पीपल हु स्टैंड राइट इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन और लिफ्ट डोर विदाउट लेटिंग अदर्स गेट आउट फर्स्ट, वेयर इज द पेशेंस? आई हैव नो आइडिया ब्रो, मेरे को लगता है वो ट्रेन के साथ ही निकल गया होगा, बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे ऐसा सीन होता होगा बिकॉज आई डोंट गो टू ट्रेन अलॉट, आई डोंट ट्रैवल यू नो इन ट्रेन अलॉट, सो आई हैव नो आइडिया, बट अगर आपने लिखा है तो डेफिनेटली ऐसा कुछ कहीं तो होता होगा। केतन भाई, महेश हियर, टुडेज रेंट इज व्हाई इज इट दैट द मोमेंट यू वॉश योर कार ऑकलैंड डिसाइड इट्स द परफेक्ट टाइम टू रेन? देखो अभी 4-5 दिन काफ़ी अच्छा सनी था, आई डोंट नो अगर आपने इसमें किया होगा तो मे बी यू माइट बी कॉन्ट्रास्ट बता रहे, या फिर अगर आपने नहीं प्लान किया है एंड इफ यू आर प्लानिंग ड्यूरिंग द क्लाउडी टाइम तो यू नेवर

0: नो यार कब बारिश हो जाए, दिस इज ऑकलैंड. बट थैंक यू सो मच. एक और मैसेज आया है, ये इन्होंने अपना नाम बताया है या इन्होंने अपना क्या लिखा है, ये मेरिटिकारी ये क्या था, मतलब समझ में नहीं आया. कैन यू लेट मी नो अगेन प्लीज, आपने ये मैसेज भेजा है क्या, इस मैसेज का जो तलफ्फुज है, जो तात्पर्य है क्या है, प्लीज मुझे 5599 फिर से बताइए.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स में फिर से। अभी की एक लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। बड़ी डिप्लोमेटिक खबर न्यूजीलैंड और इंडिया के रिश्तों से जुड़ी हुई आई है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अपनी पहली ऑफिशियल न्यूजीलैंड विजिट पर आ रहे हैं और ये किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की लगभग 40 साल बाद पहली ऑफिशियल विजिट होने वाली है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे दोनों देशों के बीच बहुत ही स्ट्रांग होते रिश्ते को एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बताया है और इस साल दोनों कंट्रीज ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन की है जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा मिलने वाला है। मोदी ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के लीडर्स से मुलाकात करेंगे और इंडियन कम्युनिटी से भी मिलने का प्रोग्राम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस विजिट से ट्रेड, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पीपल टू पीपल टाइज को और भी मजबूती मिलने वाली है। अब सबकी नज़रें जो है इस हिस्टोरिक विजिट पर टिकी हुई है। वेल, हाउ एक्साइटेड आर यू? मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं पहली बार, ऑब्वियसली वो भी पहली बार आ रहे हैं और इंडिया की जो 40 साल की जो हिस्ट्री रही है पिछले 40 साल उसमें पहले प्राइम मिनिस्टर भी बनने वाले हैं लास्ट के 40 ईयर्स कि कोई प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड विजिट कर रहा है। वाओ। लंच के मंच

चलिए, इट्स टाइम फॉर मी टू रन सम कंपटीशन और आपका काम ये है कि आप मुझे एकदम कान खोल के सुनिए और जल्दी से इस गाने को समझिए कि गाना कौन सा है और आप मुझे 555-99 पे भेज दीजिए। जी हाँ, वेल यस, गाना जो है थोड़ी देर में चलाने वाला हूँ, बट उससे पहले आपको बता देता हूँ दैट करण ओजला आ रहे हैं पहली बार इन दो सालों में आप सभी के बीच ऑकलैंड में अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके। जी हाँ, लास्ट दो साल पहले आया था, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स गोइंग टू बी द मैसिव फ्रॉम चार्ट टॉपिंग हिट्स से लेकर उनके सारे एंथम्स और लवली एक्सपीरियंस के लिए आप स्पार्क एरिना में पहुंच जाइए 25 अगस्त को। यहाँ पे बहुत बढ़िया इनके लाइव शो होने वाला है और सबसे खास बात, एक स्पेशल गेस्ट भी आ रहे हिट मेकर इक्के, मेकिंग दिस एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक एंड एनर्जी। पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग टिकट्स आप विजिट hum.roa.nz या फिर livenation.co.nz पे जाके टिकट ले सकते हैं। करण ओजला आ रहे हैं यहाँ पे ऑन 25 अगस्त को, लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो कंपटीशन मैं वो लेके आया हूँ कि एक गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, इट वुड बी एनीवेयर फ्रॉम इन बिटवीन एनीथिंग। देखिए, मैं पंजाबी गाने ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, बट कुछ गाने जो है मेरे बहुत ही फेवरेट है। लैंग्वेज की ऑब्वियसली मेरे को इतनी समझ नहीं है पंजाबी की, थोड़ा वो समझ लेता हूँ बट नॉट लाइक टू डीप, बट म्यूज़िक जो होता है, म्यूज़िक इतना पसंद आता है मुझे, ऑनेस्टली एक से बढ़कर एक, है ना। आप सभी को पता ही है मैं यूजली बॉलीवुड लवर हूँ, बट बॉलीवुड में भी काफ़ी टाइम से काफ़ी म्यूजिशियंस जो है, म्यूज़िक डायरेक्टर, वो पंजाबी म्यूज़िक को फॉलो करते हैं या उसे यूज़ करते हैं। सो यस, दिस सॉन्ग इज़ एक्चुअली वन ऑफ देम, वन ऑफ माई फेवरेट। तो अगर जवाब सही दिया तो आपको ड्रॉ में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो आपको डेफिनेटली मौका दे सकता है एक डबल पास जीतने का, जिसका डिस्क्लोज होगा 6 जुलाई को ब्रेकफास्ट शो में। वेल यस, वो गाना जो है मैं चलाने वाला हूँ, जैसे आप समझते हैं आप जल्दी से मुझे KA लिख के उस गाने का नाम 555-99 पे भेज दीजिए अपने नाम के साथ। तो ये रहा गाना।

0: वेल, इससे ज़्यादा मैं नहीं चलाने वाला, इससे ज़्यादा कर दिया तो शायद आपको सचमुच पता पड़ जाएगा उसका नाम ही. सो यस, इतना मैं ज़्यादा नहीं करने वाला, बट आप मुझे 5599 पे जल्दी से भेज दीजिए. KA लिखना ना भूलिएगा, बिकॉज उसके बिना आप क्वालिफाई नहीं करेंगे इस कॉम्पिटिशन के लिए. KA लिखिए इस गाने का टाइटल और अपने नाम के साथ मुझे जवाब भेज दीजिए 5599 पे.
1: लंच बॉक्स विद केतन. इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: Feed the faith with the 1NZ Warriors range exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.

वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं कुछ लाइफ हैक्स की। जॉब काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी की खो रही है तो कोई जिनके पास ऑलरेडी है तो वो हिल नहीं रहे अपनी सीट से, ये सोचिए कि यार अगर मैंने छोड़ दी या फिर स्विच होने का भी प्लान किया, क्या पता दूसरी कंपनी जो है वो सही रहेगी या नहीं। पर यस, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको आपके रिज्यूम में करियर गैप है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहता है हमेशा सबके लिए कि भाई गैप जो है वो काफ़ी जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वैसे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, दैट घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करियर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आजकल एम्प्लॉयमेंट गैप से पहले जितना नेगेटिव नहीं माना जाता, बस इंटरव्यू में ईमानदारी से बताएं कि गैप्स किस वजह से थे। ये सारी चीज़ें हुई हैं आफ्टर कोविड, चाहे फैमिली की जिम्मेदारियां, पढ़ाई, हेल्थ या करियर ब्रेक। अगर इस दौरान आपने अपने वॉलंटियरिंग की है, कोई कोर्स किया है या नया स्किल सीखा है तो वो उन्हें जरूर हाईलाइट करें रिज्यूम में। करियर ब्रेक या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे सिंपल हेडिंग भी यूज की जा सकती है। एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट फ्रॉम द इंटरनेशनल न्यूज, बट ये यहीं के न्यूज से हुआ है, यानी कि ये न्यूजीलैंड के ही एक आर्टिकल में आया है। सो ऑफकोर्स अगर किसी ने छापा है तो ऑब्वियसली मेक सेंस। रिज्यूम में करियर ब्रेक या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे सिंपल हेडिंग भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने स्किल्स और कॉन्फिडेंस को ध्यान रखें और उस पर पूरा फोकस रखें। एम्प्लॉयर्स सिर्फ गैप नहीं देखते बल्कि ये भी देखते हैं कि आप उस एक्सपीरियंस से क्या सीख रहे हैं, यानी कि अगर आपके लाइफ में अगर गैप्स हैं तो उनको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, वो उतने कंसर्न नहीं है दैट वेदर यू हैव यू आर मेकिंग एनी मनी ड्यूरिंग दैट गैप और नॉट, बट यू एक्चुअली हाउ यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम, जो आपका गैप था उसमें एग्जैक्टली आपने क्या किया था, दैट इज़ वॉट दे आर आफ्टर, यानी कि वो वही जानना चाहते हैं। तो यस, ये चीज़ सोचिए एंड डोंट थिंक अबाउट अ लॉट कि भाई मेरे करियर में गैप बहुत ज़्यादा गया तो इट गोना बी डिफिकल्ट, क्योंकि पहले होता था बट नाउ इट इज़ जस्ट गोइंग लिटिल बिट, बहुत ही कम रह गया। सो डेफिनेटली आप ये चीज़ चेकआउट करिए और एक फिर से रिफ्रेश रिज्यूम बना के यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर द जॉब अगेन।

0: Lunchbox with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
3: I don't know, all I remember was she wear the Skechers. The light up ones.

0: Kia ora, namaste, welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan and you are listening until 3. After that, Sandy will join for the coffee break and after that, we will give them in the drive show. But yes, today's news is a lot of news. There are some other answers. But yes, इस आर में आपको फीफा के भी अपडेट दूंगा, कुछ मैचेस हुए थे तो आप बस बने रहिए, साथ में बॉलीवुड की भी कुछ अपडेट एंड ऑफ कोर्स हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है वो सारी बातें आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी करके, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बस बने रहिए अंटिल थ्री।
1: बचाओ क्या,

0: Well, एक काफी सैड न्यूज आई है ऑकलैंड यहीं पे अभी थोड़ी देर पहले ही ये रिलीज हुई है. 3 साल के एक बच्चे की जो डेथ है उसके मामला है जो सामने आया है और उसमें एक्चुअली ये न्यूज तो काफी बाहर थी लेकिन अभी जो नया अपडेट आया वो ये है कि 33 साल की जो मदर है उस पर मैंस लॉटर के चार्जेस लगाए गए हैं. एंड पुलिस के अकॉर्डिंग ये जो इंसिडेंट हुआ था वो 1 जनवरी की रात डेवनपोर्ट में हुआ था जहां इमरजेंसी सर्विसेज को एक घर बुलाया गया था. वहां पहुंचने पर बच्चा बेहोशी की हालत में मिला था और उसे बचाया नहीं जा सका. इसके बाद पुलिस ने कई महीनों तक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, फॉरेंसिक एविडेंस और विटनेस स्टेटमेंट्स भी इकट्ठे किए. इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद महिला को अरेस्ट कर दिया गया और उस लेडी को ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश भी किया गया. अब ये केस हाई कोर्ट में चलेगा जहां आगे की कानूनी कार्रवाई जो है उसे कंटिन्यू की जाएगी. पुलिस ने ये भी कहा है कि ऑफ कोर्स दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के हाथ में है, इस वजह से दे कैन नॉट शेयर एनी मोर इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम दिस. सो यस, ये केस पूरे न्यूजीलैंड में काफ़ी चर्चे का विषय बना हुआ था. साथ ही ये भी याद रखना ज़रूरी है कि कानून के मुताबिक किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जाता है जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देती.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: मुझे पसंद है लड़का.
1: हाँ. वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. सिर्फ रोवा पर.
1: Winter आ गया है and Mighty 10 Mega Westgate and Henderson has you covered. Your one-stop shop for everything inside and out, plus a friendly team of experts to help you get it done. In store आइए या shop online today.
2: Oh no, we'll be late.
3: We'll be all right. I'll call the AA.
4: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
5: Hi boys. एक कहानी सुनाती हूँ. एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था. वो धोखे से राज करता था.
6: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है.
7: पर शुड वी कॉल हर सर?
8: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
5: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई.
9: YRF Spy Universe presents
10: Alpha.
9: Now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
5: शुरू करो अग्नि परीक्षा.

0: अलग अलग टाइम के हिसाब से। पहले तो मिखेल ने किया था 36 में, फिर पेड्रो ने किया 66 में, और फिर मिखेल ने अगेन 89 मिनट पे गोल किया। ऑस्ट्रिया की तरफ से एक भी गोल नहीं दागा गया था। वैसे पोर्चुगल की अगर बात करें, पोर्चुगल वर्सेस क्रोशिया, उसके बीच में भी मैच हुआ है, 2-1 से जीत गई है पोर्चुगल, जिसमें ऑफकोर्स सबके चहेते क्रिस्टियानो ने गोल किया है 68 मिनट में, एंड 90+4 मिनट पे गोंकेलो ने भी गोल किया है। सो यस, 2-1 से ये भी जीत चुकी है। उसके बाद जो आखिरी मैच है वो 3 बजे शुरू होगा, वर्सेस स्विट्जरलैंड वर्सेस अल्जीरिया के बीच में, बीसी प्लेस वैंकूवर के। सो यस, ये इनके बीच मैच है। वैसे स्टैंडिंग पर देखें तो अभी ग्रुप 32 चल रहा है, राउंड ऑफ 32 चल रहा है, और एक्चुअली राउंड अगर 16 देखे तो वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, जिसमें तरह तरह की पराग आ चुकी है, फ्रांस आ चुकी है, कनाडा है, देन मोरक्को है, उधर पोर्चुगल है और स्पेन है, फिर यूएसए भी है और बेल्जियम भी है, और दूसरी तरफ देखें तो अभी दूसरे ग्रुप में अभी फाइनल नहीं हुआ है, जिसमें ब्राज़ील ने चांस मारी है अच्छी, उसके बाद नॉर्वे भी है, उसके बाद मेक्सिको एंड इंग्लैंड भी है, और अभी 4 टीमें और बाकी है अगले ग्रुप में। सो यस, लेट्स सी कौन सी 4 टीमें राउंड ऑफ 16 में अपना नंबर लगाती है।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक. वेल चलिए बॉलीवुड से एक खबर लेके आया हूँ. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल ऑफ यू नो जो हमारे लिसनर हैं वो उनको पसंद है कैरेक्टर, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और वो है मिनियंस. वेल मिनियन ऐसा कैरेक्टर है जो सचमुच किसी और फिल्म के साइड रोल पे था लेकिन उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली है कि उन्होंने एक फिल्म ही बना दी. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आई थिंक चार फिल्में बन चुकी हैं उनके नाम की. वेल यस, अगर आप फैमिली के साथ एक फन फिल्म्ड एनिमेटेड मूवी देखना पसंद करते हैं तो मिनियंस एंड मॉन्स्टर आपके वीकेंड के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ये फिल्म हमें 1920s के हॉलीवुड में ले जाती है जहां शरारती मिनियंस की फनी जर्नी शुरू होती है. वैसे मूवी में जबरदस्त एनिमेशन, ब्राइट विजुअल्स और नॉन स्टॉप कॉमेडी देखने को मिल सकता है आपको, जो बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स को भी काफी एंटरटेन करेगा. फिल्म में हॉलीवुड क्लासिक सिनेमा को लेकर कई मजेदार रेफरेंस भी हैं. हाँ, सेकेंड हाफ में थोड़ी सी कहानी जो है स्लो हो जाती है लेकिन कुछ सीन्स छोटे बच्चों के लिए थोड़े डार्क फील हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कॉमेडी, एडवेंचर और कलरफुल एनिमेशन की वजह से ये फिल्म एक एंटरटेनिंग फिल्म फैमिली वॉच बन जाती है. बॉलीवुड की एक लोकल न्यूज़ जो है उन्होंने ये इस फिल्म को करीबन 3 स्टार दिए हैं आउट ऑफ 5, यानी कि 6 out of 10, विच इज़ नॉट सो ग्रेट यार मेरे अकॉर्डिंग. बट काफ़ी फनी है, काफ़ी फन है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, विजुअल वाइब्रेंट और एंटरटेनमेंट राइड बताया गया है. अगर आप मिनियंस के फ़ैन हैं तो ये मूवी मिस आपको नहीं करनी चाहिए. मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ. वैसे आप मुझे बताएं सबसे फेवरेट कैरेक्टर आपको कौन सा है, इवन नाउ यू वॉच इट यू नो आफ्टर क्रॉसिंग 30s एज वेल, जो कार्टून का आपको बहुत पसंद है.

0: वेलकम बैक। चलिए एक और कॉम्पिटिशन आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया शो होने जा रहा है, लाफ्टर शो, कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर। जी हाँ, ट्रिविजन एंटरटेनमेंट, सॉरी ट्रिविजन इवेंट्स की तरफ से ये शो हो रहा है ऑन 18 जुलाई विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। आप टिकट अभी ले लीजिए, जहाँ पे आ रहे हैं कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव कमिंग टू ऑकलैंड। जी हाँ, आप टिकट ले लीजिए bookmyevent.co.nz पे जाके। कुछ दिक्कत हो तो आप 021-043-2720 पे कॉल करके पता कर सकते हैं। और साथ ही में ऑफकोर्स अगर आफ्टर पे के थ्रू अगर परचेज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। पर यस, आप गेट रेडी रह जाइए, आई मीन गेट रेडी फॉर दिस अमेजिंग शो। VIP टिकट्स जो है वो बिक चुकी है, सो देर इज नो चांस ऑफ गेटिंग दैट। बट यस, आप अभी भी टिकट खरीद सकते हैं। It is actually looking like, you know, almost gonna get very very full very very soon. यहाँ पे हमारे लिसन के लिए अमेजिंग मौका ये है कि आपको मेरे सवाल का जवाब देना है और 5599 पे भेज देना है। Well, जो मेरा सवाल है वो ये है कि कृष्णा अभिषेक कितनी बार न्यूजीलैंड में परफॉर्म कर चुके हैं। जी हाँ, कृष्णा अभिषेक न्यूजीलैंड में कितनी बार परफॉर्मेंस दे चुके हैं, आप इसका जवाब मुझे भेज दीजिए 5599 पे अपने नाम के साथ। क्योंकि अगर सही जवाब दिया तो आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और ड्रॉ के थ्रू आप जीत सकते हैं डबल पास। व्हाट अ ग्रेट थिंग, राइट?
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: 80s के रेट्रो गाने।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: हम आजकल लेकर इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: Bunnings has great value nailed across the store.
5: Like 10.5 centimetre assorted strawberry plants, only $2.97 each. And Garden Time 1.5kg strawberry fertiliser, just $10.09. Head in store or online for even more great value. Bunnings
6: Warehouse. Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers. Buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
7: Hi boys, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था।
8: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
9: But should we call her, sir?
10: इसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलाएंगे।
7: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
11: YRF Spy Universe presents
12: Alpha.
11: Now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
7: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
13: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
14: हाँ। अच्छा
13: बताओ तुम्हारा फोकस, फोकस साडा कुछ नहीं।
14: मिसेस सिंह
15: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
16: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहोहो। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: स्वागत करते हैं लंच बॉक्स शो में फिर से आपका और बात करते हैं टेक टॉक के सेगमेंट में। आपका स्वागत है सबसे पहले तो। और टेक टॉक में अभी जो काफी एक न्यूज है वो काफी पॉपुलर हो रही है एंड मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो है वो इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं उसमें से। हमारे ऑफिस में ही हमारे जो अनाउंसर्स है उसी में एक है जो काफ़ी इंटरेस्ट है उस टेक टॉक को यूज़ करने का, टेक को यूज़ करने का। हाय सैंडी, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड केतन, कैसे हो तुम?
0: ये बात वैसे आपकी नहीं थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: वो अभी जिप खोल रहा है बैग की। सो यस रुजबे, हाउ आर यू? बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ेगा रुजबे को।
2: आई एम गुड केतन, हाउ आर यू डूइंग? यार
0: एकदम बढ़िया। मौका नहीं मिलता ना इस तरफ।
2: अच्छा हुआ तुमने मेंशन कर लिया कि जिप बैग की खोल रहा हूं मैं।
0: भाई इस टाइम हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल से घर जाते हैं,
2: तो क्या कहना चाह रहे हो आप?
0: नहीं तो तूने बोला ना एकदम उस पे इतना वो स्पॉटलाइट डाली तूने। मैं तो एक फ्लो में बोल दिया था।
2: तो मैंने भी यही बोला कि अच्छा हुआ तूने बोल दिया कि बैग की जिप खुल रहा है।
0: अच्छा
2: क्यों तुम्हारे मन में ऐसी सारी चीज? भाई मैं बहुत फैमिली फ्रेंडली हूँ यार।
0: अच्छा
2: हम लोग अभी टूर पे भी जा रहे हैं, बहुत फैमिली फ्रेंडली टूर होने वाला है हमारा।
0: सही में जाने वाले हो? लाइक आउट ऑफ न्यूजीलैंड?
1: आउट ऑफ न्यूजीलैंड, बाली और थाईलैंड।
0: एक्सक्यूज मी, मेरे को लगा से वो एएस यार, ऐसा मौका मेरे को कब मिलेगा? या मुझे भी ऐसा कोई चाहिएगा बंदा जो एक ही शो में सामने बैठा हो।
2: सो तो उसके लिए केतन, जब तुम लंच बॉक्स में हगना बंद कर दोगे? यार तू ऐसा क्यों, तू इनवाइट करता है ये सारी चीजें?
0: कोई बात नहीं, इट्स ओके।
2: मैं अभी
0: यार मैं हाँ। यहाँ पे लिसनर्स जाना चाहूंगा यार, आई डोंट थिंक सो जो इसने शब्द बोला है वो मैं डिजर्व करता हूँ, राइट?
1: हगना ना? नहीं नहीं।
2: ओके तो लिसनर से क्यों जानना चाह रहा है? मैं एक नंबर बताता हूँ, उस पर कॉल लगा, विजय वर्मा का नंबर वहाँ पे सेव्ड ही होगा, उनको कॉल लगा, वहाँ से बात करके बात
0: कर। अभी बिजी होंगे अभी बच्चे।
1: नहीं नहीं अभी कॉल कर लेते, क्या ही बात कर रहे हो?
2: अभी कॉल कर लेते ना, अभी बात कर लेते, पूछ लेते उनको।
1: इट्स फ्राइडे, उनका भी वीकेंड बनना चाहिए। नहीं तुम्हारा भी वीकेंड बनना चाहिए।
0: मेरा वीकेंड में खराब मत कर दिया आप।
2: मे बी यू विल हियर इवन मोर कलरफुल एडजेक्टिव।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: मतलब तुम अपनी बातों को वहां तक लेके जा रहे हो?
2: नहीं नहीं नहीं, बट केतन यार तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है।
0: ये अच्छा कवर अप था।
2: नहीं एडिटिंग वाला काम बहुत बढ़िया है, तुम भूल करो। ओके एनीवे यार, ओ कॉल लगा दिया।
1: तो खुद ही तो बोला कॉल लगाने के लिए, तो लगा दिया कॉल।
2: क्या बात है, वेरी नाइस।
1: अभी के तो ना रुजबे ही बात करेंगे, मेरा काम था नंबर ढूंढ के कॉल लगाना।
0: मेरा काम था बीच में मिर्ची डालना।
1: हां
2: मिर्ची तो मैं डालूंगा अभी।
1: हाँ।
2: आग तेरे को लगेगी।
1: नहीं फोन उठा लिया रुजबे।
2: हाय
1: हेलो
3: हेलो
2: हाय हाय विजय, हाउ आर यू?
3: गुड गुड ब्रो।
2: केतन यहाँ पे हमें पूछ रहा था, अभी हम लोग ऑन एयर है। केतन पूछ रहा था कि तुम लोग ऐसे टूर वोर पे जा रहे हो, मुझे कब मौका मिलेगा, मैं कब, मेरे सामने कोई होस्ट होगा, मैं उसके साथ शो करूंगा ये वो।
1: और फिर रुजबे ने कुछ बोला आगे से,
2: तो उसके ऊपर मैंने एक रिस्पांस दिया। अब आप मेरे को बताओ ये अप्रोप्रिएट रिस्पांस है कि नहीं है।
3: हाँ,
2: तो मैंने उसके ऊपर रिस्पांस दिया, मैंने बोला तू पहले ये
0: पहले विजय जी को पता ना ऑन एयर है।
1: हाँ, हाँ, पते,
2: बोल
1: पते,
2: दिया उनको ऑन एयर ना।
0: अच्छा,
2: मैंने मैंने बोला कि पहले तू लंच बॉक्स में अगर जस्टिस करेगा।
1: ये वर्ड नहीं था तुम्हारा, तुम्हारा क्या वर्ड था वो बोलो अभी।
2: वो मैं अभी जब रिपीट कर रहा हूँ तो मुझे साउंड आ रहा है कि इट्स नॉट साउंडिंग राइट।
1: इसने बोला जब तू लंच बॉक्स में हगना बंद करेगा तो
0: ये देखो सैंडी इज नॉट लीविंग द ऑफिस।
1: वही ना
0: जब जब
1: तो अब आप बताइए।
0: मैंने बोला कि मैं लिसनर से जाना चाहूंगा, तो इन्होंने हमारे माई बाप को फोन लगा दिया।
2: तो मैंने बोला कि एक काम करते ना आप, हम विजय को कॉल लगाते, उनसे तुम्हें और बेटर एडजेक्टिव्स शायद मिले।
3: अच्छा
2: तो आपका क्या कहना रहेगा इसके ऊपर?
1: डाल के इन दोनों के ऊपर, मैं बस सुन रही हूँ दोनों को।
2: ये कर रही है मेन काम।
0: क्या मेन काम?
2: मेन काम।
0: अच्छा मेन काम।
2: आग में तेल डालना। तो विजय जी बताइए क्या लगता है आपको?
3: मुझे अच्छा लगता है भाई।
2: उनको अच्छा लग रहा है क्योंकि वो लंच बॉक्स नहीं सुन रहे अभी।
0: क्यों नहीं सुन रहे? सुन तो रहे हैं अभी, देखा अभी बात कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, उनको पता है कि हाँ भाई पब्लिक तो है।
2: अच्छा
3: नहीं आप यू आस्क मी, आपने पूछा कि आप क्या लग रहा है, तो मैंने बोला मुझे अच्छा लग रहा है।
2: हाँ नहीं आपको केतन
1: ठंड है, देखो उनको अच्छा लग रहा है कि ठंड है।
2: केतन की इस बात पे
0: लग रहा है विजय जी ये सोच रहे हैं कि हाँ अभी मैं जैसे जैसे दे देता हूँ जवाब बाद में ऑफ एयर में इनसे बात करूंगा।
2: नहीं बट केतन की इस बात का आप क्या जवाब देना चाहेंगे?
3: बस इतना कहूंगा पुल तक पहुंच जाओ फिर पार कर लोगे, उसमें क्या है।
1: क्या बात है समझे केतन?
0: नहीं
1: बस सही वही तो वही नहीं समझ रहे हो?
0: नहीं मैं समझ गया बट कूल, थैंक यू सो मच विजय जी, आपके आपने फोन उठाया और थोड़ा सा मुझे मेरा वीकेंड जो है बचा दिया। बट कूल, थैंक यू सो। और कुछ बोलना है, और कुछ जानना है?
2: विजय जी ने बात ही नहीं की।
1: No, एक लाइन में बोल दिया।
2: इससे ज्यादा तो आपका वॉइस मेल बात करता है।
0: Actually,
1: अब दोनों छुट्टी पे परमानेंट हो गए विजय जी। बाय बाय, हैव अ गुड वीकेंड।
2: बाय बाय। तो
1: भाई भी नहीं की उन्होंने। यार जाओ यार।
2: चलो ठीक है।
0: तो चलो बढ़िया है।
1: खुश हो दोनों?
0: जवाब मिल गया।
2: सुने गाने सुने काफी कि नहीं?
0: हाँ सुने।
2: कौन सा गाना सुना रहा है
0: अभी? अभी गुस्ताखिया।
2: कौन सा गाना है ये गुस्ताखिया?
0: गुस्ताखिया कौन सा? मतलब
2: गा के सुना ना थोड़ा यार, तू तो सिंगर है यार।
0: मैं ये मेरा आउट ऑफ जॉनर वाला गाना है। ये मेरा आउट ऑफ जॉनर वाला ना, तो इसलिए। But why don't you sing?
2: कौन सा
0: सुना ये?
2: बट मुझे अगर पता चलेगा कौन सा है वो वाला है क्या? गुस्ताखिया है बेताबिया है, ये तेरे जॉनर का क्यों नहीं गाना?
0: नहीं यार, क्योंकि ये बहुत फाल आई है मत हो, ये ऐसा है
2: कितना है, छाई है मत होशिया,
0: ये तेरे पे सूट कर रहा
2: है। क्या यार,
0: जो तूने मेरे को उपाधि दी ना कि मैं जो करता हूँ वो अभी एक्चुअली अभी तू कर रहा है।

वेल वीकेंड, कल वीकेंड है तो ऑफ कोर्स आपके लिए एक और शो लेके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं आपके लिए। बहुत ही बड़े शो है, 3 जुलाई 7:30 बजे आप पहुंच जाइए विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर, लेकिन उससे पहले premiertickets.co.nz पे जाके टिकट ले लीजिए। सिद्धार्थ रंडेरिया का गुज्जू भाई प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर, कैसे एक्सचेंज ऑफर के थ्रू एक बहुत ही बढ़िया मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसते हैं, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी आते हैं और ऑफ कोर्स हर पल आपको हंसी के पाथ जो दिखेंगे, एक से बढ़कर एक डायलॉग्स हैं उसमें, एक से बढ़कर एक एक्टिंग है और उनकी खास बात पता क्या है, उस शो में काफ़ी गुजराती ह्यूमर भी है भरपूर। और सिद्धार्थ रंडेरिया की खास बात यह है कि वो उनके शोज़ जो हैं हमेशा हाउसफुल जाते हैं, सो दिस कुड बी ये भी हो सकता है, ये शो भी हो सकता है। तो बिफोर जो टिकट्स हैं वो बिक जाएं सारे, उससे पहले आप टिकट ले लीजिए premiertickets.co.nz पे जाके। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑन मंडे एक नए शो नई बातों के साथ, लंच बॉक्स शो में नई बातों के साथ आपसे मुलाकात होगी फिर से 12 से 3।

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: Get delicious three-day sale deals at New World North Island. Get whole beef scotch fillet, $39.99 per kilo. Or yummy rose apples, $2.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
4: It's bonus time at No Leaming. Get a bonus $50 gift card for every $500 you spend on selected products. Don't miss out. Offer valid until Sunday, 5th July. Conditions and exclusions apply. Only at No Leaming.
5: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
6: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
7: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. A mother's been charged with the manslaughter of her child on Auckland's North Shore 6 months ago. Police say it follows an investigation into the 3-year-old's death at a home in Devonport late on New Year's Day. The 33-year-old was in the North Shore District Court this morning and will appear in the High Court on July the 15th. A new type of scam is convincing Kiwis they've got a job, then fleecing them. NetSafe says they know of 6 victims of work-from-home scams in June who lost almost $80,000. Spokesperson Alex Yee says the scammers said their job was reviewing products and services online.
8: They tell people to pay for these products and services with the promise that they'll not only be reimbursed but be given money on top.
7: Former Olympian and gym chain founder Les Mills Sr. has been farewelled at a funeral in Auckland. His son Philip Mills says he was a great man.
9: In the last few months, he's told me that he loved everything that he did and he loved the wonderful life and friends that he'd had.
7: German workers are being barred from calling in sick without a doctor's note. They'll have to submit a medical certificate from the very first day of illness and won't be able to get one over the phone. To sport, Christchurch has been waiting for 15 years. Under the new roof and under a new coach, the All Blacks will play at a permanent Canterbury Stadium tomorrow evening. The French are very much under strength, and in that true French fashion, they are entirely unbothered by that. And the Tall Blacks play their latest World Cup Asian qualifying match this evening from 7 at Spark Arena in Auckland. They're taking on the Philippines.
6: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: वेदर का हाल आज काफी कमाल, ब्यूटीफुल डे इन आवर सुपर सिटी, फील्स लाइक 13 डिग्रीज ओवरनाइट, टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 8 डिग्रीज टुनाइट, 5:17 पे आज होगा सनसेट, ईस्टर्लीज डेवलपिंग फ्रॉम इवनिंग और लाइट विंड्स का साथ रहेगा आज।
6: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
11: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
6: Coffee break with Sandy. The Drive Show with Sandy and Trisby.
12: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
10: 3:03 हुए हैं, and it's not coffee break. No, it is the Drive Show. Hi Sandy, good afternoon.
13: Good afternoon, Trisby. How are you?
10: एकदम मस्त है Sandy. How are you doing?
13: Good, good. Day कैसा गया so far?
10: डे बहुत बढ़िया गया सैंडी।
13: या
10: इट्स बीन,
13: इट इज फ्राइडे, फील्स लाइक फ्राइडे
10: एब्सोल्युटली। मैं एक्चुअली काफी असुस्तड फील कर रहा था, फिर नाउ आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, बिकॉज़ समटाइम्स आई थिंक इन लाइफ यू नीड
13: किक, यू नीड अ किक टू, मतलब गुड किक टू,
10: यू नीड अ किक,
13: you need a kick to feel that energy.
10: Now you can interpret what that kick means.
13: आपको क्या लगता है रुजबे किस kick की बात कर रहा है? Is it the energy kick? Is the coffee kick? Is it the appreciation kick? Is it the appreciation का उल्टा क्या होता है?
10: Depreciation.
13: Depreciation kick.
10: Appreciation का उल्टा depreciation ही है.
13: रुजबे कौन सी kick के बारे में बात कर रहा है?
10: केतन ऐसा देख रहा है कि अरे appreciation का उल्टा अरे depreciation ही होता है मेरे भाई. There are two kinds of I will teach you accounts today. There are two types of assets. Appreciating asset and depreciating asset.
13: तो वो accounts नहीं मुझे लगता है वो सोच रहा था हमने जो अकाउंट नहीं पढ़ते हैं ना रुजबे हमारी नॉर्मल भाषा में हमने वर्ड्स और उनके ऑपोजिट वर्ड्स वो पढ़े हुए हैं तो वो शायद वहाँ पे ऑपोजिट वर्ड सोच रहा था
10: क्या होगा उसका ऑपोजिट अब क्या है उसका
13: नहीं पता ना मुझे नहीं पता है यही होगा
10: आप करते थे ना कॉफी ब्रेक में एक सेगमेंट यहाँ पे जहाँ पे आप
13: वर्ड ऑफ द डे
10: आज आप हमें बताइए अप्रिसिएशन का ऑपोजिट क्या है
0: या डेप्रिसिएशन तो डेप्रिशिएट दैट इज डिफरेंट वर्ड राइट
13: अप्रिसिएशन का वही है वैसे तो वही है डेप्रिसिएशन ही है
10: पता
13: नहीं बट अकाउंटिंग टर्म है वो मतलब अगर हमें तारीफ करनी हो
0: मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ काश मैं पढ़ लेता है
10: देख यार पढ़ के
13: तो आप ऐसे कीजिए गाइस आज ना डेप्रिसिएशन के मिलते जुलते वर्ड्स बताइए आप यहाँ पे
10: किसके
13: डेप्रिसिएट
10: व्हाई आर यू सो नेगेटिव यार
13: अरे क्यों
10: लेट सम बी नेगेटिव
0: फ्राइडे अप्रिशिएट का बोलो ना
10: अप्रिशिएट के अलग वर्ड्स बोलो यार
13: आपको
10: पता नहीं है उसके हंसी के पीछे वो ऐसे लाते चलाती है ना केतन को पूछो
13: Anyway, फिलहाल आगे बढ़ते हैं
10: पीछे से याद है ये अगला गाना मतलब पहला गाना फॉर कॉफी ब्रेक आपको सुनाते हैं
13: या मेक श्योर कि गाने चेक करने हैं ना रुजवे
10: यू आर
13: ऑन द पैनल टुडे
10: ऑलराइट ओके दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड सॉन्ग आई थिंक बिकॉज इट्स गॉट दिलजीत दोसांझ इन इट
13: ओह थैंक गॉड
14: लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए

0: very inappropriate group chat. Maybe it's time to balance it out with a more appropriate group, like Blood Buddies, a group that donates blood and plasma together. This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever. Yours could save lots of lives. No joke, it gives you that warm feeling inside. And you get free biscuits. The boys love biscuits. Get your Blood Buddies together and book now at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
1: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Coffee Break with Sandy.
2: You're listening to Hum, playing Bollywood's biggest hits. Coffee Break आपके लिए जारी है यहाँ पे और अभी Bollywood's most wanted आपके लिए हम
3: वो भी लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले फीफा वर्ल्ड कप में क्या क्या हुआ फुटबॉल में इसके बारे में भी बताते हैं.
2: बताइए.
3: आज थोड़ी देर पहले पोर्चुगल एंड क्रोशिया के बीच में ड्रामेटिक मैच था. बाय द वे क्रोशिया ने फर्स्ट 53rd मिनट में अपना स्ट्रक किया पहला गोल. सो काफ़ी लोग हमें सुनने वाले रोनाल्डो के फैंस हैं. सो उनको था कि बिकॉज तुम्हें पता है ना रोनाल्डो एंड मेसी दोनों का ये लास्ट वर्ल्ड कप है ये.
2: हाँ, इसलिए तो मेसी छा रहे हैं ना.
3: या बट पोर्चुगल काफ़ी लकी रहा बिकॉज रोनाल्डो बिकेम द ओल्डेस्ट प्लेयर एवर टू स्कोर इन वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज मैच. सो ये रिकॉर्ड डेफिनेटली बना. बट आज का जो रिजल्ट है इसलिए स्पेशल था. आफ्टर द मैच रोनाल्डो पे ट्रिब्यूट टू हिज लेट पोर्चुगल टीममेट एज वेल डियागो जिनका नाम है, सेइंग द टीम वेल्ट हिज प्रेजेंस एंड लेटर वेयरिंग हिज नंबर 21 टी शर्ट एज वेल.
2: काफ़ी इमोशनल था आज मोमेंट.
3: या सो आज के मैच में ये हुआ, आज पोर्चुगल क्रोशिया से 2-1 से जीता इन अ वेरी ड्रामेटिक मैच. फिलहाल स्विट्जरलैंड एंड अल्जीरिया के बीच में मैच चल रहा है जहाँ पे स्विट्जरलैंड इज लीडिंग बाय 1-0.
2: 1-0 अल्जीरिया, लेट्स सी इफ दे कम बैक. स्पेन ने भी जीता ना 3-0.
3: दिस इज वेरी इजी मैच.
2: बहुत इजी था ऑस्ट्रेलिया के
3: अगेंस्ट. इन द मॉर्निंग स्पेन की बहुत ही इजी विन थी कल. वैसे रुजवे
2: ऑस्ट्रेलिया एंड इजिप्ट, दैट्स राइट.
3: एंड देन अर्जेंटीना, दूसरी टीम का नाम क्या है? अर्जेंटीना वर्सेस पढ़ो तुम. अरे थोड़ा तुम बताओ ना.
2: कैबो वर्दे.
3: आर यू श्योर?
2: नहीं, आई एम नॉट. But I'm trying. और फिर कोलंबिया और घाना का भी मैच है.
3: घाना ना
2: घेरे घेरे आए बदरा.
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. वैसे अगर आप अभी लॉकअप नेटफ्लिक्स पे जो आया है उसको फॉलो नहीं करते हो तो फिकर मत कीजिए, सैंडी है यहाँ पे, वो हमें अपडेट देगी रोज.
1: या सो लॉकअप के एपिसोड्स एवरी डे वहाँ पे आ रहे हैं, एवरी डे न्यू एपिसोड आता है. मेरे को सुनीता आहूजा, मतलब जितना मैंने मीडिया में उसके बारे में देखा था, मीडिया ने बेसिकली उसको विलन बना के रखा हुआ था. ये कुछ भी बोलती है एंड एवरीथिंग, इसको फुटेज चाहिए.
0: जो कुछ भी बोलता है उसको लोग विलन ही बना देते हैं.
1: तो बहुत पर्सनल हो गया.
0: नहीं नहीं, मैं जस्ट इन जनरल बोल रहा हूँ यार.
1: ओके. तो सुनीता आहूजा जो है, आई एम एक्चुअली सो फार, मैंने आई थिंक कल भी बोला था, आई एम लाइकिंग हर.
0: आपको आकांक्षा भी अच्छी लगती है ना?
1: देखो, मतलब आकांक्षा एज आई एम कंपेयरिंग द इमेज जो बाहर है, जिनकी इमेज बाहर खराब है, घर पे उनका डिफरेंट चेहरा नजर आ रहा है लॉकअप में. सो सुनीता आहूजा कल एक टॉपिक था, तो लॉकअप में एक टॉपिक देते हैं, यू नो टॉपिक ऑफ द डे होता है जहाँ पे हर कोई डिस्कस करता है उसकी उस चीज के बारे में.
0: अच्छा.
1: तो कल था कि चीटिंग के बारे में इन मैरिज, या कि कितना वो एक्सेप्टेड है कितना नहीं एक्सेप्टेड है. सुनीता ने सबके सामने तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं की. माना सो कॉन्टेस्टेंट, उसने पूछा उसको, उसने बोला कि क्या कर सकते हो ना तुम. उसने मना नहीं किया कि गोविंदा ने कभी चीटिंग नहीं की, शी सेड, लेकिन वो अभी भी अगर कर ही रहा होगा तो मैं क्या ही कर सकती हूँ उसमें. अगर वो ही नहीं अगर इस चीज़ को समझ सकता तो मैं कितने ही समझा सकती हूँ. आई कैन ओनली डू फ्यू थिंग्स. सो एंड She seemed to be very matured और maybe बहुत सब बहुत चीज़ों से निकली हुई इंसान. ऐसा उसको देख के समझ में आया. एंड शी ऐसा लगा कि वो मैरिज में है बिकॉज ऑफ द किड्स.
0: ओ बाप रे.
1: या सो या ये उसने अपना वहाँ पे व्यू थोड़ा शेयर किया. एंड कहीं कभी कभी वो अपने बच्चों को सोच के इमोशनल भी होती है. वेरी डिफरेंट साइड ऑफ सुनीता आहूजा. मेरे को लगता है कि क्या होता है ना, कभी कभी हम उसका थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू बिट कहीं ना कहीं पे देखते हैं. आजकल वैसे भी हम थोड़ी थोड़ी थोड़ी चीज देख के रिएक्ट करते हैं. तो वहाँ पे लॉकअप में क्या है कि वी आर लाइक वॉचिंग फुल ऑन. तो इट्स डिफरेंट.
0: दैट्स राइट. सो या इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. द फॉर्मेट इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई फील कि वो हर रोज एक कोई टॉपिक देते बात करने का. And then people have to talk about
1: तभी
0: that
1: तो लोगों के व्यूज सामने आते हैं ना. नहीं तो जो बिग बॉस में क्या हो रहा था कि लोग बैठे अपने व्यूज शेयर नहीं कर रहे हैं,
0: क्या बोर हो रहा था,
1: आपस में बातें कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक टॉपिक जो देते हैं उसके ऊपर हर किसी का व्यू जो है, थिंकिंग समझ में आती है कि ये पर्सन कैसे सोचता है.
0: And then based on that you can vote your favorites also.
1: Yeah, Ram Kapoor had a different thinking. He said कि marriage is something you keep working on this every day. तो ही वॉज काइंड ऑफ ट्राइंग टू से कि कभी कभी चीटिंग होती है, वो सब चीज़ें होती है.
0: अच्छा.
1: तो आकांक्षा ने उसको उसके ऊपर पूरा वो किया कि ये सही नहीं है.
0: Right.
1: तो ये सही नहीं होता है. तो देन या राम कपूर भी बाद में उसकी बात समझा कि व्हाट शी इज ट्राइंग टू से. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस
0: कैरेक्टर्स. मैंने एक छोटा सा रील देखा, उसमें फराह खान बोल रही थी राम
1: फराह खान
0: होस्ट है ना, वो बोल रही थी राम कपूर को कि मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड एज अ फैमिली बोल रहा हूँ.
2: आप कौन सा शो देख रहे हो?
1: लॉकअप.
2: आपको होस्ट नहीं पता कौन है?
1: नहीं, क्योंकि एवरीडे
2: होस्ट कौन है?
1: नहीं, एवरीडे रितेश आते हैं वहाँ पे. सो रितेश देशमुख.
0: हाँ, वो आता है. ओके.
1: एंड फराह खान सिर्फ एक ही एपिसोड में आई थिंक अभी आई है.
0: तो एनीवे, तो उसमें फराह खान उसको बोल रही थी राम कपूर को कि तुम हमेशा लीड एक्टर प्ले करते हो. मैंने ये छोटा सा रील देखा है, बट इसमें तुम बहुत बैकग्राउंड में दिख रहे हो. और राम कपूर बहुत रूडली उससे बात कर रहा है, मैं ऐसा ही हूँ, निकाल लो चाहिए तो.
1: हाँ, वो ऐसे ही है, ऐसे ही बात करता है उसमें. He is like, yeah, I don't want to change myself.
0: हाँ, फुल कैरेक्टर बन के ऐसा बात कर रहा है वो.
1: या He don't want to change himself. एक टास्क हो रहा था, उस टास्क के बीच में ही saying कि पानी पिलाएगा कोई, तो रितेश देशमुख ने इग्नोर कर दिया बिकॉज टास्क चल रहा है. उसे फिर बोला, कहता मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ पानी पिलाएगा कोई. फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया. फिर वो तीसरी बार बोला कि मैं तीसरी बार भी यहाँ पे बोल रहा हूँ कोई पानी देगा मुझे यहाँ पे. तो रितेश ने बोला कि आप अपने घर से, मतलब रूम से जो यहाँ पे लेके आ रहा था वो आपकी जिम्मेदारी थी इस टास्क तक, उसके बाद आप जाके पानी पी सकते हैं. कहता हाँ तो बस ब्रो, ये बात पहले ही बोल देनी थी ना, तो बात ही खत्म.
0: ओ अच्छा भाई, मेरे को
1: ओके एक्सेप्टेड ऐसा बोला वो.
0: मेरे को लग रहा है राम कपूर ऑडिशन दे रहा है वहां पे बिग बॉस का. वो ऐसा सब तेवर दिखा रहा है ताकि उसको बिग बॉस के फाइनलिस्ट में ला ले. वो इंटरेस्टिंग हो सकता है ना कैरेक्टर.
1: वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और काफी लोग रिलेट करते हैं ना उसके साथ बिकॉज़ टीवी एक्टर है वो, काफी लोगों को पसंद भी है वो.
0: दैट्स राइट. Oh wow, Lockup is actually picked up यार. मतलब कहाँ पहला सीजन कंगना रनौत और मुनावर फारूकी जीता था.
1: Oh yeah.
0: And then now season, second season direct Netflix पे. Quite interesting man.

0: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits 104.2 FM. और most importantly, आपको बता दें, अगर आप सिटी के अंदर है, सिटी के आसपास कहीं है, you can try out 87.7 also for now. बहुत क्लैरिटी के साथ 87.7 पर भी सुनाई दे रहा है एंड वेस्ट में आई थिंक इट गोज राइट अप टू द मोटरवे लाइक लिंकन रोड तक क्लियरली सुनाई देता है.
1: यस, वेस्ट में आपको काफी ज्यादा या मैंने तो स्वानसन तक सुना हुआ है.
0: स्वानसन तक आपने सुना है?
1: मैंने स्वानसन तक सुना हुआ है.
0: वाओ. एंड इफ यू गो डाउन साउथ आल्सो आई थिंक इट कम्स अप टू एप्सम तो क्लियरली ग्रीन लेन तक आता है.
1: साउथ में एनीवे देन 104.2 एफएम इज really good.
0: That is also there. But काफी लोगों के पास वो नहीं है ना extender और वो सब. तो 87.7 do try out and yeah you'll love it.
1: Let us know आपने 87.7 पे अगर हमें सुना है तो कहाँ पे सुना है, किस एरिया में सुना है, यहाँ पे लिख के भेजिए 5599 पर. वैसे कुछ इवेंट्स भी होने वाले हैं आपकी सुपर सिटी में, जैसे कि राहत फतेह अली खान 25 जुलाई को परफॉर्म करने वाले हैं. एंड ये जो इवेंट है ट्रस्ट अरीना में होगा, विच इज प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस.
0: जी, और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि देखो काफ़ी सारे स्कैम ईमेल्स भी आपको आते रहते हैं. प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपको कोई भी ईमेल आ रहा है स्कैम वाला तो उसका ईमेल आईडी चेक कीजिएगा. अगर ईमेल में कहीं पर भी आपको डैश दिखता है या कुछ वियर्ड डॉट कुछ ऐसा दिखता है अलग सा, तो समझ जाना कि वो एक स्पैम ईमेल है और आप उस पर कोई क्लिक मत कीजिएगा क्योंकि आपकी उसमें यू नो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है.
1: सो इसे फिशिंग कहा जाता है कई बार इस ऐसी ईमेल्स को जो आपको बेसिकली फिश करने की कोशिश करती है.
0: जी, सो या प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. और भी बातें करेंगे आपके साथ, सुनते रहिए हम.

0: You're listening to The Drive Show with Sandy and Rusbe. Yes, Drive Show started a little early today. 3 बजे से आपके साथ हम यहाँ पे शामिल हो गए हैं.
1: या और आपके साथ अभी शेयर करते हैं अगर आपने कल हमारी अनाउंसमेंट मिस आउट की थी. सो ईस्टर 2027 के बारे में हम बात कर रहे थे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रिप which is Bali and Bangkok.
0: जी, बाली और बैंकॉक हम जाने वाले हैं इस ईस्टर, लाइक कमिंग ईस्टर 2027 में. और आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो. इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन एंड बी अ पार्ट ऑफ इट, देन एक EOI फॉर्म डाला है हमने, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म है, जो आप अभी फिलअप कर सकते हो. इट्स वेरी सिंपल, जस्ट हैव टू फिल इन योर नेम एंड नंबर.
1: तो ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर, आपको फॉर्म मिलेगा, फिल कीजिए. सो हमारे साथ आप इस ट्रिप पे जा सकते हैं. आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर हो जाएगी, फ़ोन नंबर आपका रजिस्टर हो जाएगा. तो नेक्स्ट वीक जो आइटेनरी है प्राइसेस के साथ, ये हम आपको भेज सकते हैं. And then you can finalize and you know book this trip with us.
0: It works for you. But yeah, we're gonna have a lot of fun. अगर आपको हमारे ड्राइव शो की वाइब पसंद आती है, then I think that's the vibe that we're gonna have on the trip.
1: 100%. So बहुत कुछ होने वाला है. And हमारे सन टूर से बात हुई थी with अनिल भाटिया. उन्होंने बोला कि वहाँ पे कुछ वो giveaways भी करने वाले हैं, कुछ competitions भी करने वाले हैं. They're gonna be a team Rusbe, team Sandy as well. तो इस वजह से भी हम कुछ चीजें करने वाले हैं. आपको अपना chill time भी मिलने वाला है. So इस वजह से basically हम trip को plan कर रहे हैं कि ग्रुप में भी हम इंजॉय करें और आपको अपना इंडिविजुअल टाइम भी मिले.
0: जी, और काफी लोग जो हमें जानते भी है ऑफ एयर, उनको पता है कि हम ऑन एयर और ऑफ एयर ऑलमोस्ट सेम ही है.
1: या
0: लाइक वी डोंट हैव एनीथिंग, लाइक यू नो, लाइक कुछ मेड अप नहीं है हमारा,
1: प्रिटेंड नहीं है कुछ भी.
0: तो जो आपको दिख रहा है वही आपको मिलने वाला है.
1: या
0: तो या सोच समझ के
1: at your own risk.
0: I'm just letting you know we are very family friendly and we are very individual friendly as well.
1: Yes, and also na, agar aap kafi samay se plan kar rahe the ki aapko trip pe jana hai, this might be your calling.
0: And a lot of times kya hota hai malum hai, hum yahan pe na, matlab mere sath ye hamesha hota tha pehle ki trip pe jana hai lekin dost log available nahi hai wo time pe.
1: और आपको ग्रुप में ट्रिप करना है, but you don't know.
0: Actually, when was the last time we did a group trip also, ना? मेरे को तो अभी याद भी नहीं है.
1: Yeah.
0: ग्रुप ट्रिप कब किया था एक लास्ट, जहाँ पे भर भर के लोग सब गए थे.
1: काफी बड़े ग्रुप के साथ अगर आप कहीं पे गए थे.
0: Actually,
1: last.
0: Have you ever traveled? हम लोग आज
1: इंटरनेशनल,
0: हम 4 बजे के बाद एक टॉपिक करेंगे यहाँ पे, एंड दैट टॉपिक इज गोइंग टू बी अराउंड ट्रैवल.
1: या
0: एंड सो दैट टाइम यू कैन गिव अस अ कॉल एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन द टॉक.
1: या तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे. मेक श्योर कि आप सुनते रहे, बिकॉज इसकी और भी जानकारी आपके साथ हम यहाँ पे शेयर करते रहेंगे. बट फॉर नाउ, अगर अपना इंटरेस्ट आप दिखाना चाहते हैं, यू कैन टेक्स्ट ड्राइव 15599, ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिल जाएगा. फिल द फॉर्म सो दैट आपका जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास आ जाए.

0: accurate traffic.
1: Flying overseas soon?
2: A low of 9 and mostly clear, and the southern is looking really heavy at the moment. There's heavy patches to Drury. It's about an hour 20 out of town to Drury. The rest of the city is looking very busy as well. On the northern, there's heavy patches to Snow Planet. It's just under 45 minutes out of town to Silverdale. And out to the airport from town, that's busy as well. It's the drive time of just under 35 minutes.
3: International check-in is changing at Auckland Airport. Plan ahead and know your check-in zone.
4: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
5: क्यों? क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई, तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, no response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.

0: Are you ready for some extra money? If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. Look out for information from Entrust in your letterbox or email inbox. Check your payment details are correct and let us know of any changes as soon as possible. If we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in late September. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
1: And then Mrs. Singh se maine pucha, "Enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho?" Boli, "Bas, mera focus hai."
2: "Achha,
1: batao, tuhanda focus, saada kuch nahi."
2: Mrs. Singh.
3: Are pammi ji, mera focus means mere ghar ka kitchen, jisko design kiya hai Focus Kitchens ne.
4: Modern classic chic style kitchens, Focus Kitchens, Unit K, 33 Wansley Road, Otahuhu. Call 09281 3050 or visit focuskitchens.co.in.
5: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 4. The leader of the world's most populous country, India, is visiting New Zealand this time next week. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Auckland next Friday, then leave the next day. He's the first Indian PM to make the trip here in 40 years. Health agencies are being asked for a greater commitment to safety after concerning findings at an inpatient ward in Dunedin. Rebecca Hunt reports.
7: The Chief Ombudsman has unveiled serious failures at Wakari Hospital's ward for intellectually disabled adults. One patient was secluded in their bedroom for around 18 months with almost a complete lack of meaningful human contact. Health NZ has agreed to investigate what the Ombudsman is calling a stark reminder that much more needs to be done for the most vulnerable.
6: Job seekers are being warned that so-called work-from-home scams are on the rise. NetSafe's Alex Yee says the victims are told to buy products to review and promised they'll be reimbursed.
8: But of course, once the purchases have been made, the scammers disappear, the money is never reimbursed and no money is paid on top either.
6: World Chocolate Day will bring the return of Pods. The popular product was discontinued in 2021, but parent company Mars has confirmed it'll be back on shelves from Tuesday. To sport the All Blacks in France tomorrow evening in Christchurch, the first game of rugby's Nations Championship. The moment of truth for new coach Dave Rennie. It will be fascinating to see if the Hurricanes' core at 9, 10 and 12 can reproduce the high-speed flair they showed at Super Rugby Pacific level. And to football updates brought to you by Hisense, the last round of 32 World Cup game today. It's halftime. Switzerland leads Algeria 1-0.
5: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: Fine weather with light winds and then easterlies developing from evening. 5:17 pe hoga sunset. Feels like 14 right now, 14.2 actual. And overnight temperature is going to be as low as 8 degrees tonight. Kal afternoon se barish shuru hone wali hai, jo overnight Sunday tak rahegi.
5: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
10: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
11: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
9: Good afternoon, 4:02, and you're listening to The Drive Show, only on Hum.
12: Yeah, very, very good afternoon to you. Drive Show, filhaal, aap yahan pe sun rahe hain. And aaj ek topic bhi aapke liye leke aaye hain. It is Friday, weekend hai.
9: Aur Friday wala topic hai ye, pura.
12: Full Friday wala topic hai, guys. And aaj ka jo topic hai, topic share karne se pehle, waise aaj trend makers mein hum ek aisi movie ke baare mein baat karne wale hain. Aaj ek movie ke baare mein baat karenge hum.
9: Only one particular
12: Only
9: movie.
12: One particular movie ke baare mein hum baat karne
9: But
12: wale hain.
9: But usse pehle aaj ka topic chhedte hain. Yes. And you have the time to give us a call now. 0800-004-866. Agar aap Roa pe hume sun rahe to abhi ke abhi call kijiye. 0800-004-866 is the number to call. Topic Sandy aaj ka ye hai. When was the last time you went on a holiday?
12: Overseas holiday ke baare mein hum baat kar rahe hain. Local holiday month ki साउथ आइलैंड के बारे में हम बात नहीं कर रहे
9: ओवरसीज हॉलीडे की बात कर रहे हैं
12: न्यूजीलैंड के बाहर एंड हॉलीडे नॉट इंडिया विजिट या होम कंट्री विजिट
9: बट
12: नहीं,
9: वो भी हॉलिडे ही होता है ना अभी, लेकिन हाँ मतलब हॉलिडे
12: लेकिन
9: holiday
12: वो देन होम कंट्री हो गया ना वो
9: भी है। हाय आपका स्वागत है।
13: हेलो हेलो कैसे हो दोनों?
9: बहुत बहुत बढ़िया, बताइए आप कैसे?
13: बस बढ़िया बढ़िया, मैं वही हूँ जो दो दिन पहले वो सिगरेट वाले टॉपिक पर हमने बात किया
12: था। जी जी बताइए
13: कैसा है?
12: एकदम बढ़िया है जी।
9: अभी एक पहली बार भी पूछा वो अभी भी बढ़िया
12: है। कई बार होते ना पहचान बताने के बाद अरे एक और होता है कैसे हो।
9: बहुत सही बहुत सही। हाँ
13: हाँ
9: समझ गया। मैं थोड़ा स्लो हूँ।
13: सितंबर अक्टूबर नवंबर फर्स्ट वीक इंडिया।
12: पर वो हॉलीडे आपका हॉलीडे था या फिर आपने फैमिली को विजिट किया था?
13: ना ना, इट वाज एक्चुअली हॉलीडे बिकॉज इट वाज अ टू इयर्स बिफोर आई वेंट देयर व्हेन माय फादर पास्ड अवे एंड देन आई वेंट लास्ट ईयर।
12: ओके।
9: और क्या किया फिर हॉलीडे में, मतलब व्हाट वाज योर क्या किया क्या आपने, कहां पे गए थे आप,
12: कहीं पे घूमे आप?
13: मेनली फैमिली टाइम स्पेंड किया, गेट टुगेदर ज्यादा थे, लेकिन दिवाली मेनली हमें सेलिब्रेट किया। इट वाज द फर्स्ट दिवाली फॉर माय डॉटर एज वेल।
9: Oh, so, nice.
13: मेरी डॉटर हमने दिवाली स्पेंड अच्छे से सेलिब्रेट किया था एंड अनफॉर्चुनेटली लाइक इट वाज द लास्ट दिवाली फॉर माय ब्रदर इन लॉ हु पास्ड अवे ऑन 1st ऑफ दिसंबर।
12: ओके
9: दैट्स क्वाइट सैड। या
13: सो वी हैड अ गुड मेमोरी विद हिम। लकीली उनके अंकल ऑफ हो गए थे इंडिया में, कोई आसान तो लाइक किसी की डेट होती है तो हम फॉर नेक्स्ट वन ईयर वी डोंट सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स एंड ऑल, बट लकीली विद माय स्पेशल रिक्वेस्ट वो आए थे मेरे ब्रदर इन लॉ एंड इट वाज द लास्ट दिवाली विद हिम एंड फॉर हिम एज वेल
9: अनफॉर्चुनेटली।
12: ओके
9: राइट।
12: एंड ये बताइए कि आपने इंडिया के अलावा कहीं और किसी और डेस्टिनेशन पे जहाँ पे सिर्फ आपने यू नो घूमे हैं, इधर उधर घूमे हैं, कहीं पे आप गए? दुबई गए। ओके
9: दुबई सैंडी का फेवरेट लोकेशन है वो।
12: या आई लव दुबई,
13: ब्यूटीफुल। यू विल एंड अप हैविंग अ लेस टाइम इफ यू स्पेंड अ वन वीक, यू विल से लाइक आई नीड अनदर वीक।
12: और कितनी फैसिलिटीज है ना, मतलब मजा आता है, हर चीज अवेलेबल है।
13: You trust me, Sandy or Rusbay, वहाँ पर हमें गाड़ी की जरूरत ही नहीं है। Trust me, you don't have to get your own car. They've got a very good public transport.
9: ऊँट से काम चलता है वहाँ पे ना?
12: ऊँट क्या यार?
13: इतना बढ़िया है।
12: वहाँ पे एक्चुअली में गाड़ी चला भी नहीं सकते ना, वो दूसरी साइड की ड्राइविंग है।
9: रेत बहुत है वहाँ पे ना।
13: Like you can legally drive.
12: कुछ भी है ये, आज थोड़ा इसी मूड में सुन रहे है ना आप?
9: चलो
13: फ्राइडे
9: फ्राइडे हक बनता है ना यार, वो करना
12: हक बनता है।
9: इनको जाना चाहिए
12: ट्रिप पे।
9: नहीं रे, इनको मैसेज जाना चाहिए।
12: अच्छा ओके,
9: नो बोल रहा हूँ मैं।
12: एनीवे सो आप भी बताइए यहाँ पे कि आपकी लास्ट हॉलीडे कहाँ पे थी? आपकी हॉलीडे एज इन नॉट होम कंट्री की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आपने होम कंट्री को विजिट किया लेकिन उसके अलावा आपकी हॉलिडे कहाँ पे थी?
9: हॉलिडे क्योंकि यहाँ पे जेन ने भी मैसेज किया है, आई अग्री विद सैंडी, विजिटिंग योर होम कंट्री नेवर फील्स लाइक अ हॉलिडे।
12: या इट्स अ गुड फैमिली कैच अप, आई अंडरस्टैंड वो सब चीजें, बट
9: इट एक्चुअली फील्स लाइक अ हॉलिडे बट इट डजंट फील लाइक अ वो ट्रैवल वाला
12: हॉलिडे। या
9: उसके बारे में पूछ रहे आज। हाय अंतरप्रीत कैसे हो आप?
14: थैंक यू सर, आप बताओ कैसे हो?
12: बढ़िया जी
9: बढ़िया।
14: मैं वैसे तो मैं इस साल ही गया था इंडिया, 3 मंथ लगा कर आया था पूरी।
9: तीन महीने लगाए आपने इंडिया में?
12: 3 महीने क्या किया आपने?
14: जी 3 महीने, मैं एवरी 2 साल के बाद 3 मंथ के लिए जाता हूँ।
9: अरे यार मजे मजे, ये होता है ना बिजनेस ओनर की लाइफ।
12: तो अंतप्रीत उसके अलावा आप कहाँ पे गए हो हॉलीडे में?
14: उसके अलावा मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया गया था 2024 में, छुट्टी और फैमिली दोनों मिक्स था क्योंकि वहाँ मेरा रियल ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में रहता है।
12: okay.
14: तो मैं फैमिली को भी मिला था एक वीक और सारा घूमा भी था जो पर्थ में देखने वाला है सारा।
9: क्या बात है, वो है ट्रैवल।
14: एक वीक रहा था मेलबर्न में।
9: अरे वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू।
14: वीक वहाँ पूरा दबाकर मैंने
12: दबा के हॉलीडे मनाई।
9: बढ़िया भाई, बढ़िया। अच्छा
12: ये थी फिर हॉलीडे।
9: अच्छा वापस आए आप।
14: पर्थ से 400 किलोमीटर है, वो भी अच्छा है, देखने वाला है, हॉलीडे प्लेस है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की।
12: ओके।
14: एल्बनी है, जैसे हमारे है ना एल्बनी, एल्बनी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में।
9: ओके।
14: बहुत मस्त हाँ सिटी है, टाउन है, शांति, ऑकलैंड जैसा ही वेदर है वहाँ पे। गर्मी में भी जैसे हमारे होता है इतना ही है, पर्थ तो बहुत गर्मी पड़ती है ना।
9: हाँ, ड्राई हो जाता है बहुत ना वहाँ पे।
14: हाँ तो एल्बनी बहुत है, पहाड़ों के बीच में है एल्बनी, तो जैसे हमारे वो है ना अपना क्या बोलते हैं शिमला, ऐसे की है वहाँ होती है।
12: ओके।
14: बारिश होती रहती है।
12: ओके।
14: तो बीच बहुत सुंदर है उधर के, वो एल्बनी साइड के कितने प्यारे बीच है ना। न्यूजीलैंड से अच्छे बीच है वहाँ में।
12: ओ वाओ,
14: मैंने देखा।
12: क्या बात है।
9: उसके कारण बहुत लोग जा रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया ना।
14: हाँ नहीं नहीं, मैं तो वैसे बोल रहा हूँ, मैं तो घूमने गया था वहाँ।
12: ठीक है,
9: ठीक है।
12: थैंक यू अंतरप्रीत।
9: थैंक यू अंतरप्रीत। थैंक्स यार।
14: थैंक यू।
9: आपका भी स्वागत है। हाय।
15: हेलो।
9: हाय।
12: यस हाय।
15: या हाय, कैसे हो?
12: बढ़िया, आप कैसे?
15: दैट्स गुड, दैट्स गुड, गुड गुड। वी वेंट टू बाली।
9: बाली। क्या किया बाली में आपने?
15: इंडिया से कुछ डिफरेंट हो गया ना।
12: या क्या किया वहाँ पे?
15: इट वाज रियली गुड। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, उसका बर्थडे था, सो शी वांटेड टू गो, सो सेवन ऑफ अस वेंट।
9: सेवन ऑफ यू,
12: सो कूल यार।
15: हाँ, जस्ट गर्ल्स ट्रिप इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल।
9: जस्ट गर्ल्स दैट टू, ऑल सेवन ऑफ यू।
15: हाँ,
12: ये तो फुल मस्ती की होगी यार।
9: दैट्स सो कूल यार।
15: इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल, रियली रियली नाइस। रिजॉर्ट में थे। So it was nice and everything more pay so reasonable now. Your money goes long way. Massages, shopping, lunches, dinner, jo bhi tha.
12: Full so, chill.
15: Yeah, it was really nice. Yeah, it was amazing. And you get to know all your friends a lot better when you spend 8 days together.
9: So are
12: abhi hai wo sab friends ki nahi hai.
9: Yeah, you guys still
15: sab
9: friends.
15: Hai, sab hai.
9: Nahi, nahi, wo log to hai, but aap log dost the kya?
15: It actually makes you appreciate each other, na? Because of your personality is so different.
12: Yeah.
9: Yeah. Well, it's negotiable.
12: It's fun. मुझे लगता है कि it's really fun.
15: It is. It is fun. Yeah. No, you do because you just allow them. किसी को अगर late सोना है या late जागना है, you just start respecting, na? Because everyone's personality is so different.
12: Yeah.
15: और वैसे आप friends रहते हो, dinner पे मिलते हो, lunch पे मिलते हो, you don't really get to know someone. So it's quite interesting when you spend that much time together.
12: वही ना, दो ही चीजें हो सकती है, या तो bond बहुत ही strong हो जाएगा, या तो बिल्कुल ही टूट जाएगा.
15: हाँ. But I think over the years you get to know ki ye tootne wali friendship hai ya,
12: yeah.
15: You know, or you can adjust accordingly, na? So it's 100%. Just another relationship, we would say. So then you get to know. So no one has got really strong personality, so that's quite good. So we all gelled and yeah, good fun. Highly recommended Bali.
9: So aapka naam kya hai pehle wo bataiye, agar bata sakte ho to.
12: Sim.
9: So.
12: Okay.
9: So. Mm-hmm. तो ज़ू मेरे को बताइए, आप कितने टाइम के दोस्त हैं?
15: वन ऑफ द गर्ल्स आई थिंक वी गो बैक मे बी 15.
9: वाओ,
15: 12 टू 15 इयर्स, और बाकी मे बी 7 इयर्स. एक मेरी कजन थी, सो वी शी केम विद मी, सो हर एंड आई और बाकी सब फ्रेंड्स थे. नहीं, बाकी सब फ्रेंड्स
12: मिक्स है, फ्रेंड्स ना, ऐसे टाइम ड्यूरेशन के. या
9: That's so good. Uh-huh.
15: So none of them are blood related except me and my cousin went.
12: Okay.
15: So, and then everyone else was friends.
12: Okay.
15: So
12: makes
15: that was
12: sense.
15: Really good. Yeah. And baki, I think we've been friends maybe 5 years, 7 years. Koi tha 3 years. But we sort of mix up, meet all the time na in Auckland. So you do get to know each other. And yeah, so it's quite good. And we do come to the Hum FM, you know, when you do the Christmas in the
12: Radiothon.
15: Radiothon. So we come every year, all our friends, we always come every year. So yeah, so it makes you more closer now because we do other stuff together yahan pe Auckland mein, so you get to know. In birthdays we just like go out for dinner to celebrate. It's quite very relaxing.
9: That's awesome. Nice. Yeah, so
12: good to know. So
15: we mandir bhi tha, we went to a temple that was quite nice, very spiritual. and very safe country, I would say.
9: Yeah, okay. And a very warm country, not just weather-wise, but also people-wise, like very warm country, okay. Very welcoming.
15: Very, very welcoming. Yeah. Hospitality, they're smiling all the time. Bahut kuch hai bhi nahi unke paas, but they're always smiling and very humble.
9: Always ready to help.
15: And you feel safe.
9: Yeah, you feel ready, so safe. Yeah,
15: exactly.
12: I think wo matter karta hai.
15: Yeah, you do. As let's say females, it's sab na, but you feel safe. If you have to go to the bagal, maybe shopping, hai, kuch bhi hai, kuch bhi, you just feel safe. You don't feel threatened or anything like that.
9: Yeah. Okay. No, absolutely agree with you. Yeah.
12: Thank you for calling.
9: Thanks for calling. Yeah.
15: You're welcome. Enjoy
9: your
15: afternoon.
9: You, thank you. You too.
12: Bye-bye.
9: But I completely agree karta hun ye baat se. It's very safe because... हम लोग भी जब भी गए थे लास्ट ईयर बाली तभी हमारे साथ एक किस्सा हुआ था हमारी गाड़ी अटक गई थी एक बहुत ही सुनसान जंगल में
12: बताया था
9: ये दिस वन पर्सन जो खेतों में काम कर रहा था वो अपना वो कुल्हाड़ी नहीं जो भी वो स्पेड होता है वो लेकर आया साथ में एंड उसने जैसे ही मेरे को देखा और मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था वो देख के सामने
12: स्पेड लेके आ रहा है
9: ना यार हथियार साथ में और वो ऐसे आ रहा है चल के तो मेरा लिटरली चेहरे का रंग उड़ गया तो उसने वो देखा सो स्मार्ट उसने उसको फेंक दिया यार वो उसके जो औजार था हाथ में उसको फेंक दिया एंड इज लाइक मैं हेल्प करता हूँ ऐसे करके लाइक इशारों में उसने बात की क्योंकि लैंग्वेज अलग है ना वहाँ पे एंड देन ही हेल्प्ड अस आउट लिटरली कीचड़ से उसने टू व्हीलर निकाल के वो ऊपर तक लेकर गया था हमारे लिए
12: वेल इंटरेस्टिंग वेल बाली बैंकॉक के बारे में और भी बात करेंगे इफ़ यू मिस्ड आउट बाली बैंकॉक आप हमारे साथ यहाँ पे जा सकते हैं मेरी और रुजबे के साथ यहाँ पे जा सकते हैं ये ट्रिप अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए टाइप ड्राइव 1559 आपका ईमेल आप फॉर्म फिल कीजिए आपका ईमेल हमारे पास रजिस्टर हो जाएगा सो जैसे ही पूरी की पूरी आइटेनरी बनती है प्राइस के साथ तो आपको हम फुल आइटेनरी भेज देंगे सो टाइप ड्राइव 1559

speak.

0: Andrews Bay on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
2: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
1: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
2: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
3: डिब्बा खुल गया
4: भरत भाई, टिफिन खुल गयो छे।
5: संजना का डिब्बा खुल गया।
6: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
5: डिब्बा खुल गया।
6: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। Buy any कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz.
10: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the redeveloped Waitemata station, you'll be able to go from instant noodles for one and the library to...
11: Hey, hey! Noodles with friends in a Kingsland restaurant!
10: In just 13 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
12: At Bunnings,
13: there's some really easy things you can do to modernise your kitchen. You'll be surprised at how little it costs, and they just look amazing. Whether you own your own home or whether you're renting, rejuvenate your kitchen and make it look fabulous.
14: Get your kitchen sorted with a Practa trimmable utensil tray, only $15. A Mistral White cordless kettle, $19. And a very handy Caboodle spice tray, just $15.
13: Bunnings makes DIY easy.
15: Bunnings Warehouse!
13: Lowest prices are just the beginning.

0: आती है स्लीप इजी क्वीन बेड्स फ्रॉम ओनली 799 ऑन सेल नाउ.
1: सुपर से ऊपर ब्रॉट टू यू बाय रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स लिमिटेड.
2: You're listening to the drive show. आज है फ्राइडे 427 हुए है अभी और आज हम 5 बजे के बाद आपके लिए ये लेकर आएंगे. कनेक्ट द डॉट्स में हम आपको मतलब हमको आज दो कॉम्पिटिटर चाहिए 5 बजे के बाद जो यहाँ पे कॉल करेंगे और वो आपस में भिड़ेंगे. एक्चुअली मेरे पास ग्रेट आइडिया है. टुडे वी विल डू 3-way.
3: ओके,
2: सो इट विल बी द 2 ऑन द फोन एंड सैंडी.
3: तुम नहीं खेलोगे?
2: 4 करना है. चलो 4-way करते हैं.
3: या सो आप यहाँ पे कॉल करना तो हम यहाँ पे गेम खेलेंगे कनेक्ट द डॉट्स. ये रहेगी 5 बजे के बाद आपके लिए.
2: चारों खेलेंगे. मैं, सैंडी और दो और कॉलर्स जो हमें कॉल करेंगे वो टाइम पे हम लोग चारों मिलकर खेलेंगे. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू यू नो इंटरेक्ट विद समवन एल्स आल्सो एंड इंटरेक्ट विद अस एज़ वेल.
3: 100% तो उस समय पर ये गेम आपके साथ हम खेलेंगे एंड आल्सो कुछ इवेंट्स के बारे में आपको बताते हैं. अभी आपके पास वक्त है पार्टिसिपेट करने के लिए रुजबेज कॉम्पिटिशन में, जहाँ पे द ग्रेट कॉमेडी नाइट कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर यहाँ पे लाइव परफॉर्म करने वाले हैं 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. एंड इसके लिए टिकट्स आप खरीद सकते हैं बुक माई इवेंट डॉट को डॉट एनजेड पे जाके. आफ्टर पे ऑप्शंस भी अवेलेबल है. ट्राइविजन इवेंट्स का ये इवेंट होने वाला है एंड यहाँ पे डबल पास जीतने का मौका है.
2: जी, डबल पास जीतने के लिए बहुत ही सिंपल है. हम आपको एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपने हमको देना है 5599 पे ड्राइव कीवर्ड के साथ एंड वी विल पुट योर नेम इन द ड्रॉ. कब जीत सकते हैं ये डबल पास सैंडी?
3: आज ही.
2: आज ही जीतने वाले हैं डबल पास.
3: या तो अभी पार्टिसिपेट करना है आपको.
2: जी, तो अभी आपको यहाँ पे मैसेज करना है
3: ड्राइव कीवर्ड के साथ जो एक सवाल हम पूछेंगे. तो सवाल मैं पूछूंगी, तुम पूछ रहे हो.
2: सैंडी कौन पूछता है सवाल?
3: ओके, तो आपको यहाँ पे आज जवाब देना है कि कृष्णा अभिषेक ने अदर देन कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, वो क्या है
2: कॉमेडी कॉमेडी वाला
3: कपिल शर्मा के शो के अलावा और कौन से शो में काम किया है?
2: कौन से शो के अलावा बोल रहे हो आप? कपिल शर्मा शो,
3: कपिल शर्मा के शो के अलावा और कौन से?
2: द ग्रेट इंडियन कपिल शो.
3: हाँ, कपिल शर्मा के शो का नाम क्या है?
2: नेटफ्लिक्स पे जो आता है वो
3: कहीं पे भी आता है?
2: नहीं, ऐसा नहीं है सैंडी ना, अलग अलग जगह पे अलग शोज होते थे ना.
3: तो कपिल शर्मा का कोई भी शो है, ठीक है, उसके अलावा
2: और कौन से शोज में,
3: और कौन से शोज में कृष्णा अभिषेक ने काम किया है?
2: एक्चुअली मैं देखो आगे मैसेज
3: डबल 599 पर आपको ड्राइव कीवर्ड के साथ यहाँ पे मैसेज करना है. रिमेंबर, ड्राइव कीवर्ड जब आप भेजेंगे तो ऑटो रिप्लाई में आपको फॉर्म मिल जाएगा जो फिल करके यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैंकॉक बाली ट्रिप. सो यस, कृष्णा अभिषेक ने और कौन से शो में काम किया है कपिल शर्मा के अलावा? कपिल शर्मा किसी के शो भी अलावा और कौन से शो में काम किया?
2: इंडिपेंडेंट दूसरे मतलब हाँ मतलब
3: नॉट जस्ट इंडिपेंडेंट, किसी और शो में,
2: किसी और शो में. ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट टू मच. काफी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर ऑलरेडी भेज दिया है. प्रशांत का भी सही आंसर है एक्चुअली में देखा जाए तो. अजय आपका भी आंसर सही है. सचिन, यस यू हैव गॉट इट राइट. हीना ने यहाँ पे आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजी है सैंडी.
3: फ्राइडे कम्स बिफोर थर्सडे इन द डिक्शनरी. ओके,
2: ऐसे कैसे? लेकिन
3: हाँ, एफ पहले आता है ना, टी बाद में आता है.
2: अच्छा हाँ, वैसा हाँ. फ्राइडे कम्स बिफोर थर्सडे, दैट्स राइट.
1: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
4: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ,
5: मैं लाऊं अपना ए गेम.
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: अरिजीत सिंह निकिता गांधी की आवाज में। सैंडी आपके लिए एक मैसेज आया यहाँ पे, लेकिन एड्रेस मेरे को हुआ है गलती से। उन्होंने कहा है, गुड आफ्टरनून रुजबे, व्हाट अ चॉइस फॉर अ सॉन्ग फॉर फ्राइडे आफ्टरनून, और फिर कुछ इमोजीज डाले हैं जो हमें क्वेश्चन मार्क करके आ रहे हैं। नाउ दिस कुड बी टू वे, आइदर द इमोजीज कुड बी लाइक बहुत ही बढ़िया, लाइक यू नो ब्यूटिफुल वंस, एंड इट कुड बी अ तारीफ, और इट कुड बी अ सार्केस्टिक टॉन्ट ऑल्सो, के व्हाट अ चॉइस फॉर सॉन्ग फॉर फ्राइडे।
1: वेब ने ये लिखा है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सार्केस्टिक वे से लिखा है,
0: बट थैंक यू वेब, एंड आई विल पास ऑन द कॉम्प्लीमेंट टू सैंडीज, बिकॉज़ सैंडी इज द वन हु हैज मैनेज्ड द क्लॉक टुडे आल्सो।
1: एनीवे
0: सी आई एम, आई गिव द क्रेडिट टू द पर्सन हु डिजर्व्स इट,
1: या 100% एंड
0: डेबिट आल्सो।
1: या और क्या हो रहा है आसपास रुजबे, तुम कुछ न्यूज़ वगैरह बताने वाले थे?
0: नहीं, न्यूज़ में बताने वाला था, बट वो इसमें से मजा नहीं आ रहा है कुछ।
1: क्यों? और फीफा में क्या हुआ, मैचेस में अभी क्या हुआ है?
0: सैंडी यू आर डूइंग अ सीरियस जॉब वेयर यू आर गेटिंग पेड, प्लीज।
1: स्विट्जरलैंड इज लीडिंग बाय 2-0 फ्रॉम अल्जीरिया।
0: 2-0 से लीड कर रहे हैं क्या? ये इजी गेम है इनके लिए,
1: लीड कर
0: रहे हैं, बस अभी खत्म हो जाएगा, 90 मिनट्स का गेम होता है ना,
1: या
0: बस थोड़ी देर में गेम खत्म हो जाएगा। एंड जो कल सुबह का गेम है ये इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट के बीच। इजिप्ट एक अच्छी टीम है ना, क्योंकि इजिप्ट ने न्यूजीलैंड को हराया ना,
1: या
0: सो अभी ऑस्ट्रेलिया को देखते हाउ इट,
1: अभी लास्ट मैच बेल्जियम से हारा है न्यूजीलैंड,
0: न्यूजीलैंड हारा है बेल्जियम से। अच्छा, इजिप्ट की बात कर रहे थे ना हम, क्यों यहाँ पे जले पे नमक छिड़क रहे हो।
1: एनीवे उससे भी बड़ा मैच अर्जेंटीना को होने वाला है वैसे कल,
0: अर्जेंटीना एंड
1: बताओ
0: कैबो वर्दे,
1: कैबो वर्दे या केप वर्दे क्या इसका नाम है, सो यस इसी अगेंस्ट ये मैच होने वाला है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग सो फार, जितने भी वर्ल्ड कप में गेम्स है वैसे रुजबे, काफी लोगों को मजा आ रहा है देखने में,
0: बहुत सही गेम्स हो रहे हैं,
1: पेनल्टीज पे काफी मैचेस जा रहे हैं,
0: हमारे काम पे तो लोग मैच ही देख रहे हैं। मतलब
1: क्योंकि फॉर अ चेंज एक ऐसा वर्ल्ड कप हो रहा है जो हमारे टाइम को सूट करता है,
0: काफी सूट कर रहा है ये वर्ल्ड कप का टाइमिंग एक्चुअली में। सो या एनीवे और भी बातें करेंगे आपके साथ, आप सुनते रहिए हम
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepy head, sleep easy queen beds from only $7.99 on sale now. Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West West side है ना, West side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with
5: क्या?
6: The cold weather।
5: क्या? कौन है? अरे
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा Hunua West में?
6: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: वन ऑफ द बेस्ट कोलैब्स मुझे लगता है ये श्रेया घोषाल एंड सुनी चौहान का गाना छेला, बहुत ही लवली सॉन्ग है ये। यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे। सैंडी इज हैज जस्ट स्टेप्ड आउट, वो आएगी अभी बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो हमने बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर इन्जॉय किया है इस वीक, बट थिंग्स मे गो नॉट दैट ग्रेट विद द स्टार्ट ऑफ स्कूल हॉलीडेज। नेक्स्ट वीक से स्कूल हॉलीडेज शुरू हो रहे हैं एंड उसमें ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ढेर सारी बारिश अपनी ओर आ सकती है, कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में स्नोफॉल हो सकता है ढेर सारा और काफ़ी ज़्यादा हिट हो सकता है। काफ़ी लोग कह रहे हैं ना वो एल नीनो इफेक्ट भी होने वाला है, न्यूजीलैंड फेस करने वाला है एल नीनो इफेक्ट। अगर आपने नहीं इसके बारे में सुना है अब तक, तो इट्स बेसिकली या तो बहुत ही ड्रॉट होता है या तो बहुत ही फ्लड होता है, मतलब वो क्लाउड्स का थोड़ा डायरेक्शन वायरेक्शन चेंज हो रहा है, बहुत ही उसमें साइंस है, हम नहीं समझ पाएंगे वो चीज़, बट हाँ एल नीनो करके कुछ आइटम आ रहा है, आपको पता है ना
1: कहाँ पे आ रहा है
0: एल नीनो, वो बात हो रही है ना अभी एल नीनो की हर जगह, ऑल अराउंड द वर्ल्ड बात हो रही है।
1: व्हाट इज इट अबाउट, आई मिस्ड इट।
0: सो बेसिकली क्या होता है उसमें मालूम है क्या सैंडी, देखो साइंस है वो, ठीक है, तो अपन इग्नोर करते
1: एक मिनट क्या स्पेलिंग बोले तुमने
0: नहीं नहीं नहीं मैं आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या होता है बेसिकली जो ओशन है ना, ओशन के ऊपर ऐसा विंड्स होते हैं, वो एक डायरेक्शन में मूव होते हैं। एल नीनो में क्या हो जाता है कि वो उस तरह से विंड नहीं जाती है, अलग डायरेक्शन से विंड आती है, कुछ प्रेशर वेशर और टेम्परेचर के कारण कुछ होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, और उसके कारण ये हो जाता है कि कुछ जगहों पे बहुत ही ड्रॉट हो जाता है और कुछ जगहों पे बहुत ही फ्लड हो जाता है। तो वेस्ट ऑकलैंड में फ्लड्स की संभावना है, मतलब ऑकलैंड एरिया में फ्लड्स की संभावना है और कुछ जगह पे ड्रॉट्स की संभावना है
1: दिस ईयर कैरियर
0: समर में इट्स कमिंग, समर इज कमिंग। अब तक विंटर वॉज कमिंग बट नाउ समर इज कमिंग, बट एनी वे मोर इम्पोर्टेंटली इस वीकेंड पे, वीकेंड के बाद नेक्स्ट वीक स्कूल हॉलीडेज में ऑरेंज विंड वार्निंग कैंटरबरी हाई, कैंटरबरी एरिया में हो सकते हैं विंड्स आर गोइंग टू रीच अप टू 130 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्कूल हॉलीडेज काफ़ी लोग ट्रैवल करने के प्लान्स कर रहे हैं, तो थोड़ा देखिए वेदर प्रेडिक्शन देखकर संभाल के आप ट्रैवल कीजिए। वेल अभी आपको थ्रोबैक में गाना सुनाएंगे एंड देन 5 बजे के बाद आज आपके साथ हम खेलने वाले हैं कनेक्ट द डॉट्स, वेयर वी वांट टू ऑफ आवर लिसनर्स टू कॉल और हम उनके साथ खेलेंगे
1: कनेक्ट द डॉट्स। सो 0800 00 हम पर आपको समय कॉल करना होगा 0800 00 4866।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर आज तो बहुत ही कमाल है। ओवर द वीकेंड थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, जैसे सैटरडे आफ्टरनून से बारिश शुरू हो जाएगी और रात भर बारिश चलेगी, बट संडे इज लुकिंग टू बी अ ब्यूटीफुल डे टुडे, आई मीन दिस वीक। सो आज द टेम्परेचर इज गोइंग टू गो एज लो एज 8 degrees टुनाइट।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
4: 5:03 हुए, you are listening to the Drive Show with Sandy and Rizbe on 104.2 FM. And city के अंदर अगर आपको सुनना है तो 87.7 FM पे भी आजकल आपको सुनाई दे रहा है।
5: Yeah, so try कीजिए। 87.7 पे सुना है, आपको कैसा लगा है? जरूर हमें बताइएगा। एंड ऑल्सो रोवा के जरिए आप अपन सुन सकते हैं। रोवा के जरिए सुनने के बहुत फ़ायदे हैं। आप हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रह सकते हैं। कहीं पर भी अगर आप घूमने के लिए भी जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, होम कंट्री विजिट करने के लिए जा रहे हैं, वेर एवर यू आर, आप हमारे साथ कनेक्टेड यहाँ पर रह सकते हैं।
4: आज हम लोग फेसबुक लाइव पे गए हैं अभी के लिए।
5: हम के फेसबुक पेज पे
4: हम लाइव गए हैं। एंड इफ यू वांट टू जॉइन इन एंड यू वांट टू सी के हम बिहाइंड द सीन्स क्या करते हैं, हाउ थिंग्स गो ऑन, देन या इट इज एक्सक्लूसिव फुटेज फॉर यू।
5: या एक्सक्लूसिव वहां पे फुटेज आप देख सकते हैं। हम 104.2 हमारा फेसबुक पेज है, वहां पे
4: शाइनिंग सा रुजबे तो पता नहीं, लेकिन ग्लोइंग सी सैंडी तो दिख रही है अभी। मैंने कैमरा चेंज कर दिया।
5: तुमने चेंज कर दिया? ओह नो। एनीवे गाइस, सो यस,
4: अच्छा
5: ये हम आपको यहाँ पे दिखाई रहे हैं। स्टूडियो का थोड़ा हाल भी आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं।
4: ये क्या दिखा रहे हो आप? ये फ्रंट कैमरा नहीं,
5: कैसे ये कैमरा सेट किया है रुजबे?
4: उल्टा कैमरा किया मैंने सैंडी। कम ऑन यार, बी अ प्रोफेशनल
5: रुजबे।
4: हाँ ओके, कैमरा चेंज करते हैं, स्वॉप करते हैं कैमरा वहाँ से।
5: कैसे करते हैं स्वॉप?
4: अच्छा एनीवे, तो आज हम आपके साथ फ्राइडे है तो कनेक्ट द डॉट्स खेलते हैं यहाँ पे। कनेक्ट द डॉट्स में होता ये है कि हम आपको एक ये पूछेंगे, एक कॉलर को पहले इनवाइट करेंगे, दो कॉलर्स को इनवाइट करेंगे और फिर हम वील स्टार्ट ऑफ विथ वन रैंडम वर्ड एंड देन यू हैव टू से द नेक्स्ट वर्ड विच कनेक्ट्स टू द फर्स्ट वर्ड।
5: या सो इस वजह से ये गेम होती है। तो आपको कॉल करना है 0800 00 वहाँ पर और ये वर्ड कोई भी रैंडम हो सकता है। ये रैंडम वर्ड से आप कहीं पर भी पहुँच सकते हैं।
4: एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फेसबुक लाइव है वो एंड हो गया है। सैंडी ने उसको एंड कर दिया है।
5: मैंने एंड नहीं किया है।
4: एंड हो गया है सैंडी। इतने हमारे लिसनर्स जो ज्वाइन करना चाह रहे थे हमें
5: जो गायब हो गए।
4: Don't be so mean, yeah. Anyway, आज फ्राइडे 0800 00 4866. Give us a call. Let's play Connect the Dots. आपको मैं सुना भी देता हूँ ना।
2: Connect the Dots.
4: Connect the Dots में देखो, for example हम एक डेमो दे देते हैं ना।
5: डेमो देते, चलो शुरू करो।
4: मैं शुरू करूँ?
5: या मैं करूँ?
4: मैं शुरू करता हूँ, चलो। Appreciation.
5: Depreciation.
4: Car.
5: Shooting.
4: कार से शूटिंग कैसे आ गया?
5: कार में शूटिंग हुई है।
4: कार में शूटिंग हुई क्या? क्या हुआ? नहीं, अच्छा तो
5: कैमरा वाली शूटिंग।
4: ओ, कैमरा वाली शूटिंग हुई है, अच्छा ठीक है। शूटिंग यूएस ऑफ ए।
5: यूएस ऑफ ए डोनाल्ड ट्रम्प।
4: ओ लेटेंट।
5: समय रायना।
4: ओके अभी सुनील पाल।
5: कपिल शर्मा।
4: अच्छा ओके। कृष्णा अभिषेक। वो
5: द कॉमेडी नाइट्स।
4: क्या प्लगइन किया। एनीवे आप यहां से हमसे बेटर यहां पे कर सकते हो। 0800 00 4866 इज द नंबर। वी नीड टू पार्टिसिपेंट्स। ऐसे हम दो पार्टिसिपेंट्स के साथ ये खेलेंगे जहां पे आपको रिलेटेड चीजें बोलनी है एंड वी विल सी वेयर इट गोज।
5: या तो कॉल कीजिए 0800 00 हम पर। रैंडम वर्ड से आप एक वर्ड से कहीं पे भी किसी भी फील्ड में किसी भी एरिया में जा सकते हैं।
4: एंड ऑनेस्टली ना, ऐसे सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत इजी है बट एक्चुअली इट कुड गेट वेरी ट्रिकी एज वेल। इट कुड गेट डिफिकल्ट बट या वी आर नॉट प्लेइंग फॉर कॉम्पिटिशन, वी आर प्लेइंग टू हैव फन।
5: या अगर आपको फ्राइडे के इवनिंग में फन करना है, थोड़ा चिल करना है, काम बहुत हो गया, ऑल डन एंड डस्टेड, सो इट्स टाइम टू बी चिल एंड प्ले सम गेम्स।
4: ओके सो वी गेम्स वी हैव कॉलर्स ओवर हियर। हाय, आपका स्वागत है।
6: हेलो गाइस, आई एम हियर नाउ।
4: जी क्या नाम है आपका?
6: बोलो
5: ओके, क्या नाम है आपका?
6: ओमकार।
5: ठीक है,
4: एक मिनट ओमकार, होल्ड करो, एक और कॉलर को ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाय,
6: नो प्रॉब्लम।
7: हाय, नमस्कार।
4: कैसे हो आप?
7: अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
4: बहुत ही बढ़िया। अभी हमको पहले ओमकार को बोलना पड़ेगा ऑल द बेस्ट। ओमकार,
5: ऑल द बेस्ट। ओमकार,
4: आपको पता है आपका कॉम्पिटिशन किसके साथ है आज?
6: नहीं भाई, कौन है? सॉरी, नमस्ते।
4: अरे आप
5: बहुत डेंजर है ये,
6: डरना चाहिए मुझे?
5: हाँ फुल।
7: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, तू आराम से खेल।
5: आराम से खेल। so, बिनाइफर है ये?
4: ये बिनाइफर है।
6: अच्छा चलो, नाइस। हाँ नाइस टू नो जी, धन्यवाद।
4: नाइस। तो ओमकार आप कहाँ से हो? आप मुंबई से हो वैसे? ओरिजिनली
6: अरे वा,
4: बिनाइफर बावी आहे म्हणजे इराणी बावी काय पण तुम्ही समजू शकता।
6: अरे वा,
4: तर वर्ड समजून समजून बोला। आम्ही रेडिओवर आहे आणि कंप्लेन आज आली आहे ऑलरेडी। एक अजून एक कंप्लेन नको आम्हाला। हमारे लिसनर भी ऐसे ही है।
5: तो रुजबे हम साथ में खेल रहे हैं क्या?
4: हम साथ में खेलने वाले।
5: ओके, सो रुजबे विल स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट टर्न विल बी रुजबे, देन बिनाइफर, देन ओमकार, देन मी, देन सैंडी। ओके,
4: आपके बाद फिर सैंडी। अभी और इतने
5: कौन? अरे वही मी, यानी कि सैंडी।
4: ओके ओके ओके, तो मैं स्टार्ट करूं?
5: हां या यू स्टार्ट।
4: नहीं, मेरे को लगता है मैं नहीं स्टार्ट करना चाहिए, मुझे लगता है ओमकार ने चालू करना चाहिए।
5: चलो ठीक है,
4: तो ओमकार स्टार्ट करेगा। मेरे को एक आइडिया सैंडी, ओमकार चालू करेगा, जैसे ओमकार करेगा फिर सैंडी, सैंडी के बाद बिनाइफर, बिनाइफर के बाद मैं,
5: ओके
4: मेरे बाद ओमकार फिर से।
5: चलो ओमकार शुरू।
4: सबको समझ गया?
5: ओमकार के बाद सैंडी है।
4: ओमकार के बाद सैंडी, सैंडी के बाद बिनाइफर, बिनाइफर के बाद रुजबे, रुजबे के बाद ओमकार।
5: या
4: ओके
6: ओके
4: ओके, स्टार्ट,
6: शुरू।
5: या
6: ओके, टॉय स्टोरी।
5: क्या बोला आपने?
6: टॉय स्टोरी।
5: टॉय स्टोरी,
4: टॉय स्टोरी, ये प्रमोट कर रहा है दूसरी मूवी। हां हां ओके, कार्टून
6: चलेगा ना?
4: हां हां चलना चाहिए।
5: मैंने बोला कार्टून।
6: ओके सॉरी।
7: या कार्टून, कॉमेडी।
4: कॉमेडी, मेरा टर्न, माय टर्न। कॉमेडी, नेटफ्लिक्स।
6: ओके, कपिल शर्मा।
5: नहीं नहीं, हाँ ओमकारी,
4: ओमकारी है ना अभी आपका टर्न।
5: कपिल शर्मा, कपिल शर्मा बोला आपने। नवजोत सिंह सिद्धू।
4: ओह वेरी नाइस, गुड गुड डाइसेक्शन।
7: पछी मोरी अर्चना, अर्चना पूरन सिंह,
4: अर्चना पूरन सिंह। मैं बोलूंगा व्लॉग।
5: व्लॉग,
4: वो व्लॉग करती है ना?
5: या
6: हां नाइस। ओके, व्लॉग। ओ व्लॉग,
4: व्लॉग व्लॉग, वो वीडियो व्लॉग, मतलब जो अपना
5: व्लॉग,
4: वो दिन भर का बताते ना कि हमने आज ये किया। YouTube बोला आपने। वेरी गुड,
6: YouTube,
4: YouTube,
5: YouTube आपने बोला। अनफिल्टर्ड,
4: अनफिल्टर्ड YouTube पे जाता है।
7: पॉडकास्ट,
5: जाता है
7: पॉडकास्ट,
4: पॉडकास्ट। मैं रणवीर अलाबादिया।
6: ओके, राजशमानी।
5: राजशमानी,
4: ठीक है।
7: एवन कौन से? एवन कौन
4: से? अरे एक छे फिगर आउट करे छे।
5: आपने राजशमानी बोला। अच्छा मैं आती हूँ, आई विल से
4: बहुत लोग है सैंडी यार।
5: नसीरुद्दीन शाह।
4: ऐसे कैसे?
5: अरे उसके पॉडकास्ट में गया वो।
4: गया नसीरुद्दीन शाह? अच्छा ओके, किसका टर्न है? नसीरुद्दीन शाह। यस,
7: लेटेस्ट मूवी के हुआ?
4: हाँ के वो तो कौन, बिनाइफर।
7: टाइटल?
4: हाँ
5: हाँ वही,
7: टाइटल टाइटल,
4: टाइटन टाइटन,
7: वो टाइटन, टाइटन वॉचमैन। हाँ करेक्ट करेक्ट।
6: ओ नाइस, या
4: टाइटन।
5: हाँ
4: मेरा टर्न है।
5: हाँ
4: टाटा।
7: अरे वाह,
6: हाँ
7: मिठो
6: टाटा।
4: हाँ
6: ओके,
7: तो तुम आशा पर जा।
6: टाटा टेक्नोलॉजीज।
7: टाटा
5: टेक्नोलॉजीज
7: नहीं।
6: हाँ पर पुणे में। अच्छा, कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS।
5: TCS आपने बोला, मैं बोलती हूँ जॉब्स।
4: जॉब्स बोल दिया आपने। अभी बिनाइफर का टर्न है ना? बिनाइफर,
7: TCS में जॉब्स, आईटी वाला, आईटी वालो
6: जॉब।
4: आईटी वालो, ओके मेरे को, मेरा टर्न है ना अभी? अभी आईटी वालो। अच्छा मेरे को लग रहा है बस हो गया मेरा यहाँ पे।
7: आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉब्स।
4: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉब्स.
7: यस
4: ओके. इसको कहाँ लेके जाओ यार?
6: मुझसे बोलो, तुमने बोला.
4: मैं अटक गया हूँ यार आज.
5: पॉडकास्ट
7: के चैट जीपीटी.
4: मैंने पॉडकास्ट बोला.
5: पॉडकास्ट पॉडकास्ट
4: पांचों पॉडकास्ट पर आ गई.
7: बेसिकली
5: गेम इज लाइक दिस की कनेक्ट द डॉट्स में यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड गो एनीवेयर
4: एंड वी आर ट्राइंग टू सी इफ वी कैन गेट टू लाइक अ स्टोरी अ थीम. बट थैंक यू सो मच यार ओमकार एंड बिनाफर, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे.
6: What are the subjects that we have covered today? You, if you see, if you go back, yeah. We started with Toy Story, then we went into kind of thoda sa technology, and we ended with podcast. So unfiltered crew page chale gaye fine.
5: You know?
4: Kya baat hai yaar? Very nice. Mere ko lag raha
7: hai.
4: मेरे को लग रहा है ओमकार ओमकार को पायलट बहुत यूज कर रहा है. मीटिंग के बाद समरी मिलती है ना, वैसा समरी.
5: समराइजिंग द मीटिंग. नाइस.
4: नहीं ठीक है, थैंक यू.
7: बाय द वे इट वेंट बैक टू पॉडकास्ट, सो इट वेंट बैक टू अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट, सो वी आर बिकमिंग फेमस. बोथ ऑफ यू आर बिकमिंग फेमस नाउ.
5: सी
4: या वी आर ओनली,
5: क्योंकि हम ही बोल रहे हैं,
4: वी आर ओनली टूटिंग आवर ओन हॉर्न. ओके,
7: डोंट वरी, आई एम टूटिंग योर हॉर्न.
4: Cool. Thank you so much, guys. Thanks for participating. Yeah. Thank you.
5: Thank you so much, Omkar.
6: Okay, bye.
7: Bye.
5: Bye.
4: Bye. Bye. All right. So, ये आज का हमारा connect the dots था. और भी आपके साथ हम यहाँ पे बातें करेंगे. But अभी के लिए, let's listen to the first song of this hour.

0: Arijit Singh, Sundi Chauhan and gaane ka naam Tujhko aap sun rahe the only on Humpling Bollywood's biggest hits.
1: Yes, ye gaane aap yahan pe sun rahe hain aur hamare aas pas jo ho raha hai iski information bhi aap tak hum pahunchate hain, jo events ho rahe hain iske bare mein bhi hum aapko batate rehte hain yahan par.
0: जी और जी अभी काफ़ी बातें हो रही है और हर जगह इसकी चर्चा भी चल रही है क्योंकि मोर देन 10,000 आर एक्सपेक्टेड टू वेलकम मोदी इन ऑकलैंड.
1: तो इसके बारे में आई थिंक आज क्रिस्टोफर लक्सर ने पोस्ट किया आज.
0: अच्छा.
1: या वहीं से मेरे को कंफर्मेशन पता चली थी.
0: जी तो इंडिया के पीएम श्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं यहाँ पे ऑकलैंड में एंड 10,000 से ज्यादा लोग वहाँ पे एक्सपेक्टेड है जो अटेंड करने वाले हैं इवेंट.
1: तो इसका कहीं पे कुछ पब्लिक नहीं किया ना इन्होंने कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है.
0: आई थिंक कोई रजिस्ट्रेशन लिंक था जो देखा था, बट आई थिंक 11th जुलाई को ये होने वाला है.
1: पर इंटरेस्टिंग, मीडिया तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि हम अपने लिसनर्स को क्या बताएं वो कैसे रजिस्टर कर सकते हैं.
0: हाँ ये पता नहीं वो
1: अगर मतलब किसी को जाना है हमारे लिसनर्स को तो वी डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली कि हाउ टू गो फॉर इट.
0: जी सही तो कह रहे हो आप वैसे. बट वो जिसको जाना है वो इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है.
1: हाँ आई नो, लेकिन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन बिकॉज हमारे पास नहीं है.
0: हम नहीं है क्योंकि वो
1: हमें बताना जरूरी नहीं समझा.
0: हाँ नहीं क्योंकि वो भरोसा नहीं है ना, आप कोई सवाल ऐसा पूछ लो कुछ कर लो तो फिर
1: कौन,
0: अगर आपने कोई सवाल ऐसा पूछ लिया कुछ हो गया तो. अरे वो एक्चुअली में कुछ है मतलब ऐसा थोड़ा क्या बोलते
1: हैं, लिसनर्स को तो बताना चाहिए ना कि अगर हमारे लिसनर्स इंटरेस्टेड है इवेंट अटेंड करने के लिए, अब 10,000 लोग में से अगर वो जाना चाहते हैं वो भी पार्ट बनना चाहते हैं एटलीस्ट वो तो जाए ना, पब्लिक तो जानी चाहिए.
0: सही बोल रहे हो आप, आवाज उठाओ.
1: उठा ली.
0: ओके एनीवे, बट हाँ ये इसके अपडेट्स भी हम आपके लिए यहाँ पे लाते रहेंगे जैसे हमको मिलेंगे वैसे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वीकेंड पे देर आर फ्यू थिंग्स हैपनिंग. अभी ये जो वीकेंड है देर इज गोइंग टू बी लिटिल बिट ऑफ रेन हियर एंड देर, बट नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू लुक अ लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर अस. बट एंड स्टार्ट ऑफ स्कूल हॉलीडेज एज वेल. तो क्या है आपके प्लान स्कूल हॉलीडेज के? आर यू ऑल्सो प्लानिंग टू ट्रैवल आउट फॉर द स्कूल हॉलीडेज? इसके बारे में भी आप हमें यहाँ पे बता सकते हो 5599 पे मैसेज करके या फिर कॉल करके 0800-004-866 इस नंबर पे. थोड़ी देर में आपके साथ एक और इवेंट के बारे में चीजें शेयर करेंगे, आप बस सुनते रहिए.
1: टिकट जीतने का आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है. अच्छा, ड्रॉ में शामिल होने के लिए
0: फॉर करण औजला
1: या फॉर करण औजला
0: एंड आल्सो आज एक और ड्रॉ करने वाले हम कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर.
1: यस
0: यहाँ पे उनका एक कॉमेडी नाइट लेकर आ रहे हैं जो विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है और
1: उसके विनर का नाम तो आज ही अनाउंस होने वाला है.
0: जी उसके डिटेल्स भी आज शेयर करेंगे हम आपके साथ, सुनते रहिए हम.
2: To you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.

0: sleepy head sleep easy queen beds from only 799 on sale now.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो,
1: और गानों में जस्ट

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: Traffic.
2: National Burns Awareness Month.
3: Mostly clear with a low of 9. Now on the southern, there was a crash heading northbound near Takanini, which still has the left lane on the Great South Road off-ramp block, so expect delays there. It's just under 45 minutes out of town to Manukau on the southern. Around the rest of the city is ever so slightly settling down, except for the northwestern where there's still the usual heavy patches driving along there.
2: Text BURN to 4499 for a $3 donation to help the BURN support group.
4: Are Babita, thank you so much for giving me Guru's नंबर यार
5: क्यों क्या हुआ
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रेस्पॉन्स फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी दैट्स 0800 564 424.
6: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम परफॉर्मेंस भी एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV जीरो इमिशंस मैक्सिमम सेविंग्स आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
7: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time.
8: From Papa Toy Toy, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Hape Road! In just 29 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
9: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
10: Get the kids creating these school holidays with awesome arts and crafts deals at Warehouse Stationery. Like 25% off Crayola, 20% off Elmer's slime kits and glue, plus loads more deals at Warehouse Stationery. Conditions apply.
11: The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari koi branch nahi hai.

0: sets from only $7.99 on sale now.
1: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. 5:39 right now on the clock. और अभी मौका है आपको participate करने का यहाँ पे for Karan Aujla double pass.
2: Yes, यहाँ पे आप double pass जी सकते हैं. Karan Aujla जो कि बहुत ही जल्दी आपकी super city में live perform करने के लिए पहुँचने वाले हैं. Karan Aujla will be here 25th अगस्त को Spark Arena में. So अगर आप इस P-pop culture world tour का हिस्सा बनना चाहते हैं, यहाँ पे जीतने का मौका है double pass. तो गाना आपके लिए प्ले कर रहा है, आपको टाइटल गेस करना है गाने का टाइटल क्या है KA कीवर्ड के साथ और 5599.
1: KA कीवर्ड आपको पहले डालना है और एक साथ डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड उसके बाद गाने का नाम. सो लेट्स सी आज कितने लोग गेस कर पाएंगे इस गाने का टाइटल.

0: बताइए कौन सा गाना है।
1: इस गाने का टाइटल क्या है?
0: डिफिकल्ट है ये वाला, मुझे लग रहा है कि इजी है।
1: इजी है, थोड़ा और प्ले करना चाहते तो कर सकते हो। बेसिकली इस गाने का जो टाइटल है वो बार बार गाने में आता ही है, हर एक जगह पे आता है वो।
0: तो क्या नहीं आ रहा है सही गैस अब तक सैंडी? मेरे को फिर से प्ले करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है।
1: ओ, जिसने अजय आपने जो गैस किया दैट्स अनदर गुड सॉन्ग, बट ये वो वाला नहीं है।
0: अच्छा
1: ओके, चलो तुम प्ले करो।
0: फिर से प्ले करूं?

0: ਨੀ ਰੋਣ ਦੀ ਵੰਗਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਲੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
1: ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ
2: तो वो जो टाइटल है वो गाने में बार बार आता है इस गाने का।
1: हाँ, ठीक है,
2: ये मैं आपको इतना बताती हूँ, हिंट तो देना बनता है ना गाइस,
1: थोड़ा बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है ये
2: वाला गाना, थोड़ा डिफिकल्ट है। सो के ए कीवर्ड के साथ आप लिख के भेजिए 5599 पर, बट इफ यू आर अ फैन ऑफ करण औजला यू शुड नो दिस बिकॉज दिस इज वन ऑफ द हिट गाना ऑफ करण औजला।
1: चलो बढ़िया, फटाफट भेजिए आपके एंट्रीज और थोड़ी देर में एक ड्रॉ करने वाले हम, जहाँ पे कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर आ रहे हैं यहाँ पे कॉमेडी नाइट लेकर विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ऑन आई थिंक फॉलोइंग वीक, नॉट नेक्स्ट वीक, और उसके बाद वाले वीकेंड पे वो आने वाले हैं यहाँ पे। उसके डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन जो विनर है डबल पास के उसके डिटेल्स भी शेयर करेंगे, तो फटाफट मतलब आप बने रहिए यहाँ पे।

0: थ्रोबैक में आपके लिए एक मस्सा गाना लेकर आ रहे हैं आज, और आज ये जो गाना है ये मुझे लग रहा है डेफिनेटली एक थ्रोबैक रहेगा, बिकॉज इट विल टेक यू बैक टू योर कॉलेज डेज या आपके स्कूल डेज, ये लेकर जा सकता है। आज 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में हम एक मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, एक मूवी को शाउट आउट देने वाले हैं। ट्रेंड मेकर्स में हम यूजुअली आपके लिए थीम लेकर आते हैं और आज की थीम है एक मूवी, एंड आई थिंक वी हैव चोजन दिस मूवी बिकॉज आज फ्राइडे भी है और ये मुझे लगता है एक परफेक्ट वीकेंड वाइब वाली मूवी है। एंड होपफुली इस शो को सुनने के बाद आपको मन करेगा कि अरे यार चल आज जाके मूवी देखते हैं ये वाली वापस, एंड आई थिंक इट्स अ फन री वॉच एज वेल। बट नाउ इज द टाइम, हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि किसने जीता है कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर का जो कॉमेडी नाइट हो रहा है उसका डबल पास। तो ये जो शो है ये होने वाला है ऑन द 18th ऑफ जुलाई एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर, जिसके टिकट्स आपको bookmyevent.co.nz पे मिल जाएंगे, एंड ट्राइविजन इवेंट्स लेकर आ रहे हैं ये इवेंट आपके लिए, और बहुत ही फनी इवेंट होने वाला है ये, बिकॉज कृष्ण अभिषेक एंड राजीव ठाकुर बोथ आर वेरी सुप्रीमली फनी, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस शो को अटेंड करते हुए। हमने आपको आज सवाल पूछा था कि अलॉन्ग विथ मतलब कपिल शर्मा शो के अलावा और कौन से उन्होंने शोज किए हैं, तो हाँ कॉमेडी सर्कस उन्होंने किया है, कॉमेडी नाइट्स बचाओ, लाफ्टर शेफ एंड OMG, और OMG ये मेरा इंडिया, उन्होंने ये सारे शोज भी किए हैं। और ये सारा मैसेजेस हमें यहाँ पे आए थे फ्रॉम निलेशनी, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दोज मैसेज। वैसे काफ़ी लोगों ने मैसेजेस भेजे बट वी हैड टू पिक वन विनर एंड आर कंप्यूटर हैज़ चोजन निलेशनी। निलेशनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीता है ये डबल पास फॉर दिस एपिक शो, एंड होप यू एन्जॉय द शो विथ योर लव्ड वन। हमें बताना ज़रूर आपको शो देखने के बाद कैसा लगा, बिकॉज डेफिनेटली योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में हमारे साथ ज़रूर देना, लेकिन अभी के लिए 3 Idiots का ये बहुत ही लवली सा गाना, जिसमें शर्मन जोशी की भी थोड़ी बहुत आवाज़ आपको सुनने आई देगी क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें कही है इस गाने में, एंड आई थिंक एक बहुत ही मीनिंगफुल एंड सोलफुल गाना आपके लिए ऑन हम, एंजॉय कीजिए।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो,

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers.
2: फिर तू क्यों रोता है?
3: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए हमने यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा हिंट प्ले किया है यहाँ पे कि क्या आज हम आपको सुनाने वाले हैं and what we're going to do. Basically the movie that we're going to talk about.
4: Yeah, so तुम हिंट प्ले कर रहे हो या फिर?
3: मैं प्ले करने वाला था सैंडी, लेकिन ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से.
4: गलत जगह पे तुमने प्ले कर दिया.
3: गलत जगह पे चीजें हो गई.
4: तुमने सारा गड़बड़ कर दिया रुजवे.
3: सारा गड़बड़ हो गया क्या?
4: हाँ, क्या? जो लिंक प्ले करना था.
3: हाँ, ये वाला था. ये था, ये वाला. Got it. Now, okay. This is what I'm going to play.
5: दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो. नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो. हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो. तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो. हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें. हर एक पल एक नया समा देखिए. जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो.
3: Beautiful words, yeah, beautiful words.
4: I think you got the theme today. आज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हम कर रहे हैं.
3: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये एक ऐसी मूवी है जो जोया अख्तर ने डायरेक्ट की है. फरहान अख्तर ने एक्ट किया है, जोया अख्तर की डायरेक्टोरियल थी है. एंड एक बहुत ही यू नो लवली मूवी जिसने डेफिनेटली स्पेन का टूरिज्म बढ़ा दिया था ना.
4: यस, सो ये मूवी इसलिए हम कर रहे हैं बिकॉज आपको पता है कि हम बाली बैंकॉक का जो ट्रिप है ये आपके साथ हम प्लान कर रहे हैं. एंड टुडे यू नो कई बार हम ये सोचते हैं रुजबे, और ये हम सबके माइंड में किसी न किसी पॉइंट पे आता है कि यार बहुत काम है, ये सब है, कौन सोचे ट्रिप करने के लिए. एंड वी आर नॉट सेइंग जस्ट फॉर बाली एंड बैंकॉक ओनली, वी आर जस्ट सेइंग फॉर अ हॉलीडे,
3: जस्ट इन जनरल हॉलीडे.
4: जस्ट इन जनरल यू डिजर्व अ हॉलीडे बिकॉज मैं पढ़ रही थी कि हम कई बार ना नोटिस नहीं करते हैं कि हमारे जो रूटीन फिल्ड ईयर होता है ना बाय अ ब्लिंक चला जाता है.
3: अभी देखो ना हाफ ऑफ द ईयर तो चला गया है.
4: सिक्स मंथ्स चले गए हैं. जब हम एक रूटीन में स्टक होते हैं ना तो हमारा ब्रेन ऑटो पायलट में चला जाता है एंड इट स्टॉप्स रिकॉर्डिंग द डिटेल्ड मेमोरीज. दिस इज व्हाट हैपेंस विद आवर ब्रेन जब हम ऑटो पायलट पे होते हैं. जो हॉलीडे होता है ना इट फोर्सेज योर ब्रेन टू प्रोसेस अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ न्यू डाटा. स्ट्रेचिंग टाइम, इट स्ट्रेच टाइम बिकॉज नई मेमोरीज आप वहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, आप ऑटो पायलट पे नहीं हो. सो इफ यू वॉन्ट लाइफ टू फील लॉन्गर गो फॉर अ हॉलीडे, गो फॉर अ ट्रिप. दिस इज योर वन रीजन टू गो फॉर अ ट्रिप.
3: मेरे को ऐसा है, काफ़ी बार ऐसे पूछते हैं ना हम लोग कि जब लाइक फ्रेंड्स कैचअप करते हैं एंड यू नो वी शेयर अबाउट लाइक यू नो ऐसे आइस ब्रेकर गेम्स खेलते हैं या फिर कलीग्स के साथ काफ़ी बार आइस ब्रेकर गेम्स होते हैं एंड यू टॉक अबाउट यू नो योर फॉन्डेस्ट मेमोरी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एक ही मेमोरी को कितनी बार पिलोगे ना.
4: और फॉन्डेस्ट मेमोरी में व्हाई यू नीड टू गो लाइक 10 years बैक, 5 years बैक, 20 years बैक फॉर सम, लाइक 25 years बैक फॉर सम पीपल. सो इतना पीछे जाने की क्या ज़रूरत है? फॉन्डेस्ट मेमोरीज में आपकी लेटेस्ट मेमोरीज इसी साल की, मतलब रिसेंट ईयर की होनी चाहिए.
3: या फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ दिस ईयर लाइक काइंड ऑफ थिंग. सो एवरी ईयर यू शुड हैव एटलीस्ट अ फ्यू डेज दैट यू नो आर मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ यू, यू नो लाइक दैट काइंड ऑफ. एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. वी आर ट्राइंग टू
4: इसीलिए ये मूवी आज लेके आए हम, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. बिकॉज हमारी जो थीम है, वैसे हम भी जो बाली बैंकॉक हम जो ये प्लान कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग ऑन द सेम नोट ओनली कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. वी जस्ट वॉन्ट टू गो एंजॉय. जो लिसनर्स हमारे साथ वहाँ पे जाना चाहेंगे उनके साथ फुल चिल करने वाले हैं.
3: जी, सो या अगर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए फिलअप करना है तो आप ड्राइव लिखकर 5599 पे भेज सकते हो एंड वील सेंड यू अ लिंक टू द फॉर्म. और वो फॉर्म पे आप आपके बस डिटेल्स वहाँ पे भेज दीजिए.
4: तो नेक्स्ट वीक क्या है कि हम आपको अटेंडरी और जो उस अटेंडरी के हिसाब से जो प्राइसेस है फुल डिटेल वो आपको हम भेज देंगे.
3: जी, सो वी जस्ट वर्किंग आउट ऑन द फाइनल डिटेल्स फॉर इट, बट इन द मीनवाइल यू कैन सेंड अस योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सो दैट वी नो दैट वी नीड टू रीच आउट टू यू. वी हैव ओनली 20 स्पेसेस अवेलेबल, सो ज्यादा स्लॉट्स भी नहीं है. देन yeah, it's better that we try to get your expression of interest. And
4: so
3: then,
4: better that expression of interest bheja hoga, to aapko details mil jayengi.
3: And then it's going to be first come, first serve kind of thing.
4: 100%.
3: But anyway, abhi ke liye hum dil dhadakne do nahi, zindagi na milegi dobara. But usme jo gana hai ek hai, dil dhadakne do. उससे शुरुआत करना चाह रहे हैं।
4: बहुत अच्छी लगी थी ये मूवी यार। तीनों फ्रेंड्स में ना, फ्रेंड्स ने इस मूवी में हर चीज दिखाई थी। एंजॉयमेंट दिखाया था,
3: झगड़े दिखाए थे,
4: झगड़े, जॉब सिक्योरिटी, जॉब इनसिक्योरिटी दिखाई थी, लव इनसिक्योरिटी भी दिखाई थी। बहुत सारे फैक्टर्स थे इस मूवी में, बहुत सारे फैक्टर्स थे इस मूवी में। नॉस्टैल्जिया भी दिखाया था इस मूवी में। फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा होता है, वो पॉइंट पे आके कैसे सॉल्व होता है, वो भी दिखाया था।
3: फिर वो भी दिखाया था ना कि इफ दिस वाज योर फाइनल विश, व्हाट वुड दैट बी?
4: Yes.
3: You know that last end mein jo scene tha, I think it was just a very beautifully crafted movie. And it makes us think also, it makes us ponder ki bhai, actually main, what is it that we really want?
4: So over the weekend watch this movie. अगर आप आज गाने सुनोगे यहाँ पे full on 7 बजे तक, तो आपको वैसे ही मन करेगा मूवी देखने का। थोड़े डायलॉग्स भी आपके लिए हम प्ले करेंगे। वॉच दिस मूवी एंड प्रिपेयर योर माइंड फॉर अ ट्रिप।

0: शंकर माधवन सूरज जगन की आवाज आप सुन रहे थे ओनियन हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के गाने आप सुनने वाले हैं इस पूरे घंटे और थोड़े बहुत उसके डायलॉग्स भी सुनेंगे।
1: या बिकॉज आज हम ट्रैवल के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्यों आपको ट्रिप अपनी लाइफ में करना चाहिए। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ा, अगर अपनी लाइफ में आप हॉलीडे पे जाते हैं ना, इट्स एन ऑडिशन फॉर योर ऑल्टरनेट रियलिटी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
0: इसको इम्तियाज अली ने एक्चुअली बहुत अच्छे से दिखाया था इन द मूवी तमाशा, जहाँ पे the characters were just playing different selves,
1: like they were like bored of their own reality in their real life. For example, at home you're bound by everyone's expectation of who you are. लेकिन जब आप वेकेशन पे जाते हैं ना, और ये मेरे साथ मतलब ऑल्टरनेट रियलिटी नहीं होती, बट आई बिकम वेरी क्या कहते हैं उसको, जिम्मेदारी फ्री वो बन जाती हूँ।
0: हाँ, आपने किया भी था ना, जब भी आप लास्ट टाइम फ्रांस गए थे।
1: मैं हर ट्रिप पे मेरा अच्छा होता है, ऐसा होता है। सो ऑन वेकेशन यू हैव टोटल एनोनिमिटी, सो यू कैन बी मिस्टीरियस पर्सन रीडिंग पोएट्री किसी कैफे में, द मतलब यू कैन बी अ पर्सन जो रियल लाइफ में मे बी इंट्रोवर्ट है बट आउट देयर यू आर एक्सट्रोवर्ट। You can be someone you dreamed of yourself to be.
0: Yeah, interesting. Yeah.
1: So vacation में ये एक reality जो है, आपकी alternate reality जो है, ये भी actually में बाहर आती है।
0: Yeah. Well, also talking about जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इसमें दोस्त काफी time के बाद एक साथ bond कर रहे थे, मिल रहे थे एक दूसरे को, and काफी सारे उनके पैतरे थे जो एक दूसरे के ऊपर use कर रहे थे। And we're talking about फरहान अख्तर, अभय देओल, एंड बिचारा ऋतिक रोशन के ऊपर सारे ये पैतरे।
1: और ये होता है जो फ्रेंड्स साथ में करते हैं, यू नो ग्रुप हॉलीडेज पे जाते हैं, तो एक की तो टांग खिंचाई होती ही है,
0: और वो एक हमेशा चेंज होते रहता है, अल्टरनेट होते रहता है। सो दिस इज दिस वन वेरी अमेजिंग सीन फ्रॉम द मूवी जो आपको हम सुना रहे हैं अभी। आई थिंक यू विल लाइक इट।
2: क्या मुझे पता है? क्या मॉम ने बताया? Well, ये नहीं बोला होगा कि आई वॉज फॉस्ट। ओके गॉड मैन, उसे कोई बात अंदर रखी नहीं जाती। शी इज ड्राइविंग मी क्रेजी मैन। अब 10 दिन पहले लंदन आकर मुझे किसी दोस्त के रिश्तेदार के घर ले गई। लड़की देख, नीलू आंटी और गोगी अंकल की बेटी कुकी। मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि वहां जाऊंगा, चाय पियूंगा, थैंक यू अंकल थैंक यू आंटी के बाद नो बोल के आ जाऊंगा। जैसे ही चाय की पहले सिप ली, कुकी ने नो बोल दिया। सो यू नो आई मीन सो हॉट है, व्हाट इज इट यू नो व्हाट, कम ऑन मैन,
3: तू अरेंज मैरिज के लिए गया और रिजेक्ट होके आ गया?
2: अरे मैंने इंप्रेशन क्रिएट ही नहीं किया तो
3: यू कांट, ये की बातें होती है।
2: आई डिड वांट टू इंप्रेस यार,
3: ना कर दी तूने हमारे ग्रुप की।
2: शट अप,
3: फेल।
0: ओह माय गॉड।
1: और ये इनकी ट्रिक होती है दोस्तों के बीच में कि देन हाउ दे स्टार्ट द कन्वर्सेशन, कि तुम्हारे बारे में रूमर हमें पता चली, एंड देन द नेक्स्ट पर्सन ऑटोमेटिकली सेज एवरीथिंग।
0: या और ये मुझे लग रहा है इस मूवी के बाद काफी लोगों ने ट्राई भी किए, मुझे लग रहा है काफी लोगों पे
1: 100% ट्राई किया। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आज करना, या अपने ट्रिप में करना।

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
2: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
1: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
2: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
3: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी डिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
5: Indelible Homes, your building expert.
6: Hi boys, ek kahani sunati hu. एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था.
7: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है.
8: But should we call her, sir?
9: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलाएंगे.
6: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई.
10: YRF Spy Universe presents
11: Alpha.
10: Now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TPC.
6: शुरू करो अग्नि परीक्षा.
12: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले माइटेड एंड मेगा बॉटनी में. फ्री किड्स एक्टिविटीज, क्लासिक सॉसेज सिजल, लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिव अवेज, प्लस 4 टाइम्स एयर पॉइंट स्टोर वाइड. टीज एंड सीज एंड एक्सक्लूशंस अप्लाई. दिस सैटरडे एट माइटेड एंड मेगा बॉटनी.
13: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
14: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.

0: लिए ट्राई करने के लिए उनकी गाड़ी में. एंड लेट्स सी इफ यू कैन हियर अस, अनटिल वेयर कैन यू हियर अस, मैसेज करके हमें जरूर बताइएगा.
1: या एंड हम आज आपके लिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस मूवी के डायलॉग्स एंड इसके गाने लेके आ रहे हैं और उसको ऑल्सो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि क्यों आपकी लाइफ में हॉलीडे बड़ी ज़रूरी है, ट्रिप बहुत ज़रूरी है. मैंने वैसे पढ़ा है रुजबे इसके बारे में कि ट्रिप आपके लाइफ में क्यों ज़रूरी है. अग्रेसिव न्यूरोप्लास्टिसिटी बूट कैंप.
0: क्या होता है?
1: जो आपकी ट्रैवलिंग होती है ना, लिटरली चेंजेस द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन. सो नेविगेटिंग अनफेमिलियर स्ट्रीट्स, फॉरेन लैंग्वेज आप सुनते हैं, नया कल्चर आप देखते हैं, नया खाना कल्चर का आप देखते हैं, इट बिल्ड न्यू न्यूरल पाथवेज. सो बेसिकली आपका ब्रेन और बेटर वे से फंक्शन करता है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हॉलीडे, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम सच काइंड ऑफ हॉलीडे.
0: एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं हमेशा से सोचता था कि यार या मतलब हॉलीडे पे मतलब क्या ही पॉइंट है यू नो. खर्चा हमेशा मन में होता है, ये होता है. बट देन दिस मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एक्चुअली answers that question.
1: Yes.
0: And a lot of people have this similar thought ki, you know, main abhi full mehnat karke full kaam karna cha raha hu, fir main retire karunga. Aur humne ek baar radio pe bhi iske upar baat ki thi, humne topic kiya tha ki actually main retire nahi hona hai kyunki main chutti pe tha abhi recently do teen hafton ki. और मैं थोड़ा सड़क गया मेरा यार कि क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब
1: मे भी अपनी लाइफ में आपने काफी चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया होता है. तो जब आप छुट्टी पे होते हो तो आपको उन चीजों की वैल्यू भी समझ में आती है, यू रियलाइज फ्यू थिंग्स
0: एंड या व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लिव योर लाइफ एवरी डे. इसके बारे में देखो जब कैटरीना बोलेगी तो आपको और समझ में आएगा.
1: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ये डायलॉग बड़ा सही है. लैला का रोल मेरे को बहुत अच्छा लगा था.
0: ओह या एंड मजनू आल्सो ना,
1: या मजनू आल्सो, या मजनू वाज फरहान अख्तर दो, बट इसमें दिस डायलॉग इज बिटवीन ऋतिक रोशन एंड कैटरीना कैफ.
2: उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है, लाइक कुकिंग.
3: या वो दैट्स द प्लान, आई मीन 40 के बाद आई रिटायर एंड
2: डूड तुम्हें कैसे पता है कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे?
4: Seize the day, my friend.
2: पहले इस दिन को पूरी तरह जियो, फिर 40 के बारे में सोचना.
0: A very short dialogue, but a very meaningful one.
1: Yeah, seize the day.
0: Yeah, seize the day. तारों के नीचे सोना. ओह माय गॉड, ये मूवी मुझे आई एम वेरी श्योर हमें अभी फिर से देखनी पड़ने वाली है.
1: मुझे भी लगता है. एंड अगर आप हमारे साथ ट्रिप पे जाते हैं, यू नेवर नो, ऑन द वे कहीं पर हम इस मूवी को देखें.
0: अच्छा,
1: ऐसा भी कर सकते हैं ना प्लान हम.
0: ओके,
1: या
0: नहीं, आई थिंक वी विल हैव टू, वी विल क्रिएट आवर ओन मूवी एट दैट पॉइंट.
1: मूवी नाइट भी करेंगे एक्चुअली में, ये जो ट्रिप होगा बाली बैंकॉक वाला. एनीवे, सो उसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए, ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर, फिल द फॉर्म, एंड नेक्स्ट वीक आपको हम आइटिनरी एंड प्राइसेस भेज देंगे. सूरज

0: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को आज हम revisit कर रहे हैं और उसके कुछ हसीन dialogue आपको सुना रहे हैं और उसके प्यारे प्यारे गाने भी आपको सुना रहे हैं आज trend makers में. It's Friday and hope आपका जो weekend है school start of school holidays next week. So
1: yeah, start of school holidays
0: काफी stressful रहने वाला है काफी parents के लिए. I think they need to watch जिंदगी ना मिलेगी दोबारा.
1: 100% आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो देखनी ही पड़ेगी. वैसे you know मैंने एक और जगह जो पढ़ रही थी ना list पढ़ रही थी कि why आपको holiday जो है लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. The ultimate relationship litmus test.
0: अच्छा.
1: So want to know who someone really is, travel with them.
0: हाँ एक्चुअली आज हमें कॉल भी आया था ड्यूरिंग द डे. हमने बात की थी सू के साथ और उन्होंने शेयर किया था कि उन्होंने अपनी गर्ल लीडी फ्रेंड्स गर्ल फ्रेंड्स के साथ ट्रिप मारी.
1: बाली में ही गई थी.
0: बाली गई थी वो और काफ़ी उन्हें बहुत मजा आया. लाइक यू नो शी गॉट टू नो रियल पर्सनैलिटीज ऑफ फ्रेंड्स एंड Yeah, they still are friends.
1: Yeah. उसके बाद भी सो यही बोला है कि यू विल सी हाउ अ पार्टनर फ्रेंड और फैमिली मेंबर हैंडल्स अ कैंसल फ्लाइट लॉस्ट लगेज या हंगर एट 11 PM इन अ सिटी वेयर एवरीथिंग इज क्लोज्ड. सो यू गेट टू नो दीज काइंड ऑफ स्टफ. मतलब हाउ द अदर पर्सन रिएक्ट टू सच काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड हाउ दे रिएक्ट विद यू एज वेल. मतलब वो कहाँ पे निकाल रहे हैं, कहीं पे निकाल रहे हैं या तुम पे निकाल रहे हैं.
0: और काफी बार वो सब देखकर ना आपको ऐसा रियलाइज भी होता है कि ओ मे बी लाइक यू नो ये चीज शायद मैं भी करता हूँ या करती हूँ.
1: यस
0: एंड दिस इज समथिंग दैट आई यू नो दिस इज हाउ द अदर पर्सन फील्स व्हेन दे रिसीव सच थिंग यू नो
1: सच काइंड ऑफ रिएक्शन.
0: एंड काफी बार क्या हो जाता है मतलब ट्रिप पे जाना व्हेन यू गो व्हेन यू चेंज योर एनवायरमेंट अगर आप किसी चीज में फंसे हो किसी चीज में अटके हो. You know, काफी बार ऐसा होता है you feel like you're stuck somewhere, you're stuck in the middle somewhere.
1: Yeah.
0: And I think all of us have been through that situation.
1: 100%.
0: But जब आप travel करते हो और वो भी strangers के साथ जब आप travel करते हो काफी बार आपको वो answers शायद मिल जाते हैं unknowingly because people are going to give you advice without any biases.
1: Yes.
0: Or they're going to talk about certain things without any biases.
1: मैंने देखा है कि लोग अपने life changing decisions लेते हैं after coming back from a trip.
0: That's absolutely right. तो चलो ये एक छोटा सा dialogue ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का आपके लिए.
2: Mom के birthday पर मैं उनके लिए एक ring लेके आया था. वो ring देने से पहले मैंने Natasha को दिखाई थी और उसको लगा कि उसके लिए.
3: Are you crazy?
4: क्या कर रहा
3: है?
2: What's wrong with him?
3: What's wrong with him?
2: Just
4: तो इसलिए ये वेकेशन तेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था.
2: मतलब
4: बेसिकली तुझे किसी और से सुनना था कि तुझे शादी नहीं करनी चाहिए और हम दोनों के अलावा ये तुझसे और कौन कहता.
2: हैव यू टोटली लॉस्ट इट. इनविटेशन कार्ड छप चुके हैं. दिस इज नॉट अ टाइम टू ओवर रिएक्ट.
4: कबीर हम जानते हैं कि नताशा इज अ ग्रेट गर्ल और ये भी पता है कि तू उसे चाहता है एंड ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू हर्ट हर. बट पूछ अपने आप से क्या तुझे 100% ये शादी करनी है और अगर नहीं देन बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड टू हर. ऑफ कोर्स शी बी हर्ट लेकिन इन द लॉन्ग रन ये तुम दोनों के लिए अच्छा है यार.
3: ही इज एब्सोल्युटली राइट है कबीर.
2: हाँ पर मैं कमिट कर चुका हूँ यार.
3: अरे यार तो हो गई गलती कोई जेल नहीं भेज देगा यार तुझे.
0: और तो सलमान खान थोड़ी है.
2: इमरान हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं.
4: पेरेंट्स
0: टूड इट वेल आई थिंक This is such an emotional movie. I really like this movie.
1: मतलब इसमें लेकिन उन्होंने ना friend circle में जो वो trip पे जाते हैं जो हम बातें कर रहे हैं कि it's a test of everything. It's based, you get the answers from other people. तो it's all in all वो सारी packages जो है वो इस trip में इस characters ने वो जिए हैं.
0: वो जिए और उन्होंने वो सारी चीजें दिखाई हैं यहाँ पे.
1: Yeah.
0: I think it's a very beautifully made movie. Anyway, इसी movie के और भी गाने आप सुनेंगे. बस सुनते रहिए हम.
5: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Hum. Accurate traffic.
6: Book your Ski G trip today.
7: Mostly clear with a low of 9. Now on the southern, the left lane on the Great South Road off ramp is still blocked due to a crash before, so do expect delays there. It's just under 40 minutes out of town to Manukau on the southern. On the northern at the moment, it's looking like it's settling down though. It's just under 20 out of town to Constellation Drive. Drive, and that is pretty much the story around the rest of the city as well.
6: To book your next Ski G trip to Vancouver or Japan, go to FijiAirways.com.
8: Craving ho rahi hai us thick aur creamy dahi ki jaise ghar par milti thi, to milvate hain aapko Kashish Natural Yogurt se, jiska har spoon hai ekdam delightful, 100% vegetarian, gelatin and gluten free. Perfect hai smoothies banane ke liye, tangy dips banane ke liye, paneer ya chicken marinate karne ke liye, ya bas seedha tab se khane ke liye, kyunki ye hai naturally delicious, always desi. Available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish Natural Yogurt.
9: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Panmure in just 20 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
10: Hi boys, एक कहानी सुनाती हूँ. एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था. वो धोखे से राज करता था.
11: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है.
12: But should we call her sir?
13: इसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलाएंगे.
10: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई.
14: YRF Spy Universe presents
15: Alpha.
14: Now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TPC.
10: शुरू करो अग्नि परीक्षा.
16: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
17: हाँ, अच्छा
16: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
17: मिसेस सिंह
18: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
19: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.

0: tablets from only $7.99 on sale now.
1: Trendmakers में आज ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा को हम दे रहे हैं shout out और इस पूरे आवर आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा के गाने भी सुने हैं और उसके dialogues भी कुछ सुने हैं and trips की हम एक ऐसी बात करते हैं क्योंकि हम भी ट्रिप पे जाने वाले हैं नेक्स्ट ईस्टर और
2: ईस्टर 2027
1: एंड वन थिंग दैट विल रियली बी अ थिंग इन आवर ट्रिप इज गोइंग टू बी नॉस्टैल्जिया काफी नॉस्टैल्जिया वाली बातें हम करेंगे क्योंकि हमारे ड्राइव शो में भी हम काफी नॉस्टैल्जिया को हिट करते हैं
2: 100% नॉस्टैल्जिया में यू नो वी कैन गो अबाउट कि हम क्या देखा करते थे टीवी पे या फिर हमारे ट्रिप्स जो स्कूल ट्रिप्स या कॉलेज ट्रिप्स आपके वो कैसे हुआ करते थे वी कैन गो
1: नॉस्टैल्जिया की एक खास बात क्या होती है मालूम जब आप दोस्तों के साथ डिस्कस करते हो आपके लाइक बिकॉज वी ऑल हैव ग्रोन अप इन डिफरेंट एरियाज एंड वी हैव सीन ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स और प्लेड सिमिलर थिंग्स बट इन डिफरेंट एरियाज हमारा पर्सपेक्टिव कुछ चीज़ों को लेकर अलग अलग है
2: yes.
1: भले वो सेम चीज़ है लेकिन हमने उसको अलग तरीके से देखा है या अलग तरीके से जिया है और वहाँ पे जब आप डिस्कस करते हो साथ में बैठ के उसके बारे में बात करते हो तो आपको ऐसा रियलाइज होता है कि हाँ यार दिस एक्चुअली can be looked at in another way also and I think that skill that ability to do that is a life skill
2: 100%
1: because suddenly aap jo empathy ki hum baat karte hain compassion ki jo baat karte hain wo sari cheeze aap mein aa jati hai agar aap cheezo ko alag way se alag angle se dekhne ki aadat
2: dal do while growing up humne kisi ek nazariye se wahi cheeze dekhi hoti hai but agar baaki states ka jo perspective hai wo bahut hi kai baar different hota hai because different way se har koi grow up hua
1: different
2: hota
1: countries
2: hai.
1: ka different
2: different countries ka different hota hai सो नॉस्टैल्जिक तो ये ट्रिप रहने ही वाला है और मेरे को लगता है वो सबसे बढ़िया बात होती है जब आप ग्रुप में बैठे होते हैं ना यू टॉक समथिंग योर फॉन्डेस्ट मेमोरीज के बारे में जब आप बातें करते हैं
1: That's
2: तो
1: right.
2: वो एक अलग ही लेवल पे हिट करता है
1: सो लेट्स लिसन टू हाउ दे डिड इट इन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा
3: याद है जब टीवी पे सिर्फ दूरदर्शन आता था और हर संडे को शाम में पिक्चर दिखा देते
4: पॉइंट क्या है
3: पॉइंट इज कि पिक्चर के पहले एक एनिमेशन आता था सफेद गोल गोल घूम के डीडी का लोगो बनता था दुनिया

0: Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun
1: वो ट्यून सुन के मैं हमेशा डिप्रेस हो जाता डिप्रेस
2: आज कुछ वैसे ही फील हो रहा है
3: I think this is towards the end of the trip.
4: Yeah, because
2: छुट्टी खत्म हो, स्कूल शुरू.
0: और तू ये हॉलिडे कैंसिल करने वाला था.
1: I know, man. Can you imagine?
0: Now,
1: you know what that means? इसका मतलब है कि सब कुछ लिखा हुआ है.
3: सब कुछ लिखा हुआ है जी सब कुछ
4: Too
3: लिखा
4: good
3: हुआ
4: man.
3: है
4: सो ये सब कुछ लिखा हुआ है शायद आपका भी ट्रिप लिखा ही हुआ है

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Trendmakers में आज ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा को हमने एक ट्रिब्यूट दिया, शाउट आउट दिया है, क्योंकि हमें एक्चुअली ना काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे हम कि हम जो ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसको क्या नाम दे एक बॉलीवुड टाइप का नाम हमको देना था. एंड आई थिंक बाई द एंड ऑफ द शो आई थिंक वी फिगर्ड व्हाट द नेम फॉर आवर ट्रिप इज गोइंग टू बी.
1: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा,
0: इट्स गोना बी
1: इससे बेटर नाम मुझे नहीं लगता है हो सकता है.
0: या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा विद सैंडी एंड रुस्बे. इफ यू वांट टू जॉइन अस, वी आर गोइंग टू बाली एंड बैंकॉक इन 2027 ईस्टर. वो जो ब्रेक है
1: बिकॉज बेसिकली ये जो आपने आज पूरा सुना है, जो आपने कॉन्सेप्ट सुना है, जो आपने गाने सुने हैं, दिस इज द फील वी गोना हैव ऑन दिस ट्रिप. सो इससे बेटर नाम नहीं हो सकता है. ये मूवी अगर आप ओवर द वीकेंड, ये आपने मूवी नहीं देखी हो, ओवर द वीकेंड इस मूवी को देख सकते हैं या फिर रिविजिट कर सकते हैं. एंड आज तो हमने आपको इनफ रीजंस भी बताए हैं कि व्हाई यू शुड गो ऑन अ हॉलीडे. सबसे ज़्यादा तो होता है कि द स्वीट रिलीफ ऑफ होम सिकनेस. Sometimes the best reason to leave is to remember why you love staying.
0: Oh yeah, actually you. Yeah. And that happened when I returned back last. मतलब जब भी holidays से मैं return आता हूँ, तो मेरे को इतना ज़्यादा प्यार आ जाता है Auckland के लिए और ये शहर के लिए.
1: Appreciation बढ़ जाता है ना.
0: क्योंकि I love this place. To be honest. भले हम कितना भी creep करें, ये करें, वो करें, but
1: मुझे. क्योंकि routine है ना. Routine में क्या होता है कि you get bored. तो हमारा वही रूटीन का एक टाइम टेबल बेसिकली एक होता है. अ गुड हॉलीडे गिव्स यू जस्ट इनफ डिस्टेंस ताकि आप अपनी जगह को, अपने काउच को, अपने शावर को, अपने बेड को, अपने कंफर्ट को, डेली रूटीन को आप मिस करें. सो यू हैव टू लीव टू अप्रिशिएट द रिटर्न.
0: एब्सोल्युटली. एंड या आई थिंक अनदर रीजन टू कॉल इट जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इज बिकॉज वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ एडवेंचर्स.
1: 100% गाइस, बहुत सारे हम वहाँ पे एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें आप हमारे साथ करने वाले हैं. दिस पैकेज जो आपके साथ हम बना रहे हैं, आपके लिए हम बना रहे हैं, इस पैकेज में एवरीथिंग विल बी पेड. सो आपको एक ही बार पे करना है वहाँ पे खाने पीने का.
0: एवरीथिंग इज इंक्लूडेड.
1: एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, खाने पीने से लेके एक्टिविटीज़, रहना, फ्लाइट्स to all the destinations, everything is is included.
0: Everything. So you don't have to worry about anything else.
1: बाकी हम हैं ना संभालने के लिए.
0: अगर shopping करना है तो आपको करना है.
1: वो आपका है.
0: वो आप संभालोगे.
1: नहीं नहीं.
0: अच्छा. ठीक है. एक जाने से पहले ये dialogue तो बनता है. Because this is, I think, one of the most heartwarming poems. तो let's have a listen.
2: जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है. ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं. थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा. आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है. क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है.
0: Beautiful, beautiful poem. And I think with that it's time for us to say have a wonderful weekend.
1: Have a wonderful weekend. Well, जिंदगी ना मिलेगी तो ना मिलेगी दोबारा के गाने आपने अभी तक सुने, लेकिन एक ट्रैवल सॉन्ग के साथ आपको यहाँ पे हम छोड़े जा रहे हैं. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय
0: बाय. सी यू सून.

with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Super Manic!
1: Jargon I come. Yeah, Jargon I said. Jargon I come. Yeah, Jargon. माँ बाप के साथ मेरी फोटो है चार, सांपों के साथ पोज किए 4000 से भी ज्यादा, 8 से 10 हजार चेहरे।

0: 유키온 화이사 테라바이 밴드
1: 테라바이
2: 보이
3: जब से आया लौंडे खबरदार किए

बनोगे क्या कुछ? अभी अभी सोचा है। मैडम आप पे पूरा भरोसा है, चलो। अच्छा सुनो, जो लाइन पसंद आती है वो चुनो। नाम छोटा डॉन मगर सब

0: Support Aria!
1: मैं बचपन से बचपन तू राही थोड़ा थोड़ा स्टैक जवर खूब काही राही काही नाही नको अरे दाजी बामी थोड़ी चिंतित पर बाकी सब इलाही इल हाय ये मैं राज दुआ मैं मिल तू आज दुआ मैं मिलू आज दुआ मैं तुझको राज ए ए छोरा ना दूर से देख चूहा जेरी तू मैं टॉम मैं तेरा दोस्त तू देख देख विचार चलू तार शब्द कांदान वर फेंक तू ना पांदान वर टिक पैसा खानदान वर चेक लाओ लाओ थोड़ा सा प्यार मेरे कंटेंट पे क्यों जगह पर कौन मेरी कौन कौन इस कंटेंट में कॉन्सर्ट पे सबस्क्राइब पे खतली मी नौ आरी पदर सर का फ्लो सारा रैप बारी लाइव बारी मराठी पोरगी नाकात नथनी प्रेमाचा रैप जसा भाकर अनचटनी माथे पे चंद्रकोर जबान खारी खारी चाय के साथ वैसे ही मैं और मेरी नौ आरी शब्दों से कूल हॉट ट्रेंड मेरी सारी खारी चाय के साथ वैसे

0: मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं?
1: तो क्यों अच्छा लगेगा?
0: तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी?
1: मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू काउरा बाउरा हो रहा था ना।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.

0: हाय बॉयज, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था।
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
2: But should we call her, sir?
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलाएंगे।
0: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
3: YRF Spy Universe presents
1: Alpha.
3: Now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
0: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
4: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
5: Ski G.
6: Ski G?
5: Ski G.
6: Wait, what?
5: Yeah, that's all we're telling you for now. FijiAirways.com.
7: Non-stop Bollywood.
8: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
7: हम playing Bollywood's biggest hits.
9: Let's go.
7: The weekend starts here.
10: Friday night rave.
7: हम

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-439 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: MediaWorks complaints. How can I help?
8: My kids won't shut up.
7: I'm not sure that's our problem.
8: They keep reciting lines from one of your radio ads.
7: Aww, cute.
8: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
9: What do you want, son?
10: I want me some of that real southern chicken.
8: 28 times.
7: So where are you now?
8: Eating chicken.
11: Advertise with
12: MediaWorks.
11: New Zealand listens to us.
13: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम,
14: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए।
15: यू आर इन द मिक्स विद DJ B Trip।

0: Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
7: मुझे भी
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

भाई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौख नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे भाई कितना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना, झुमका गिरा दे झुमका।

0: disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्रैकिंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
5: અને હું તેજલ વ્યાસ.
4: અમે આવી રહ્યા છે અમારું નવું નક્કોર સુપર હિટ કોમેડી નાટક ગુજુબાઈ ની
5: એક્સચેન્જ ઓફર.
6: Friday 3rd July Victory Convention Center પર Lending HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria નું નવું નાટક ગુજુબાઈ ની એક્સચેન્જ ઓફર. હસી હસીને લોટપોટ થવા તૈયાર થઈ જાઓ. ટિકિટ્સ જલ્દી બુક કરી લેજો. ફોન કરો 021-244-6278 પર.
7: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
8: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: पिंटरेस्ट पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
4: हाँ। अच्छा
3: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह,
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130050 और विजिट फोकस किचन्स.co.nz। नाइट फ्लाइट।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: Moisture और ventilation का problem लगता है।
5: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
8: Hi boys. एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था।
9: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
10: But should we call her, sir?
11: इसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलाएंगे।
8: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
12: YRF Spy Universe presents
13: Alpha.
12: Now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
8: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
0: Playing Bollywood's biggest hits.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए

0: चाहे आप हम के ढिंचैक बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Playing Bollywood's biggest hits.

शहनाई खुशियों की बजेगी, सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी, सुन लो काली सी शब के पार से, देखो चंदा की हमें झलक दिखेगी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिंह से मैंने पूछा, इन्ना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: हाँ। अच्छा
0: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
1: मिसेस सिंह,
2: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मीन्स मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस।

0: Night Flight on Hum.
1: ATS ke retro gaane.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. Hi boys. एक कहानी सुनाती हूँ. एक राक्षस था. घमंड उसका शस्त्र था. वो धोखे से राज करता था.
2: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है.
3: But should we call her, sir?
2: इसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलावेंगे.
1: इतिहास जानता है. ये कहानी कैसे खत्म हुई?
4: YRF Spy Universe presents
5: Alpha.
4: Now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
1: शुरू करो अग्नि परीक्षा.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
7: बजे

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
1: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.
3: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: Playing Bollywood's biggest hits.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance presents The Great Indian Comedy Night featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
5: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
4: Saturday 18th July 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
5: Mashallah, bahut acha, very nice.
6: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

पे क्योंकि दुनिया में

मीराबाई से लोगों ने प्रश्न किया कि चलो हमने माना कि तुमने गोविंद मोल लिया, तो जब भी कुछ मोल लिया जाता है तो उसका कुछ मूल्य होता है, तभी तो खरीदा जाता है। तो तुम्हारे गोविंद का मूल्य क्या है हमें भी बता दो, हम भी खरीद लाएं। अब मीराबाई का

0: the drive show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Professional financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
5: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
4: Business फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
0: Winter आ गया है and Mighty 10 Mega Westgate and Henderson has you covered. Your one-stop shop for everything inside and out, plus a friendly team of experts to help you get it done. In-store आइए या shop online today.
6: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: Hi, boys. एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था।
10: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
11: पर शुड वी कॉल हर सर?
12: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलाएंगे।
9: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
13: YRF Spy Universe presents
14: Alpha.
13: Now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
9: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
0: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
15: कभी भी कहीं भी
16: मस्त मलंग
15: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम।
17: A very good morning everyone. हम पर आपका स्वागत है, मैं क्रिश आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए। हमारा साथ रहेगा ऑल द वे टिल मिडडे ब्रेकफास्ट शो में। आपका स्वागत है और एक से बढ़कर एक गाने में लेकर आया हूँ। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे। प्यारे प्यारे गाने आपके साथ हम शेयर करेंगे। इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ 4th July, इट इज़ ब्रेकफास्ट शो और मैं क्रिश आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए। स्वागत है आपका।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Breakfast show with VJ and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
3: क्या? कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
7: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
6: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
9: HBO Max is that all killer, no filler.
10: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
9: Exactly.
10: Right, we'll see. What are they called?
9: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
10: Whoa, okay, I get it. Fair call.
9: HBO Max, all killer, no filler. Stream now.
11: We pulled it off, Johnny. We're rich!
12: Oh, no. I've left my glasses in the vault.
11: What? You're kidding me? Oh, they'll be covered in your fingerprints.
12: Oh, Pete! I went to Specsavers and got a smudge-resistant coating. They're not going to find a single print.
13: Someone's been to the Specsavers winter sale. There's 50% off lens options, including light reactive, drivewear, and smudge-resistant. With two pairs from $169 or above, limited time, conditions apply.
12: I think I dropped my wallet too.
14: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
15: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest, Sarah.
16: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल, शेफ एलेक्स?
15: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
16: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी.
15: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
16: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.

0: कैफे और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मानो
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स योर फेवरेट सॉन्ग्स ओनली ऑन हम. और बॉलीवुड के जो बेस्ट और बेमिसाल बेहतरीन गाने होते हैं वही लेकर आते हैं आपके लिए चुन चुन कर. आज सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है तो मैं हमेशा सैटरडे मॉर्निंग को आपको मिलने के लिए आ जाता हूँ. याद रहे 9 o'clock के बाद आपके लिए शुरू करेंगे हम मस्ती मीठा. 10 to 11 रहेगा आपके लिए जुगाड़ जंक्शन और 11 to 12 देसी बिज शाउट आउट भी आपके लिए रहेगा. सुनते रहो हम क्रिश के साथ है.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: इन दिनों आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, ये आप हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है जब आपका फीडबैक मिलता है, जब हमें पता चलता है कि आपके गाने कौन कौन से हैं जो फेवरेट है, जो आप सुनना पसंद करते हैं हम पर, या जो हम पर आप सुनते हैं उनमें से कोई एक गाना जो आपको पसंद है आप हमें ज़रूर बताएं। हम एक एक करके ऐसे ही गाने आपके लिए शामिल करते रहेंगे। आज ब्रेकफास्ट शो में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ मिड डे तक। सुनते रहो हम

के दिन या 20 को चाहते हो, या ब्रीज, मोर, एज, रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। जितने भी लोग अभी भी जाग रहे हैं घाट पर, आप अभी भी है, स्वागत करते हैं आपका। अगले घंटे पर आपको भी शामिल करेंगे। तो कुछ ऐसे प्यारे गाने हैं जो आपके लिए हम शामिल करते रहेंगे, कुछ ऐसे सेंसुअस रोमांटिक, कुछ ऐसे रॉकिंग गाने आपके टेस्ट के हिसाब से हम सब लाते हैं। कॉम्बिनेशन जो आपको पसंद है आप वो सुनेंगे और जो बाकियों को पसंद है वो सुनेंगे, क्योंकि हम आपके हर एक के फेवरेट्स को कई टा करते हैं। ओनली ऑन हम, क्रिश का साथ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

0: ka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आप सुनते रहो आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हमारे साथ होकर. अगले घंटे पर कुछ बॉलीवुड न्यूज़ भी हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे. कुछ साइंस रिलेटेड खबरें हैं ये भी आपको बहुत पसंद आएगा, तो इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे. और कुछ ऐसे ऑड न्यूज़ भी हमारे पास है जो कुछ सरप्राइजिंग और सरप्राइज करने वाला, कुछ शॉक करने वाले भी न्यूज़ हमारे पास है जो दुनिया भर से पब्लिश होता है. और ऐसे ही न्यूज़ पर हमारा हाथ जाता है और हम पढ़ते हैं और हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आप भी जान सकते हैं कि क्या कुछ अजीबोगरीब हमारे अराउंड हो रहा है. अगले घंटे पर मिलते हैं विद मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू. कृष का साथ है.

0: wake up.
1: Saturday breakfast on Hum.
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना,
2: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: कैफे और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है. साइंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी अभी कुछ दिन पहले दिया था अबाउट बटा और मार्जरीन. ये सिमिलर दिखते हैं लेकिन इनका केमिस्ट्री चेंजेस एवरीथिंग. तो कौन से खानों में आप बटा का इस्तेमाल करें और कौन से चीज़ों के लिए आप मार्जरीन का इस्तेमाल करें, चाहे कुकिंग हो या फिर बेकिंग हो, तो दोनों में सर्ट कंटेन मोस्टली फैट ही होता है, लेकिन इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे आप इनको रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंटली बिहेव करता है इन डिफरेंट रेसिपीज़. इट कम्स डाउन टू केमिस्ट्री, ये कहा गया है. बटा एक तरफ नेचुरली अकरिंग फैट्स होते हैं जो रिच फ्लेवर्स, गोल्डन ब्राउनिंग और फ्लेकी बेक्ड गुड्स क्रिएट करते हैं, तो वहीं पर मार्जरीन जो मॉडिफाइड प्लांट ऑयल्स होते हैं ये कंसिस्टेंसी और लॉन्गर शेल्फ लाइफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Danny didn't think he needed a DVS system.
2: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
1: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
2: Nah, only one room. It was just too noisy.
1: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
4: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
3: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
4: Mashallah, bahut acha, very nice.
5: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
6: And if you're just joining us after the break, we're talking about...
7: Holy... $10 deals on Uber Eats?
8: Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
9: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Saturday Breakfast on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
10: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स में क्रिश आपके साथ दे रहा हूं कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी भी आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन उससे पहले आज 4th जुलाई है आपका जन्मदिन है अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे वीकेंड है तो आई एम श्योर बहुत कुछ आज घर पर होने को है सरप्राइज भी प्लान किया जा रहा है आपको थोड़ा हिंट है या थोड़ा भनक है कि शायद सरप्राइज हो लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी किसी तरह से भी हिंट नहीं दिया गया या आपको नहीं लगता ऐसा कुछ होगा तो होपफुली ये आपके लिए बहुत ही बड़ी सरप्राइज बने और बहुत ही यादगार बर्थडे बने आपके लिए तो पूरे फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करें टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं अगला गाना आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं आप होपफुली एंजॉय दिस सॉन्ग बहुत ही प्यारा ये सॉन्ग आपके लिए

0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support, and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.
2: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
3: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday 4th of July. T's and C's apply.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Toast, coffee aur hum ka energy. Saturday breakfast on Hum.
5: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. Kuch Bollywood news bhi aapke liye hum pesh karte rahenge. Iske liye bas aap hamara saath dete rahe. Imran Khan on how he introduced girlfriend Lekha Washington to daughter Imrana. इस पर एक खबर हमारे पास है। इमरान खान अभी सुर्खियों में नहीं है, दूर है, लेकिन इन्होंने जब ये आए थे फिल्मी दुनिया में तो इन्होंने बहुत नाम कमाया और इनकी काफ़ी फिल्मों को रिलीज़ किया जा रहा था, एक के बाद एक फिल्म में साइन कर रहे थे ये। तो अभी फिल्मी पर्दों से दूर होकर इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन को इंट्रोड्यूस किया है टू डॉटर इमराना। इस पर जानकारी

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hit. Saturday Breakfast Show जारी है, 4th July है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. एक तो इमरान खान ने इंट्रोड्यूस किया अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन को टू इज डॉटर इमराना, सॉरी इमारा, विद कंप्लीट ऑनेस्टी और ओपननेस. इन्होंने कहा है कि बच्चों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, दे शुड बी स्पोकन विद ट्रांसपेरेंसी. और कहा गया है कि पेरेंट्स एक्शंस उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है और फादरहुड काफ़ी इनका जो नज़रिया चेंज कर चुके हैं ऑन फिल्म्स और इनको काफ़ी स्ट्रॉन्गर और मोर पॉजिटिव फीमेल रिप्रेजेंटेशन ऑन स्क्रीन के लिए अब ये एडवोकेट करते हैं. और इन्होंने कहा है कि ही केप्ट हिज डॉटर अवे फ्रॉम मीडिया अटेंशन और ये बहुत ही कोशिश अप्रोच ले रहे थे टू टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया यूज़. और उन्होंने कहा कि इसको क्वालिटी टाइम इमारा के साथ स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, रोलर ब्लेडिंग और लर्निंग हेयर केयर, ये चीज़ें ये सीख रहे हैं अपने बेटी के साथ में, हाईलाइटिंग द एवरीडे जॉयज ऑफ पेरेंटिंग. और इन्होंने अपनी बेटी को अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: कॉफी और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: A very good morning, everyone. Welcome to the show. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और ब्रेकफास्ट शो जारी है. इट इज सैटरडे, 4th जुलाई है आज. जुलाई महीने का पहला ब्रेकफास्ट शो हमारे साथ है, सैटरडे ब्रेकफास्ट शो इनफैक्ट हमारे साथ है, और अच्छा लगता है जब आपका साथ हमें मिलता है. 6 to 8 आपने अभी तक हमारा साथ दिया, थैंक यू. फाइनली आप उठ रहे हैं, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ वेकिंग अप, और ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ एक तरफ हो रही है. मुझे आप ज़रूर बताना कि आपको सुबह सुबह चाय पसंद है ब्रेकफास्ट में, या फिर कॉफ़ी. क्या आपको कॉफ़ी ज़रूरत की, कॉफ़ी की ज़रूरत होती है सुबह जागने के लिए? आप हमें ज़रूर बताना कि यह क्या आपकी आदत है, या फिर आप चाय पर्सन हैं, आप चाय को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वेरी गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट शो में आपका स्वागत है.

आप सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, एक एक करके कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. याद रहे फ्रॉम 9 AM टू 10 AM आपके लिए लेकर आएंगे मस्ती मीटर, कुछ मस्ती भरी बातें होगी और एक सवाल भी आपके लिए हम लेकर आएंगे जिसका जवाब आपको हमें देना है. इंटरेक्टिव कुछ ऐसा सवाल होगा आपके लिए. और 10 टू 11 आपके लिए रहेगा जुगाड़ जंक्शन, कुछ लाइफ हैक्स, कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स लेकर आया हूँ मैं आज. इंटरेस्टिंग वाले जो टिप्स है वो भी शेयर करूँगा. 11 टू 12 कुछ लोकल बिजनेसेस को भी याद करेंगे हमारे देसी बिज शाउट आउट में. इट इज़ सैटरडे मॉर्निंग शो और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन.

0: Saturday breakfast on Hum.
1: Aapka moment, Krish ka magic, only on Hum.
2: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Saturday breakfast show जारी है. Interesting खबरें भी लेकर आता हूँ. SpaceX wants to build AI data centers in space. Earth orbit ये proposal रखा गया है. 18 June को ये publish हुआ है कि AI is growing computing demand. अब drive कर रहा है interest in orbital data centers जो हम space में पाया जाता है. Space offers abundant solar energy और avoid करता है some land based constraints. जो मेजर इंजीनियरिंग चैलेंजेस है वो कूलिंग, रेडिएशन और मेंटेनेंस को लेकर है. और कहा गया है कि जो लॉन्च कॉस्ट होते हैं ये सिग्निफिकेंट ऑब्स्टकल अभी भी है. तो रिसर्चर्स का मानना है कि ये कॉन्सेप्ट जो AI का कॉन्सेप्ट इज प्रॉमिसिंग लेकिन स्टिल फार फ्रॉम प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट. तो शायद AI का इस्तेमाल आगे चलकर इतना अच्छा हो जाए कि स्पेस में भी इसका इस्तेमाल हो सके. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. ब्रेकफास्ट शो जारी है.
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो गाना चला तो गाना चला तो

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट
4: Don't miss the final week of Shop and Scan to Win at Woolworths. Just buy any three products from Nescafe, Glowlab, Bluebird, Macro and more for your chance to win instant money off your shop. In-store only. At Woolworths. T's and C's apply.
5: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space and business shows up in your personal space. At ASB, one banker handles both. Because you're one person, not two accounts. ASB, one step ahead.
0: The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari good branch nahi hai.
0: Saturday breakfast on Hum.
7: ब्रेकफास्ट शो आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ अगले घंटे पर याद रहे मस्ती मीटर लेकर आएंगे एक बहुत ही इंटरेक्टिव और फन क्वेश्चन आपके लिए रहेगा 5599 पर जवाब देने के लिए आपके पास मौका रहेगा रणबीर कपूर रैंक्स अमंग्स टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 15 अप्रैल को जो पब्लिकेशन हुआ था उसमें रणबीर कपूर को फीचर किया गया था इन टाइम्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ये एक इकलौता इंडियन एक्टर है टू मेक इट टू द ग्लोबल लिस्ट दिस ईयर और ये रिकॉग्निशन हाईलाइट करता है द इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल सिनेमा विजिबिलिटी और इंडस्ट्री फिगर्स ने प्राइज किया है फॉर इस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड ग्लोबल अपील और इसमें ग्लोबल लीडर्स आर्टिस्ट और इनोवेटर्स भी शामिल थे मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ वैसे करण जौहर अनफॉलोज बॉलीवुड स्टार्स ऑन इंस्टाग्राम इस पर भी एक जानकारी हमारे पास है मैं इस पर आपको कुछ बताना चाहूँगा बहुत ही जल्दी सुनते रहो ब्रेकफास्ट शो

0: का मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one hum playing Bollywood's biggest hits. वैसे काफी बॉलीवुड खबरें भी हमारे पास है आपके साथ शेयर करने के लिए. करण जौहर अनफॉलोज बॉलीवुड स्टार्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसमें इन्होंने सेवरल मेजर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अनफॉलो किया, जैसे शाहरुख खान. आई जस्ट कान बिलीव कि वो शाहरुख खान को कभी अनफॉलो कर सकते हैं. इवन आलिया भट्ट, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता है. अनन्या पांडे को भी अनफॉलो उन्होंने किया. देर आई डोंट अंडरस्टैंड एज वेल. लेकिन ये मूव काफ़ी स्पेकुलेशन अब सोशल मीडिया पर शुरू कर चुकी है अबाउट इंडस्ट्री टेंशंस. करण जौहर ने लेटर इम्प्लाई किया कि इट वाज नॉट मेंट एज नेशनल न्यूज़, और फैंस ने डिबेट किया वेदर इट सिग्नल्ड एनी पर्सनल और प्रोफेशनल डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स, और इसलिए जाकर इन्होंने ऐसा किया है. राजकुमार राव शूट्स सौरभ गंगुली बायोपिक, इस पर जानकारी भी मैं आपके लिए इसी शिफ्ट में लेकर आया हूँ. अगले घंटे पर मिलते हैं विद इन्फॉर्मेशन, और याद रहे मस्ती मीटर भी शुरू हो जाएगा आपके लिए.
2: चेक इट आउट.

0: Saturday Breakfast on Hum. Aapka Moment, Krish ka Magic, only on Hum.
1: A very good morning, everyone. Saturday Breakfast Show में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ. It is past nine और अभी आपके लिए इस घंटे पर भी बहुत कुछ हम लेकर आने का पूरा वादा करते हैं. स्वागत है आपका, इस्तकबाल है. Welcome to the show. A very good morning, everyone. अभी as promised आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं the most awaited मस्ती मीटर.
0: मस्ती मीटर on Hum.
1: आज बहुत सारा मस्ती करेंगे. आज मस्ती मीटा में एक सवाल भी मैं लेकर आऊँगा, बस कुछ गानों के बाद में आपके लिए. और मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे, क्या आप सोचते इसका जवाब हो सकता है. तो जितने भी हमारे लवली लिसनर्स हैं, कुछ इंटरेक्टिव इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है और एक सवाल भी आपके लिए लेकर आएंगे मस्ती मीटा में. सैटरडे ब्रेकफास्ट शो जारी है, 4th July है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. गुड मॉर्निंग एवरीवन.

मस्ती मीटा आपके लिए जारी है, ओनली ऑन हम, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। और एक मस्ती मीटा में एक इंटरेक्टिव सवाल लेकर आया हूँ, इस बार मैं बहुत ट्विस्ट लेकर आया हूँ ये सवाल में। ये एक ब्रेन टीजर है विच इज़ अबाउट बॉलीवुड फिल्म मिक्सअप। तो एक फिल्म मिक्सअप का सिनारियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक डायरेक्टर है जिनको 3 roles के लिए कास्ट करना पड़ेगा, किसी को हीरो के लिए, हीरोइन के लिए और विलन के लिए। 3 actors है, अमित, रोहन और नेहा। क्लूज आपके लिए ये है, अमित इज़ नॉट द विलन, नेहा इज़ द हीरोइन, रोहन इज़ नॉट द हीरो। क्वेश्चन ये है कि हु प्लेज हीरो, हीरोइन एंड विलन। आपको हमारे पास जवाब भेजना है, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये ब्रेन टीज़र मैं लेकर आया हूँ अबाउट फिल्म मिक्सअप। डायरेक्टर इज कास्टिंग 3 roles, हीरो, हीरोइन और विलन। 3 actors है, अमित, रोहन और नेहा। क्लूज ये है आपके लिए, अमित इज़ नॉट द विलन, नेहा इज़ द हीरोइन, रोहन इज नॉट द हीरो। तो हु प्लेज द हीरो, हीरोइन एंड विलन, आप हमें बताएं। इनफैक्ट जो इनिशियली मैंने एक सवाल सोचा था आपके लिए वो और कठिन था, लेकिन इट वुड हैव बीन सो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट ऑन रेडियो। तो मैंने बोला कि एक थोड़ा सिंपल सा लेकर आता हूँ अभी आइस ब्रेकर के तौर पर। तो आप हमें बताओ कि इसका क्या सही जवाब हो सकता है 5599 पर टेक्स्ट करके।

0: cycle.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
4: कौन है?
5: हुनुआ और वेटाकरे।
4: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
5: किधर है हुनुआ?
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: कैफे और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: मस्ती मीट आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हमारा जो सवाल है द ब्रेन टीजर फिल्म मिक्सअप पर. एक डायरेक्टर है जो थ्री रोल्स को कास्ट करना चाहता है, हीरो हीरोइन और विलन. थ्री एक्टर्स है अमित, रोहन और नेहा. क्लूज आपके लिए ये है, अमित इज नॉट द विलन, नेहा इज द हीरोइन, रोहन इज नॉट द हीरो. तो हु प्लेज हीरो हीरोइन और विलन? टेक ए शॉट और हमारे पास 5599 पर बताएं. इसको साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे एंड इट इज़ वेरी सिंपल. आई थिंक ये इट्स लाइक अ नो ब्रेनर. लेकिन इससे डिफिकल्ट वाले जो और भी है वो अगले हफ्ते हम आपके लिए लेकर आएंगे. फिलहाल तो इसका जवाब आप हमारे पास 5599 पर भेज सकते हैं सही जवाब के साथ.

आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मस्ती मीटा आपके लिए जारी है और मैं आपका साथ दे रहा हूँ, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, साथ हमारा रहेगा ऑल द वे टिल मिड डे। आपको भी बस हमें सुनते रहना है क्योंकि आपके फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश कर रहे हैं और कुछ बॉलीवुड न्यूज़ भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो हमारे पास है वो भी एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। बॉलीवुड में देखा जाए तो श्रद्धा कपूर ट्रांसफॉर्मेशन इन ईथा, ये बहुत बहुत ही अभी फ़िलहाल नाम कमा रही है क्योंकि इन्होंने एक जो लव लव जो लावनी होता है उस डांसर का किरदार इन्होंने निभाया है, वित्त भाई नारायणगोकर इन ईथा। और ये टीज़र शोज अ पावरफुल इमोशनली इंटेंस रोल, इन्होंने एक प्रेग्नेंट डांसर का किरदार निभाया है बैलेंसिंग आर्ट एंड हार्डशिप। और फिल्म को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर ने और इट स्टार्स रणदीप हुडा। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम इट विल बी अ ग्रेट वॉच रणदीप हुडा को देखने के लिए। आई थिंक इसका लास्ट मूवी मेरे ख्याल से शरबजीत था या उसके बाद में भी कुछ होगा, लेकिन ही इज डन रियली गुड रोल्स, तो इसको फिर से देखना अच्छा रहेगा। ये एक हिस्टोरिक फोक आर्टिस्ट की ज़िंदगी के बारे में और उनकी संघर्षों के बारे में है। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, ब्रेकफास्ट शो जारी है।

0: चाहे आप हमके दें चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: मैनचेस्टर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डील्स, ब्रिस्कोस इज सेल रेडी विद बिग डील्स ऑन बिग होमवेयर ब्रांड्स, प्लस ऑल मैनचेस्टर एट लीस्ट 50% ऑफ। शॉप इनक्रेडिबल सेविंग स्टोर वाइड टू स्कोर बिग एंड सेव दिस वीकेंड एट ब्रिस्कोस। सी ऑनलाइन फॉर टीज़ एंड सीज़।
2: At Bunnings, we can make your paint project easy with a Hayden 3-piece 230mm roller kit, only $11.74, or Sally's 1-litre sugar soap, just $5.90. Bunnings makes DIY easy. Lowest prices are just the beginning.
3: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
4: Bollywood ka asli blockbuster.
5: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
4: Playing Bollywood's biggest hits. Hum. ये है मस्ती मीटर, आपका मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम।
6: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, क्रिश के साथ है। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है, श्री राम लीला आपके लिए आयोजित किया जा रहा है। स्टॉल इंक्वायरीज के लिए आप मास्टर अशोक से बातें कर सकते हैं 021-179-5459 पर। रामलीला एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होने जा रहा है, सेव द डेट, ये डेट आपको मार्क करके रखना है, 8 अगस्त को होगा। और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8 अगस्त। क्रिश के साथ है, और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे।

0: एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल मैंने आपसे पूछा था, ब्रेन टीजा ऑन फिल्म मिक्सअप, और चलो ये सॉल्व करते हैं। हमारा जो सवाल बहुत ही सिंपल एक्चुअली था आपके लिए, लेकिन थोड़ा ट्रिकी साउंड शायद कर रहा होगा, लेकिन लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। तो हमारा सवाल था यहाँ पर आपके लिए, एक डायरेक्टर है हु इज़ कास्टिंग 3 roles, हीरो, हीरोइन और विलन। 3 actors हैं, अमित, रोहन और नेहा। अमित इज़ नॉट द विलन, नेहा इज़ द हीरोइन और रोहन इज़ नॉट द हीरो। तो हु प्लेज हीरो, हीरोइन और विलन? लेट्स सॉल्व इट क्विकली। तो हमारे पास 3 actors है, अमित, रोहन और नेहा, और हीरो, हीरोइन और विलन की तलाश है। तो गिवन कि नेहा इज़ हीरोइन, तो वो तो सॉल्व हो गया। अमित विलन नहीं है और रोहन हीरो नहीं है। तो स्टेप वन, वी हैव टू फिक्स हीरोइन। नेहा इज़ हीरोइन, सो दैट द रिमेनिंग रोल्स देन आर हीरो और विलन का फॉर अमित और रोहन। अब स्टेप टू में अगर देखें तो रोहन हीरो नहीं हो सकता है, सो रोहन मस्ट बी विलन। और स्टेप थ्री अगर देखें तो अमित गेट्स द रिमेनिंग रोल विच इज़ दैट ही बिकम्स द हीरो। तो फाइनल आंसर है हीरो इज़ अमित, हीरोइन इज़ नेहा और विलन है रोहन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा ब्रेन टीजर रहा है, एंड आई एम इन अ वेरी सिंपल वन, लेकिन और डिफ़िकल्ट वाले जो है वो अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे आपके लिए लेकर आने के लिए। ये था मस्ती मीट आपके लिए, अगले घंटे पर मिलते हैं न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद में टॉप ऑफ द आवर पर, और फिर आपके लिए हम शुरू करेंगे जुगाड़ जंक्शन।
1: You're listening to Krish.
2: Let's go!
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी,
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना,
1: और गानों में

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Saturday breakfast on Hum.
1: आपका moment, Krish का magic, only on Hum.
2: A very good morning, everyone. Welcome to the show. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ रहेगा all the way till midday. It's past 10 news and sports update के बाद में अभी आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ ऐसे tips के साथ, कुछ ऐसे life hacks के साथ जुगाड़ junction for you.
1: Saturday breakfast में हम आए हैं जुगाड़ junction पर.
2: वेलकम एवरीवन, जुगाड़ जंक्शन में आपका स्वागत है. आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा आपके लिए, कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा. और माय सब्जेक्ट टुडे वुड बी विंटर गार्डनिंग, क्योंकि विंटर तो शुरू हो गया है, मतलब वी आर इन विंटर. थोड़ा बहुत गार्डनिंग भी अगर आप करेंगे, विच विल लास्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग के दौरान भी बहुत अच्छा होता है गार्डनिंग. तो मैं आपको कुछ ऐसे लाइफ हैक्स आज बताने जा रहा हूँ. पहला तो है यूज़ मल्च लाइक अ विंटर ब्लैंकेट. अगर आप एक थिक लेयर ऑफ स्ट्रो, ड्राई लीव्स और वुड चिप्स अराउंड प्लांट्स डालते हैं तो ये इट ट्रैप्स सोइल हीट और प्रिवेंट करता है फ्रॉस्ट डैमेज और रूट्स को काफ़ी स्टेबल रखता है. और भी ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं मैं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा.

You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, Krish के साथ है. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है. श्री राम लीला आपके लिए आयोजित किया जा रहा है. स्टॉल इंक्वायरीज के लिए आप मास्टर अशोक से बातें कर सकते हैं 021-179-5459 पर. रामलीला एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होने जा रहा है. सेव द डेट, ये डेट आपको मार्क करके रखना है. 8 अगस्त को होगा और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8 अगस्त. क्रिश के साथ और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे.

0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: करण औजला ब्रिंग्स हिज पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू न्यूजीलैंड। ऑकलैंड स्पार्क अरेना दिस ऑगस्ट। टिकट्स एट livenation.co.nz। डोंट मिस करण औजला लाइव।
3: Club Plus deals are on this week at New World North Island. Get Pam's grated cheese select size $7.99 each, or Sea Lord Hokey family pack gluten-free or fish burgers select size $6.90 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
4: Non-stop Bollywood.
5: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
4: हम playing Bollywood's biggest hits.
6: कम वोटा आप करें प्लांट्स को लेकिन स्टॉप ना करें। प्लांट्स नीड लेस वोटा इन विंटर बट ड्राई सोइल स्टिल स्ट्रेसेस रूट्स। तो आप अगर मॉर्निंग में वोटा करना चाहे सो इट डजंट फ्रीज ओवरनाइट ये काफ़ी बेहतर रहेगा। मूव पॉट्स क्लोजर टू वॉल्स। कंटेनर्स को घर के नज़दीक या वॉल्स या फेंसेस के रखने से ये हीट शील्ड्स की तरह काम करते हैं और दे रिड्यूस विंड चिल। और ओल्ड प्लास्टिक बॉटल्स को आप इस्तेमाल करें एज मिनी ग्रीन हाउसेज। कट बॉटल्स इन हाफ और आप अगर उसमें सीडलिंग्स रखते हैं टू क्रिएट DIY क्लोचर्स जो वॉर्म्थ को ट्रैप करते हैं। और कवर प्लांट्स ड्यूरिंग फ्रॉस्ट नाइट्स। बेडशीट्स या बर्लेप या फ्रॉस्ट क्लॉथ आप यूज़ करें रात को। मॉर्निंग में आप रिमूव कर सकते हैं ताकि सनलाइट प्लांट्स को मिले। रेज पॉट्स ऑफ कोल्ड ग्राउंड। अगर पॉट्स नीचे रखे हुए हैं तो उनको आप ब्रिक पर रखे या वुडन स्टैंड्स पर रखे ताकि रूट्स डोंट डायरेक्टली टच फ्रीजिंग सर्फेसेस। और कहा गया है कि कंपोस्ट हीट ट्रिक कीपिंग अ कंपोस्ट पाइल नियर बाय। ये डिकम्पोजिंग मटेरियल जो हीट रिलीज करते हैं इससे सराउंडिंग सोइल काफ़ी वार्म होता है। होपफुली दीज हैव बीन सम रियली हेल्पफुल टिप्स फॉर योर विंटर गार्डनिंग।

0: आप सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। ग्लोबल सेंसेशन करण औजला अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आ रहे हैं टू ओकलैंड एंड इट्स गोइंग टू बी मैसिव। फ्रॉम चार्ट टॉपिंग हिट्स टू द एंथम्स जो हर किसी को पता है, जो पसंद करते हैं इनके गाने, एक्सपीरियंस कीजिए करण औजला लाइव ऑन स्टेज एट स्पार्क अरीना 25 अगस्त को ये परफॉर्म करेंगे। एंड दैट्स नॉट ऑल, इनको एक स्पेशल गेस्ट हिट मेकर IKKY Icky ज्वाइन इन करेंगे, मेकिंग दिस एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक एंड एनर्जी। आप अपना चांस मिस नहीं कर सकते टू बी पार्ट ऑफ द पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर। टिकट्स और मोर इन्फॉर्मेशन आप hum.rover.nz विजिट करें या फिर livenation.co.nz विजिट करें। करण औजला 25 अगस्त स्पार्क अरीना में होने जा रहा है, आपको भी यहाँ पर पहुँचना है। और हमारे साथ ही आपके लिए करण औजला का गाना डेली पेश करेंगे, आपको गेस करना होगा टाइटल ऑफ द सॉन्ग। करेक्ट एंट्रीज को ड्रो में शामिल किया जाएगा, डबल पास जीतने का मौका होगा। आपको चेक करना होगा कि नाम के साथ सही जवाब 5599 पर ड्रो 6 जुलाई को
1: पहले दिनों तेरे उत्ते आंख रखिए, तेरे बिना एरिए और कुड़ी दा ना दिल मंगिए ते ना।

You're humming along with Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits. AI सभी जगहों पर है तो हम podcast सुनना ना भूले क्योंकि इसमें रुजबे और सैंडी बहुत ही interesting बातें करते हैं with AI specialist दर्शित पांड्या. ये एक senior principal engineer है platform at Zerko and an AWS community builder जो बहुत ही बारीकी से breakdown करते हैं the world of artificial intelligence in a way that actually makes sense. चाहे ChatGPT हो या AI at work हो to job security, privacy concerns, opportunities या कोई भी skills that you need for the future, ये conversation ये सारे questions का जवाब देता है और discuss करता है इन मुद्दों को. चाहे आप excited हो, curious हो या फिर little nervous about AI, ये episode आपके लिए एक practical guide है to understand कि technology किस दिशा में जा रही है और कैसे आप technology के साथ साथ चल सकते हैं. तो AI is everywhere, लेकिन इसका क्या मतलब हमारे ज़िंदगी के लिए होता है, हमारे काम के लिए होता है, ये एपिसोड आप सुनना ना भूले. 5599 पर टेक्स्ट करें ड्राइव फॉर द फुल ऑडियो. इसके अलावा ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए भी आप हमारे पास 5599 पर BF भेजे, जहां पर फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय एंड पूजा होता है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो. तो हमारे पॉडकास्ट को आप सुने क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके लिए यहां पर डिस्कस किया जाता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं.

0: Weekday Breakfast on Hum.
1: Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ ही देर तक और हमारे साथ रहेगा द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान ओकलैंड आ रहे हैं फॉर वन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक ये एक्सपीरियंस आप करने के लिए पहुंच जाए क्योंकि द मैजिक ऑफ हिज टाइमलेस हिट्स सुनने का मौका रहेगा सोल स्टिरिंग कवाली सुनने का मौका रहेगा विच इज़ द बेस्ट पार्ट और जो पावरफुल वॉइस इनका है जो आपको कैप्टिवेट करेंगे ऑडियंसेस को कैप्टिवेट करता है अक्रॉस द वर्ल्ड वी हर्ड हिम सिंग वी हर्ड हिम परफॉर्म इनके बहुत सारे गाने हमने सुने हैं क्योंकि बॉलीवुड में इन्होंने बहुत सारे गानों को गाए हैं अमेजिंग कंपोजिशंस रहे हैं तो

पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Leandra's Feet on Drawa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Feed the faith with the 1NZ Warriors range exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty, and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.
2: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
3: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
0: Zabardast hits. Playing Bollywood's biggest hits. Hum. Saturday Breakfast on Hum.
4: You're listening to number one Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और ऐसे ही आपको हमारा साथ देते रहना है. जितने भी लोकल बिजनेसेस है, लोग जो देसी बिज शाउट आउट है आपको याद करते हैं, अगर आप पापटोए या साउथ ऑकलैंड या फिर वेस्ट ऑकलैंड में है. ओवर द शो हमारे काफ़ी लिसनर्स हमारा साथ देते आए हैं, आपको भी शामिल करते हैं साथ ही में. अगर आप ऑकलैंड सिटी के अराउंड है, रेस्टोरेंट है या फिर गैराज है या कोई पैकिंग कंपनी अगर आप है या प्रिंटिंग कंपनी है, जहाँ जहाँ पर भी आप है, अ वेरी बिग शाउट आउट आपको हम देना चाहेंगे और याद करते हैं आपको, आपके स्टाफ को भी, आपके मैनेजमेंट को भी. अगला गाना आप सभी के नाम.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: ब्रेकफास्ट यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. अब हमारी मुलाकात होती है आपके साथ ऑन मंडे नाइट. हम आ जाएंगे नाइट कैफे लेकर. मंडे टू थर्सडे हमारा साथ रहेगा. और हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर सैटरडे, एंजॉय योर वीकेंड और मेक द मोस्ट ऑफ इट. और माय बेस्ट विशेस और बहुत सारी बधाइयाँ अगर आपके घर पर सेलिब्रेशन है तो. अपना बहुत ही ख्याल रखें. क्रिश का बहुत सारा प्यार.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable